नदीम श्रवण के साज पर ये गीत हमने पेश की और हमने कहा नहीं कि तीन सेशन शस्त्र जी नहीं इस फिल्म है फिल्म सेशन नहीं गंधक का फिल्म जीत में से निकाले हैं नहीं कि तीन सेशन नहीं गंधक का ये गीत सोनू जी और अलका जी मिलकर नदीम श्रवण के साज पर ये लोग सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो रवि साहब का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का साज है और फिल्म है मेरी तुलसी मैं तुलसी तेरे आंगन की। फिल्म तो आपने देखे होंगे लेकिन वो टाइटल सॉन्ग हम नहीं चलाएंगे हम कोई और गीत चलाएंगे। हम चलाएंगे एक दूसरा गीत रफ़ी साहब का और गाना में पता चलता है यही कि बंद हुई खिड़की रफ़ी साहब को बहुत बेचैन करता है। रफ़ी साहब जानना चाहता है ये खिड़की बंद क्यों है तो सुनिए।

अच्छा तो ये बात है, बंद खिड़की रफ़ी साहब को कितना परेशान की, उन्होंने आपको बताया हो फरफान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो अगर हम दोनों हाजिर हैं तो क्या ख्याल है।

तुम्हें देंगे ये शानदार गीत हम आपको सुनाए ओवर फॉर हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। शानदार गीत हम पेश कर रहे हैं इस तरह से है।

ए चांद की जेवाई, रफ़ी साहब की आवाज़ में हम आपको सुनाए हैं फिल्म छोटी सी मुलाकात में से निकाल कर निकली सेफन से हस्तक का ये गीत शंकर जय किशन के साज पर। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं वो है ये गीत, चलो देखते हैं ये प्यारा गीत। हाँ हाँ, लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता। लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में निगदी एन सही बंद 1971 का ये गीत हमने पेश की। जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? हाँ, सुनते हैं।

तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शानदार गीत चला फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। तो अगर आई लव यू की बात हुई तो चलिए हम आपको सुनाते हैं मैथ मुकेश जी क्या कह रहा है इस तरह से।

गा दीवाने झूम के माइत मुकेश की आवाज में आपको सुनाया गया ये गीत। तो चलिए ये बदली हुई गीत हम रखते हैं। हाँ

कश्मीर है, ये शानदार गीत आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है।

सदियों पुरानी अपनी कहानी और रफ़ी साहब और आयशा जी आपको सुनाए रवि के साथ पर फिल्म शहनाई में से निकाल कर हम ये गीत पेश किए। चलिए अगर नंबर प्लेयर में ये गीत रखें, इस तरह से सुनते हैं।

दिल से दिल की डोर बांधे ये शानदार गीत चला ऑफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। इस तरह से आ रहा है आपकी मांगी हुई गीत।

रफ़ी साहब का ये गीत है चांद की अंगड़ाई। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

मैं आशिक हूँ बहारों का मैत मुकेश, मुकेश जी आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, जबकि आप भी हैं, आप सुन रहे हैं और मैं दनाख में स्टूडियो में बैठकर चला रहा हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए ये गीत लता जी और सुबीर सेन। सुबीर सेन के गाना बहुत कम चलता है। अपने हुए पराये में से निकली फिर सस्त लता जी और सुबीर सेन जी।

लता जी और सुबीर सेन मिलकर ये दोनों ये द्वैत आपको सुनाए हैं। फिल्म अपने हुए पराये में से निकाल कर हमने चलाए हैं निगति फिर शस्त्र का ये गीत है शंकर जय किशन के साज पर। तो चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं कि प्यार में क्या क्या हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, यहाँ तक कि डफली वाला भी बन जाते हैं लोग।

डफली वाले डफली बजा, ये गीत सुनाया गया, हमने पेश की ओफर फाहन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और ऐसे आ रहा है, हाँ इस तरह से है।

फिल्म भीगी रात में से निकाले हैं निकिती फैफन सस्तिक के ये गीत है रोशन के साज पर रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज़ में हमने पेश किए। चलिए अगला गीत चलाने वाले हैं, जी हाँ, और वो है मैथी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। क्या ख्याल है

मुझसे भी खफा रहना, मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं। चलिए ये गीत तो सुनाए बिना हम आपको नहीं जाएंगे।

महेंद्र कपूर जी और लता जी मिल के आपको सुनाए हैं। ये प्यारा गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में फिल्म घर बसा के देखो में से हमने निकाल कर ये चलाए हैं।

कि मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ, और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म लिखी थी तुई सस्त का ये फिल्म है, और हमने ये गीत पेश किए आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है, जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरे है ना, जो आजकल चल रहा है, उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त ख्यार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव सेवन फाइव तक का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव सेवन फाइव तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया, पर चलाया गया सूरीनाम देश में नेगेटिव सेवन एंड फाइव तक में।

दगा दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पाँव हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे यात्रा दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है एक रियासी साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद थिएटर में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 थिएटर में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो हो वे इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने हिंदी फैशन सही फिंत

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकली फैफ से ही का ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आर डी बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायो आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था तो अच्छा दिखा तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं। जी हाँ, इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नेक तीन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

मेरी बुलबुल जी हाँ पैसा मिलेगा एवरग्रीन किशोर कुमार ने कितनी फिर से फिर तक ये फिल्म रोटी में से निकाले हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, और जिससे किसी का भी अहित होता है वो अकर्तव्य होता है।

जिस प्रकार आकाश में वृक्ष जितना ही ऊंचा उठे उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार मनुष्य की उन्नति की भी कोई सीमा नहीं है।

सभी संबंध अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए ही है, न कि अधिकार जमाने के लिए, सुख देने के लिए है।

चार वर्णों और आश्रमों में श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, और जो कर्तव्य से गिरा हुआ होता है वो छोटा हो जाता है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए।

भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हम अपने विचारों के आदि हैं, गुलाम हैं, हम कुछ भी बदल नहीं सकते। यदि हम अपनी सोच नहीं बदल सकते, अपना जीवन बदलने के लिए अपना मन, अपनी अंतर्दृष्टि बदले। यदि चश्मा लगाने से हमारी दृष्टि में सुधार होता है मित्रों, तो मन में बदलाव से हमारा जीवन भी बेहतर होगा। और केवल आप ही ऐसा कर सकते हैं, कोई और आपके लिए ऐसा नहीं कर सकता है। मित्रों, इसके बारे में आप सोचें।

जीवन छोटा और क्षण भंगुर है। अपने जीवन काल में इस प्रकार आचरण करें कि वर्तमान में आपके लिए सुगंधित वातावरण निर्मित हो और भविष्य में मृत्यु के समय आप अनुकूलता पूर्वक स्वयं ही संसार छोड़ दें। आप मृत्यु के क्षण में ही संसार का सुख छोड़ देते हैं मित्रों, यही आपके जीवन की सफलता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो परिवार में धन दौलत छोड़ जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी संपत्ति की गंध छोड़ते हैं। जीवन में पद के चाहत भाग्य में नहीं होती, जीवन की खुशी जंगलीपन और स्थिति में नहीं है, बल्कि आत्मा की पवित्रता में है।

मित्रों, क्या करना था, क्या कर रहे हैं, क्या हो गया? पैसा कमाना ठीक है, मगर पैसों के बस में मत हो जाना। सब कुछ यही रह जाएगा, सिर्फ तुम नहीं रहोगे। क्या छोड़ कर जाना है? इज्जत, इज्जत और ये गवाना है। मित्रों, इस गीत के माध्यम से

प्रिय दोस्तों, भगवान ने हमें दोस्त क्यों दिए हैं? ईश्वर जानता था कि हर किसी को मित्रता और प्रसन्नता की आवश्यकता होगी। वे जानता था कि मनुष्य को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होगी जिसके विचारों पर वो भरोसा कर सके। वो जानता था कि आदमी को किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होगी जो दयालु हो, मदद के लिए हाथ बढ़ाए, कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की देखभाल करने और समझने के लिए समय निकालना पसंद करता हो। ईश्वर जानता था मित्रों कि हम सभी को खुशी की भावनाओं को साझा करने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। जब मुसीबत हमारे सामने आएगी तो प्रोत्साहन का स्रोत बनने के लिए किसी की जरूरत होगी। कोई ऐसा व्यक्ति जो ईमानदार हो, एक दूसरे से दूरी की परवाह किए बिना, कोई है जिसका प्यार हमेशा रहेगा और हमारे या मेरे दिल में रहेगा।

प्रिय दोस्तों, किसी का भला करना भगवान के बैंक में फिक्स डिपॉजिट करने जैसा है। हो सकता है कि आप ब्याज की गणना करने में सक्षम ना हो, लेकिन भगवान कर सकता है। और जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी तो वह इसे आपको लौटा देगा। इस पर विश्वास करता है? आप करते हो? तो फिर आपने दूसरों का भला करना क्यों बंद कर दिया? क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस व्यक्ति से आपको किसी भी रूप से कुछ भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए तुम्हें ये मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन किसी अन्य अदृश्य या लोग से। अच्छाई करो तो कहीं ना कहीं से आपको फिर वापस मिलेंगे। मित्रों, इस पे ध्यान से देख रेख करना, ध्यान करना मित्रों।

भगवान राम की अभी वो अवस्था है, वो आयु है कि चलना सीख रहे हैं, ठुमक ठुमक कर चलते हैं, लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, फिर उठते हैं, चलने का प्रयास करते हैं। देखिए ये भाव गाकर किस प्रकार दिखाया जा सकता है।

स्वामी तुलसीदास जी को कोई ऐसी वस्तु नजर ही नहीं आ रही जिससे वो भगवान राम के मुख की तुलना करें। बहुत सोचा, अंत में हार कर यही कह दिया कि भगवान राम के मुख जैसा केवल भगवान राम का ही मुख है और कुछ नहीं।

से हम श्रवण कर रहे हैं भजन माला कार्यक्रम, जिससे हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं अपना जीवन, अपना दिन जो है सफल बनाने के लिए। वक्रतुंड महाकाया सूर्य कोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। दिस इज फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

ज़िंदगी जो मिले है इसे खुल कर जियो, क्योंकि ना वक्त दोबारा आता है और ना ये जीवन दोबारा मिलता है।

राम नाम जो जोड़ ले वही जाता है। हम तो क्या कहे, ये शब्द ये गीत ये भजन निर्गुण भजन जो है चेतावनी वाला भजन जो है हमें याद दिलाता है किस काम के लिए हम इस धरती पे आए हैं, इस मृत्यु लोक में हम आए हैं। इसलिए फाओ हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ये हमको चेतावनी दिला देते हैं, हमारे दिमाग को झकझोड़ देते हैं, जगा देते हैं, समझाते हैं कि हम किस लिए आए हैं इस मृत्यु लोक पर, हमारा कर्म क्या है, हमारा धर्म क्या है, हम लाए हैं क्या और ले जाएंगे क्या। इस पर हम जरा गौर

पल पल दिल के पास बस आप ही रहते हो। आकाशवाणी के प्यारे प्यारे सुनने वालों, जान पहचान वालों, दोस्तों, भाई बहनों, कहती हूँ कि आज से बेहतर कुछ भी नहीं, क्योंकि कल कभी आता नहीं और आज कभी जाता नहीं। रिश्ते को वक्त देना सीखो, रिश्तों को वक्त देना सीखो, प्यार भी रहेगा और साथ भी रहेगा। मैं हूँ आपका शेविका शांता, स्वीकार कीजिए मेरी प्यार भरी राम राम प्रणाम सलाम सत श्री अकाल राधे राधे नमस्कार हो जी। आप सब कैसे हो?

हाँ तुम्हारे हो चुकी हूँ मैं और तुम्हारे पास हूँ सदा। सुनाए हमको ये दो मशहूर गाने वाले लता और मुकेश जी, बढ़ चलते सुनने के लिए।

अति सुंदर सदाबहार गीत आप सुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। कुछ खूबसूरत लम्हे जो दिल में कैद हो जाया करते हैं, कसम से उन्हें याद करके हम मन ही मन कितना मुस्कुराया करते हैं। दुख की कैसी भी छाया हो जीवन में, दुख के कैसी भी छाया हो जीवन में, वो लम्हे जीने की वजह बन जाया करता है। कहने को तो सुख दुख आते जाते रहते हैं। दिल में जो रहे वो अमानत बन जाया करता है।

किशोरदा से हम सुनते हैं कि जिंदगी हंसने गाने के लिए पल दो पल, और ये फिल्म जंजीर से निकाला गया है।

इस बार हम सुनेंगे आशा भोसले जी के साथ दे रहे हैं किशोर दा जी ने। तो है वही दिल ने जिसे अपना कहा, फिल्म का नाम ये वादा रहा।

ये वादा रहा, जैसे आपने सुने फिल्म का नाम है, ये टाइटल सॉन्ग ये वादा रहा और उनको सुना है आशा भोसले जी और किशोर दा मिलकर। किसी ने बहुत खूब से कहा है कि वच साइट साली ओसन इंदातेस अक्सी रियाक्सी कोटोम वी खुद दूत खुद अंतमूत। जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो नहीं है उसका अफसोस करते हैं, जो है उसे ज़्यादा पाने के लिए रोते हैं, जो मिल जाता है उसे पाकर कभी ना संतुष्ट होता है। इंसान के फितरत ही कुछ ऐसा है जो कभी ना पूरी होते हैं।

प्यार प्यार प्यार महेंद्र कपूर जी आशा भोसले जी की आवाज़ में हमने सुने। फिल्म का नाम मुकद्दर का सिकंदर। जी हाँ, और सुनने वालों आपसे ये जरूर कहूँगी कि कुछ तो चाहत रही होगी इस बूंदों की, इस बारिश के बूंदों को भी। कुछ तो चाहत रही होगी इस बारिश की बूंदों को भी, वरना कौन गिरता है इस जमीन पर आसमान तक पहुंचने के बाद

जिंदगी जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ होने के बाद भी दुखी रहता है, तो कोई थोड़े में ही

खिला चांद खिला फिल्म सागर से निकाला गया ऋषि कपूर और डिंपल कबाडिया इसमें जो काम की है, और किशोर दास जी की आवाज़ में हमने सुने फिल्म सागर से जो निखंदी फैवन तख तख में पिक्चराइज किया गया है। चलो चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, चलो जिंदगी के सफर को एक नया मोड़ देते हैं, जो हमें ना समझे, जो हमें ना समझे हम भी उन्हें समझाना छोड़ देते हैं।

0: बाबा उसले मलाई हजुरले जस्तै सधैँ खुसी राख्छ धेरै माया
1: गर्छ फर्स्ट एभर नेपाली डुएट्स आपने सुने आपके लिए हमने चला दी और वो भी पवनदीप राजन और अरुणिता कांजलाल की आवाज में

लोगों की ज़रूरत, लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, लोगों की ज़रूरत महफिल में होती है, और प्यार की ज़रूरत, हाँ जी प्यार की ज़रूरत दिल में होती है। आपके लिए धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता

धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता सुंदर अति सुंदर आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू।

बेताब दिल है धड़कनों की कसम वाकई में कि बेताब दिल है, और ये मौसम भी कहते हैं कि बेताब दिल है आप कहाँ हो धड़कनों की कसम। फिर मिलेंगे, फिल्म का नाम है श्रिया घोषाल और सोनू निगम के आवाज में आपने सुने। Friendship is heel besonder and special. Friendship is heel besonder and special. Kopen kun je het echter niet. Friendship kun je echter niet kopen. Maar de juiste personen zullen er zijn. In tijden van vreugde, maar ook bij verdriet. Ja, dat is wel zeer zeker. मोहब्बत खुद बताती है, कहते हैं कि मोहब्बत खुद बताती है कहाँ किसका ठिकाना है, किसको आंखों में रखना है और किसे दिल में बसाना है।

सनम वाकई में आपके सिवा और कोई नहीं है, एक तो ही है सनम। रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो। हाँ सुनने वालों, रास दिल का दिल में छुपाते हैं वो, सामने आते ही नजर झुकाते हैं वो। आप जानते हो ना, अगर आपसे पहला इश्क होगा किसी से तो आप ऐसे ही शर्मीली से शर्माते हुए, आप सामने जो कोई आ जाते हैं तो आप कुछ बोल नहीं पाते, बस सिर्फ अपनी नजरें झुका लेते हैं। नजरिया झुकाने से बस जो कहना है वो अकस्मादे ही समझ जाते हैं समझने वाला। Maak je vandaag niet te veel zorgen. Doe het rustig aan en geniet van de kleine dingen die je ziet. Ja, geniet van de kleine dingen die je ziet. Wees gelukkig en blij. Want het leven rast anders zo aan je voorbij. Maak er een fijne dag van.

सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, आप जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, खुशहाल में रहो। जहाँ पे जैसे भी आप सुनते हैं, जिस देश में आप सुनते हो, आपको भी बहुत से खुशियाँ खुश नसीबियाँ पेश किया जाता है आप ही का फोन हिंदुस्तान रेडियो के जरिए से। तुम सदा मुस्कुराते रहो, तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तुम्हारा ही है। तुम सदा मुस्कुराते रहो, ये तमन्ना है हमारी, ये तमन्ना है हमारी, हर दुआ हर प्रार्थना में, हर दुआ प्रार्थना में मांगी है बस खुशियां तुम्हारी। खूबसूरत होते हैं ऐसा रिश्ता, बहुत खूबसूरत होते हैं ऐसे रिश्ते, जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो।

0: तेरा चांद मुझसे दूर है, जाने क्यों इतने मजबूर है। आप जहां से जैसे भी सुनते हैं, सुनने वालों आपके बहुत सारे प्यार पेश किया जाता है। अभी का फान हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से ऐसे कई अन्य देश है जहां पे अभी सुबह होने को जा रही है, तो ये बेस्ट रोमांटिक मूड में आप हो तो आपके भी बहुत सारे लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट पेश है। रिश्ता का कोई जाति धर्म नहीं होता, नाना, रिश्ता का कोई जाति और धर्म नहीं होता। जहाँ मोहब्बत है, जहाँ जिससे मोहब्बत हो जाता है, बस रिश्ता वहीं से शुरू हो जाता है। और कहते हैं कि सच्चा प्यार करने वाले, सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, सच्चे प्यार करने वाले जिक्र नहीं करते, लेकिन फिक्र बहुत करते हैं।
1: तड़पता मेरा दिल है, मेरी रग रग में लहू के साथ साथ तू भी शामिल है।

आवाज और संगीत हिमेश रेशमिया और सुनाए आपको सवाई भात मौजूद है। बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, बारिश के बूंदे में कभी भीग लिया करो, काम को छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। हाँ जी, काम को थोड़ा से छोड़कर मस्ती में जी लिया करो। कपड़े गीले होते हैं, कपड़े गीले होते हैं तो बस होने दो, ऐसे मौसम में एक दूजे को प्यार किया करो।

चले आए, इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है, इस मौसम की मोहब्बत कुछ इस कदर है कि वो उधर धड़कता है और इधर ये सुनने वाले तड़पते हैं।

जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, जैसे जरूरी है दिन के बाद रात होना, वैसे ही मेरे लिए, वैसे ही मेरे लिए खुशी का मतलब है बस आपका साथ होना।

जो संग है, कहते कि दो पल की जिंदगी है, दो पल की जिंदगी है, इसे जीने के लिए, इसे जीने के लिए दो वसूल बना लो। रहो तो फूलों की तरह और बिखरो तो खुशबू की तरह।

अति सुंदर ये अनूप जलोटा जी की आवाज़ में हम बहुत से सुंदर से इसकी बातें जो हम इस शब्द जो इसमें प्रयोग की है अगर उसमें हम जो गौर किए होंगे तो आप तुरंत ही पता चले कि कितनी इसमें रस भरी और शब्द इसमें इस्तेमाल की है अनूप जलोटा जी, जो हम अपने जीवन में भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा लगा वो जहाँ पे गाए कि दान देते समय वो राजा अपनी निगाहें अपनी आंखें झुका लेते थे तो प्रजा कह सोचते रहते कि ये दान देता है और फिर निगाह से आंख में आंख नहीं मिलाते हैं। तो पूछा कि आप दान देते समय क्यों आप नज़र झुका लेते हैं, तो राजा ने बहुत खूबसूरत जवाब दी कि दान तो हम दे रहे पर ये मेरी नहीं है, देने वाला तो कोई और है, मैं तो एक इंस्ट्रूमेंट हूँ जो आपको दान देते हैं। ये प्रश्न तो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसी के साथ अनूप जलोटा के बाद आपको हम एक बार फिर यहाँ से

सुनो मैया, सुनो सुनो भैया, और फूआ भी कितने खुश नसीब होते हैं कि वो जाते हैं पूरे तैयारी के साथ लावा भूजे। तो आज जहाँ पर लावा भुजावनी के काम है और लावा भूजे के तैयारियाँ हो रहे हैं, बहुत से सामग्री सामान सब कुछ जुटाना पड़ता है, बधौवा लेकर जाना पड़ता है, तब लावा कहो बहुत प्रेम और प्यार के साथ भुजा जाता है अपने बच्चों के लिए, ताकि उनके विवाह संस्कार बहुत आनंद में गुजरे और विवाह संस्कार के साथ उनका जीवन, विवाहित जीवन जो है वो भी प्रेम और प्यार के साथ जीवन दोनों मिलकर और बसर करे।

बता दी से कि संग महलिया में और बाजे है बधाई, क्यों ना क्यों ना, क्योंकि भाई और पत्नी जो है भौजी जो होते

देश हमारे राकेश यांकरन की बाजते है घुंघरू छो न न न न और ढोलक तो जानते हैं कैसे बजता है ना। हाँ मेरे दोस्तों, छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है ना। और लावा भूजे में तो क्या कहना। और ये ज़िंदगी छोटी सी है, ये ज़िंदगी छोटी सी है, इसे हंसकर और खुशी से लावा भूजत गावत और जियो। लावा स्पेशल आपके लिए प्रस्तुत हो रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से।

हाँ, परिवार मिलजुल कर और आवाहन करे सभी देवी देवताओं को, तो क्यों नहीं ये अवश्य जग पूरा हो जाएगा। मेरे प्यारे सुनने वालों, गौर पूज गौरी गणेश हो आप के लिए इस बार है विजयंती विद्यावंती चैतु।

कहते हैं कि तस्वीर की रंग चाहे जो भी हो। तस्वीर की रंग चाहे जो भी हो, किंतु हाँ किंतु परंतु किंतु मुस्कान का रंग हमेशा खूबसूरत ही होती है। और मेरे दोस्तों, रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, हाँ रिश्ता वही जो हर हाल में साथ दे, नजरों से नहीं बल्कि दिल से बात करें।

हमको एक बार फिर से सुना दी है आनंद या करण जी की हो या राम नाम का पक्का, और क्या माया में रखा, हाँ क्या माया में रखा, माया हमको भी आवश्यक है जीवन जीने के लिए। माया यानी कि माया किसी के नाम भी है, और माया इसमें बदल होता है हेत मटेरियल, हेत मटेरियल है बहुत सेकर नो दख ओम ओंस लेफ ओ मोखलक एम मोय तमाकन, मार नित इन फरबोंदे गबोंदे ए गहेक्त राकतन। Ons lichaam is een onderdeel van het Maya. Maar het lichaam hebben we ook zeer zeker nodig om de weg te bewandelen en om moksha bereiken. Muskurake deko to sara jahan rangin he, warna bhigi palko se to aina bhi dhundala dikhta hai. ये जो लाइन आपने सुने इसे अगर यकीन ना हो तो आजमा कर देखो कि मुस्कुरा कर देखो तो सारा जहान रंगीन दिखता है, और भीगी पलकों से तो आईना भी धुंधला दिखता है। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो

अति सुंदर अति सुंदर की ओढ़ी ओढ़ी रे मैया मैया और लाल चुनरी। कितनी खुशी के बात है हम नवरात्र भी मनाने को जा रहे।

नवरात्रम के हार्दिक से शुभकामनाएं पेश हो रहा है आपको, हम सभी को फावन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से इस नवरात्रि को आप सबको, आप सबके जीवन में, हम सबके जीवन में सकारात्मक की ऊर्जा मिले, माँ हम सबकी स्वस्थ रखे और हमेशा अपने प्यार से सुरक्षित रखे, अपने प्यार के छत्र छाया में हमारे जीवन बीते।

दुर्गा नवरात्रम पे आप सभी को बहुत सारी बधाइयाँ है कि माँ दुर्गा चली आई और धीरे धीरे तेरी पूजा से होती हर तेरी पूजा से होती है हर मुराद पूरी। मेरी माँ, माँ तू है सबसे ज़रूरी। जी हाँ, माँ की सबसे ज़रूरी है। माँ के दर्शन से जीवन निखर ही जाता है। माँ के दर्शन से जीवन निखर ही जाता है। तेरी कृपा से भाग्य संवर जाता है। तो माँ, आपका आशीष कृपा हम सब पे रहे।

गुंजन जी की आवाज में की रंग दी है गौरा जी ने, मेरी चुनरी रंगों से और रंग दी है कितनी खूबसूरत। जिंदगी की हर तमन्ना हो पूरी मेरे दोस्तों, कोई भी आरजू ना रहे अधूरी। जिंदगी की हर शुभ शुभ मनोकामना तमन्ना जो है वो हो पूरी। यही विनती है प्रार्थना माँ से कि हम सब की मनोकामना जो है, शुभ शुभ मनोकामना वो है, वो सब पूरी होवे। माँ के दर्शन से जीवन निखर जाती है, क्या बात है कि माँ के दर्शन से जीवन निखर जाती है। तेरी कृपा से माँ हम सब के भाग्य सुधर जाती है।

फूल बिखराओ दगरिया में नगरिया में रास्ते में माँ विराजे है आपके आंगना में, उसे बहुत प्यार के साथ स्वागत और स्वागत करते हैं हम। Het leven is mooier als je, als we mooie momenten met iemand, met elkaar kunnen delen. Zo is dat toch, mijn lieve mensen.

वाकई नैनों से निहारी ना जाए, मैया बहुत बहुत प्यारी लगती है। लाल रंग की चुनरी से सजा माँ का दरबार, लाल रंग की चुनरी से सजा है माँ का दरबार। हर्षित हुआ मन, पुलकित हुआ संसार, नन्हे नन्हे कदमों से माँ आए हम सबके द्वार। और इस नवरात्रि में मिले हम सबको खुशियाँ भरा और खुशियाँ भरी

आने वाली है माँ, आने वाली है, ज़रूर से माँ आएगी। नवरात्रि हम सभी को बहुत सारी बधाइयाँ है, बुराई चाहिए बुराइयाँ मेरे दोस्तों, बुराइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, माँ के शक्ति के आगे टिक नहीं सकती। नो, माँ की शक्ति है तो असंभव को भी संभव बना जाती है मैया, कि माँ की शक्ति है तो असंभव भी असंभव हो जाता है, बस हमको उन पे विश्वास होना चाहिए।

बहुत दूर अभी जाना है, बहुत दूर अभी जाना है, पर चिंता नहीं, चिंतन का दामन थामा है, क्योंकि माँ ने मेरी मुझे अपना बनाया है। चिंता मत करो, बल्कि चिंतन करो, चिंतन करो।

कितने सुंदर भजन है माँ के प्रति बना दिया गया है मेरे प्यारे सुनने वालों, अति सुंदर। और यहाँ से एक दो और नवरात्रम के स्पेशल आपके लिए।

मेरा शेरा वाली माँ, जोता वाली माँ, नवरात्रम के हार्दिक से शुभकामनाएं आप सभी को फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से पेश हो रहा है।

मेरे प्यारे सुनने वालों, आज शनिवार के कार्यक्रम में दो बजे यहाँ से लाइव कार्यक्रम रहेगा। लाइव तो हो रहा है द वॉट खसप्रेक मैच सुंदर हीरा राधे रॉय या तेसन खसप्रेक मैच सुंदर हीरा

अभी 2 बजे इंटरव्यू रहेगा, मने सुंदर हीरा से, तो उससे आप जरूर से गौर करें भी उस पर।

हम यहाँ से हमने श्रवण की है मने चारू जी के आवास में, मने सुग्रीम चारू जी के आवास में हो मेरे हमराई। और यहाँ से आपके लिए चुनकर रखी हूँ उस्ताद विशाल खेमाई।

0: या उस्ताद विशाल खेमाई, विशाल खेमाई क्या गला इनका है, और यहाँ से एक और हो जाए उन्हीं की आवाज में।
1: तेरी उम्र है 16 साल,
0: क्या गजब की बात है।

हाँ तो उस्ताद, विशाल के मायने सुना दी है कि सजनिया बहिया में बहिया तो डालो, और कहते कि हर पल में प्यार है, हर पल में प्यार है, हर लम्हा में खुशी है, कह दे तो यादें है, जी लो तो वो जिंदगी है मेरे दोस्त। इस बार आपको सुनाएंगे हम देखे तो मिस्टर बिगामांग की आवाज़ में।

सच में बोलो या ना बोलो हमें क्या गम है मिस्टर बीगा मांग की आवाज में। आई स्वाद तोरी दे मैंने लिफोमेंस और एक बार फिर यहाँ से आज सैटरडे है ना। सैटरडे सैटरडे में क्या क्या गाना होता है क्या क्या फरमाइशें होता है ना सिर्फ सैटरडे में दौड़ द वीक्स ओ अलग मोमेंट है। ये ज़िंदगी छोटी सी है मेरे दोस्तों ये ज़िंदगी छोटी सी है इसे हंस कर जियो क्योंकि लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। सिंगल बॉटल माय दोस्त

हाँ, सिंगल बॉटल नहीं चलेगा मेरे दोस्तों। हाँ, सिंगल बॉटल नहीं चलेगा, सुने आपने? कोई माल से खुशी है, कहते हैं कि कोई माल से खुशी है तो कोई दाल से खुशी है। खुश नसीब वो है मेरे दोस्त, खुश नसीब आप हैं, खुश नसीब वो है जो हर हाल में खुश है।

0: बाबा ना आवे जाए और बाबा ना आवे जाए, खुशियाँ से मिलते हैं वो पल, खुशियाँ से मिलते हैं वो पल, हर हर पल हंसना ही है असल। जितना बार हंसी आए चेहरे पर, हाँ वही हंसी जो आपके चेहरे पर इस वक्त है, जितना हंसी आए, जितनी बार हंसी आए चेहरे पर, समझो खुशियाँ आ गया नया पल। खुशियाँ का आया है नया पल।
1: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा
0: मिस्टर म्याऊ म्याऊ।

मिस्टर म्याओ म्याओ, मिस्टर म्याओ म्याओ के ये सुंदर गीत भी उनकी आवाज़ में हम सुनेंगे। उससे पहले मिस्टर म्याओ म्याओ का कहना ये है कि हंसते दिलों का, कि हंसते, हाँ यहाँ पे रुको भैया, हाँ अभी तो वक्त ही करो ना, हाँ हंसते दिलों में गम भी है, मुस्कुराती आँखों भी कभी नम भी है, दुआ करते हैं आपकी हंसी कभी ना रुके, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट के, आपकी मुस्कुराहट के दीवाने हैं हम।

En dat was een shuka shuka shuka chitri zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को एंड ओनली द हॉट वन बाय रेडियो फॉर हॉन.

भाई हॉट वन जोन हम चलाते हैं, आप लोग जरूर सुनना। तो हम चलते हैं एक आउट सॉन्ग की ओर।

और क्या हुआ तेरा वादा नहीं खतीजी बतका लेकिन रेमिक सॉन्ग। तो दोस्तों आगे है स्टूडियो में हम अभी आप लोगों ने शांता खेमई से लाइव प्रोग्राम को सुना है। यहां से हम प्रोग्राम को भी ऑफर लेंगे जैसे वादा के मुताबिक। रॉय देवराज भी आ चुका स्टूडियो में अभी 2 बजे से। हमारा भैया सुंदर हीरा भी आ जाएंगे, राधे आ जाएंगे, 3 बजे भैया संजय रहेंगे। अभी अभी सुना है श्रीनाम देश से भी एक बड़ा कलाकार आया है, तो अभी वो भी हमारा स्टूडियो में आएंगे। जोन मियाऊ मियाऊ करे है भैया, तो वो भी अभी आएंगे। तो अभी कुछ बातचीत 2 बजे से हम जा रहा और सबसे होगा श्रीनाम देश से और यहां से।

दोस्तों आज कुछ कलाकार के गीत आज रुक के बैठ गाना के प्रोग्राम को सुनाएंगे। एक ढोल सुनिए भैया देवराज का यहाँ पर।

तो आप लोग को बता देते हैं, ये जो आप लोग उंगली की कमान सुने हैं वो और कोई नहीं है, रॉय देवराज हैं। और सिर्फ वो ढोल नहीं बजाते हैं, कभी कभी माइक्रोफोन पकड़ के और गीत भी गाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो महेश रेखा ढोल पे है और रॉय देवराज जो यहाँ पर है वो माइक्रोफोन पे एक गीत सुनाते हैं।

वाह वाह वाह रॉय देवराज यहाँ पर मेरे साथ रेडियो पर यहाँ पर है। अभी कुछ बातचीत होगा लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हरीशिबाल किसान भी बहुत सा गीत पर उसने उसका सीडी पर रिकॉर्डिंग पे जितना खेल है वो सब पर वो बजाइए ढोल एक सुना जाए जाने खेलो ना बाजी। और वो है स्वर्गीय हरीशिबाल का एक पुराना गीत है लोकल गाना है श्री राम देश में और श्री राम देश के जिस पेरे हमारे ढोल मास्टर है उस्ताद उस्ताद और वो है टबल जी का इष्ट प्लांस वो है हमारा रॉय देवराज। ढोल का इष्ट प्लांस वो है रॉय देवराज।

0: इत जो रॉय देवरांच ने हरि शिवालय के संगे रामदेव चैटी के संगे जो बजाए है वो आपको हम जरूर सुनाएंगे। हमारे यारो
1: उतर गए ले पार।

दोस्तों वादा के मुताबिक जो कई रोज से आप लोग सुन रहे हैं कि आज हम स्टूडियो फोन पर एक दो बड़े बड़े कलाकार को हम यहाँ पर निमंत्रण किए हैं, बुलाए हैं और यहाँ पर हमारे साथ माइक्रोफोन का आगे बढ़ गए हैं। पुराना उस्ताद जो है आज नया ज़माना में भी वही काम कर रहा है जो वो सदा से करते आए हैं और वो है उनसे बेस्ट नगा रमान, उनसे बेस्ट असली लोंडा के नाच के उस्ताद, वो है श्रीमान उस्ताद सुंदर हीरा। साथ ही साथ यानी कि रॉय देवराज के आप लोग भी जानते हैं, कई साल से वो हमारे हिंदुस्तानी के धर्म में अपनी उंगली के कमाल चलाते हैं। इन फ्रॉम द बेस्ट ढोलकिया इन उनसे हिंदुस्तान से खमीज का आज भी वो लेस देते हैं, कितने लड़कन के सिखाते हैं उससे भी बातचीत करेंगे। साथ ही साथ भैया राधे लोंडा के नाच वो भी हमारे प्रोग्राम को सुन रहे हैं, उसको भी अभी हम इतार करेंगे और करीब 3 बजे एक पंडित भी आएंगे और आज हम सब बातचीत करेंगे अपना धर्म के बारे में। पहले हम भैया उस्ताद को एक गीत सुना दी जहाँ पर वो नाते हैं, वो है सुंदर हीरा।

0: तो आप लोगों ने सुना है भैया सुंदर हीरा के, भैया सुंदर हीरा नमस्कार हो।
1: नमस्कार भैया रॉय, नमस्कार।
0: आप कैसे हो भाई?
1: आप लोग की कृपा है।
0: आप हमारा धर्म के एक चिराग हो, और वो चिराग जो है हमारा पूरा हिंदू धर्म के आज उजाला किया है। आपके हम स्वागत करते हैं अपने रेडियो फहन में, जो इस वक्त पूरा दुनिया पे इंटरनेट के जरिए लोग सुन रहे हैं। भैया सुंदर हीरा,
1: धन्यवाद भाई।
0: भाई सुंदर हीरा, अभी आपके तो यहाँ बज रहा है, इस इट बकेंट फॉर यू? लेकिन पुराना तो आप भी अपने बारे में, आप दुनिया तो आपको जानते हैं भाई सुंदर, फिर भी आपको परिचय सुनने के लिए आपके मुखारविंद से हमारे कान तरस रहे हैं।
1: भाई हमारे पैदाइश वर्षा खा कफड़िया पासी पेशे पहले बोलत रहे, और हमारा नाम है सुंदर हीरा। हम लोंडवा के नाच बचपन से करीला। हम कैसे शुरू भइल है, हम अपने नानी के साथ रह रही।
0: भाई सुंदर हीरा, आपके बात हम थोड़ा से बीच में काट देते हैं, माफी करते हैं। आप कई साल को हुए भाई?
1: हम कुछ रह गए सही फंद यार,
0: और अभी तो आप दिखा रहे हैं 18 के।
1: धन्यवाद।
0: इसके वजह क्या है कि आप इतना जवान दिखते हैं? अभी आप लोंडा के नाच पीछे कर देते हैं जवान के, कैसे इसके इसमें क्या है?
1: ये बात यही है कि जब ढोल डंटा हारमोनिया बजे है तो हाथ गोड़ तो हिल बाकी दिल भी हिल जा है।
0: सही बात है। भाई हीरा, हम तेरी अपना तुम्हारे पड़ोसी के पास जानते हैं, और भाई रॉय के पास हम जाते हैं, रॉय देवराज से उसके परिचय को हम पूछे कि वो कौन है, कहाँ है, कैसे है। भाई रॉय, आपको हम रेडियो फाहुन पे स्वागत करते हैं, नमस्कार हो।
2: नमस्कार भाई, राम राम सीताराम। और मैं रॉय देवराज हूँ। मैं छोटे से, जब मैं 9 बरस के था तब से मैं ढोल बजा रहे हैं, सीख रहा था 9 बरस से। 10-11 बरस जो हुआ तो मैं हमारे उस्ताद हरीश शिवालक के बैंड में मैंने वहाँ जाने अपना पांव रखा, जाने कि मैं वहाँ पर कान बजान के साथ में हरीश शिवालक के मैंने वहाँ पे साथ दिया। मामा ने मुझे, मेरे मामा है वो, उसके मैं वो मौका दिया।
0: भाई रोई, आपको बात जो है हम तरी से काट देते हैं, कारण कि हमारा ये माइक्रोफोन उतना आवाज नहीं है। आप भाई हीरा के माइक्रोफोन पे जा सकते हो, ओके बगल में बैठ जाओ ना, तब कुछ जाएंगे। हाँ भाई रोजी, आपके आवाज सुनने के लिए हमारा भी कान तरस रहा है। आप कौन हो वो इसे तो सब कोई जानते, फिर भी आप ना अपना परिचय देते तो बहुत अच्छा बात है।
2: भाई राम राम सीताराम, परिचय तो आप लोग तो सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ कि जब मैं 9 बरस के था तो तब से मैं ढोल के कारोबार में जाने कि सीखते सीखते 10-11 बरस के हुआ तो ये जो मुझे जो पावर किया, जो इसकी जो हिम्मत दिया तो वो था हरी नत्था। और उसके बाद में 2-3 बरस में बाद हरी नत्था चलाया होलांज, और उसके बाद में तो वह चला गया हरीश शिवालक के समाज में, और वहाँ से तो मैंने 10-11 बरस वहाँ बजाया, और उसके बाद में तो फिर ऐसे ऐसे राजेश गुलाम में चला गया, और राजे शिव गुलाम के बाद में तो ऐसे ऐसे सभी जितना पुराना गवैया है सूरीनाम में, यानी कि डेबाब है, देसी रघु सिंह है, जितना पुराना गवैया बड़े बड़े जो है था सभी के साथ मैंने काम किया, मैंने बजाए हैं। और ये गर्व की बात है कि मैंने ऐसा मौका भी पाया कि ताकि मैं आगे बढ़ सकूं।
0: भाई रॉय, आपकी परिचय जो है बहुत सुंदर है। कई साल के हुए भाई रॉय, असली वाल बताइए।
2: भाई हम जब, अरे असली तो बोलूँगा, झूठ बोलने से तो पाप है, लेकिन मैं जब ईसाई तुम सेफन सेफन सस्ते के बाटी भाई
0: तुझे तक तक मात्रे बोले
2: नहीं भाई सेफन सस्ते अब तो पास पेंशन गया हूँ और जब मैं ये सोचता हूँ कि किस किसके किसके साथ मैंने बजाया है तो कितने के भूल गया सोचते सोचते गिनती नहीं है
0: अच्छा भाई रॉय आपके सब जानते हैं द बताइकनेस इज एक्चुअली कहे के ये हम पूछते हैं कि लोग को पता चले कि कैप्टवी एरफारन द पर्सन इन हियर फॉर द माइक्रोफोन्स जेके कोई ना मिसलाइट कर सके है कि ढोल कौनची है हमार स्किल तीर कौनची है हमारा हिंदू धर्म कौनची है एकर बारे में आप दोनों के कोई ना मिसलाइट कर पाए वन तो लोग के खून में है तो लोग के जन्म में है चलो के सब कुछ में ना भाई हीरा क्लॉप तो बेटा हाँ तो यही के मारे इसीलिए हम ये पूछते हैं वह है इरफान मैन से भाई हीरा कुछ बोलना चाहते हैं
1: जी बड़ा खुशी की बात है आपके बहुत हृदय से धन्यवाद दे रहा कि आप मौका दे लो आए कि कुछ बतियाए के अब मालूम ना है क्या पूछेगा आप और क्या बोलूंगा
0: नहीं आप लोग से ये आप लोग को क्या सोचना है आप लोग तो कलाकार के ऊपर महाकलाकार है नहीं बातचीत ये हो रहा है भाई सुंदर हीरा और भाई रॉय कुछ अपना धर्म के बारे में अपना परिचय हम थोड़ा सा कर दें ये लोग जानते हैं कि ये महाराजियो फाहून के अनाउंसर है इंटरव्यू करते हैं सूरीनाम से लेकर यहाँ तक लोग के हमारा नाम है रॉय सुरजबाली हमारा असली नाम है रॉय सुरजबाली जिन्हें लोग जॉनी नंबर वन के नाम से जानते हैं अपने जिंदगी में हम 16-17 बरस के रहे तब हम नाटक के पोड़ियों पे आ गए 17 बरस के रहे तब हम नाटक खेलेला यानी कि जो हमारा खून में है वो है नाटक हम नाटक शुरू किया है सूरीनाम देश में 17 बरिस के थे पहला नाटक हमारा था आज की दुनिया नाटक हमने खेला जिसको जो निर्देशक थे जो नाटक को लिखा था पंडित सूरजपाल था या वो था हंसु का वो कमोवीने का हमारा काका जो है रमेश बुद्धू हारमोनिया बजाते थे अरे वो बल्ली रहा भाई रोई ओके तो जानो हो बल्ली ना लेने इन तुमने को ढोल बजाते थे तो आज की दुनिया रोगन वाला नाटक से हम शुरू किया है रोगन के नाटक के बाद में और कुछ किया है लहू को पुकार किया है और आखिरी नाटक जो हमने सूरीनाम में खेला था भाई हीरा वो था नवलखाहार
1: अरे बहुत पुराना
0: हाँ लेकिन वो नवलखाहार ना जो हरीश बालक लोग खेले थे वो नहीं उसके बाद हम सब लंगा डाम एटकेक पे निकाले जिसमें हम मलखान के रोल खेलते थे
1: अच्छा
0: हाँ तो आल्हा और उदल मलखान डेवा सैयद का वो सब कुलतीर हमारा शरीर में है हमारा धर्म हमारा पावर है अपना धर्म जोर से पकड़ना चाहिए जैसे एक जबर पेड़ है उसको पकड़ लो उसको हिलाना मत वो ही तुम्हारा साथ चलेगा तो आज की दुनिया हरीश बालक जो आप लोग उसके साथ नया बनाए थे कितने नाटक सूरीनाम में खेले थे तो हम जब हॉलान चलाया तो यहाँ पे हमने 13 नाटक लिखा है धरती नाटक हमने लिख कर और उसको हम लंदलक टूर किया है
1: जी मालूम है भाई
0: हाँ 13 नाटक हमने लिख दिया है लिख कर अपना काम किया है तो इस यहाँ पर हम सब बैठे तो ऊंचा नहीं खेलते बदुलिंग है दत वे इरफान द मेंजेस एंड ओवर ऑन सफाक दखाते तो हम लोग अपने आप के ना जाला महान खेले कि हम एक कल मुक कर लिए बदुलिंग है कि जनता जाने कि दत इरफान द मेंजेस हियर जाइन die namelijk over ons dharm, onze cultuur gaan praten, vergelijking met de nieuwe generatie wat op dit moment in bepaalde gebieden heel erg misbruik maken van onze geloof, van onze cultuur. En daar wil ik vandaag duidelijkheid hebben bij onze mensen. We kunnen ook in Nederlands praten, bij voor de jongeren en ook in Hindi. En Hindustan is Sarnami Sabha Samhano Bataise Kila, Johnny Admihaloon, Hame, Mooi Se Samje. Tabhai Hira हमसे आप बताओ इलोंडा के नाच कौन सी है भाई
1: इलोंडा के नाच जो है ये हम लोग के पुरखन ले गए बहुत पुराना है ये सिद्धांत जो हम लोग के है हिंदुस्तानी में सनातन धर्म में तो हम लोग के इतना एक एक दोनों हाथ से पकड़ के चाहिए रखे कि छूटे ना बदले ना लेकिन आज काल बदलते हैं लोंडवा के नाच
0: काहे के बदलते
1: मालूम ना है, जैसे यहाँ अब थोड़ा दिन के बाद में कोरोना चल रहा है, ऐसे ई सहित एक रकम के एगो फिरस चल सरनाम में होलैंड में, और धंधा पैसा के सब कोई अपन अपन ढंग से कुछ ना कुछ परसेंट करे है, बाकी जरिया सब कोई छोड़ के खाली पुलैया भागे अपन फोर दिन खातिर। और लोंडवा के नाच जोन रहा पहले के तो संस्कृति रहा, और होत रहा खाई जब दूल्हा सफरा रहा तब, और जो पचास वर्ष आज हो आजकल के हो है ये ना होत रहा भाई, वही आदमी के घर पचरा होता है जो पहले के बुढ़वन ले के अने रहने अपन चढ़ावत बजावत रहने, तो अलग में एगो कंपू घर तनी टूटी भाषा में कंपू घर तो वहाँ पूजा करते रहे, तो का होता रहा जब जेके बेटवा रहे बेटवा के बिहार है तो चढ़ावत रहने कोई खसी चढ़ावत रहे कोई सुअर चढ़ावत रहे, तो ऊ होता है कौभर में कौभर बोलते रहे भी जहाँ सबके पूजा होता रहा बहरे, तो हुआ चढ़ावत बजावत रहे खसी मार रहे चढ़ावत रहे, तो नचनिया जोन रहा पहले के नचनिया हम ले के जाएला ताश तो ताश में धल रहे कोफर में धल रहे, बाकी हुआ रहा नचनिया के तैकन एगो रहा फालिश, फालिश जो कपड़ा धराता है पहले तो ओमन नचनिया अपन कपड़ा लेके आओ जब आए गए तो जान जे हुई नचनिया है हाँ ओके तैकन हो ही रहा, तो वो अपन विधि विधान से अपन पूजा प्रार्थना सब ले के चीज ले के आवे, तो पहले कौभर में जहाँ कंपू में तो जब पूजा होवे चढ़ावे बजावे के तो वहाँ टिकट रह लें वहाँ मनावत रहे प्रार्थना करत रह लें देवी देवता के कि जे कोई है पुरखन ले के अगले पूजा करे हम लोग अनजान बाटी, तो वो सब पूजा कर रहे वहाँ नाच होता है वहीं पे चढ़ा जहाँ चढ़े बजे वो खाएम वाली चीज़ रहा, वो बहरे के आदमी ना जानता ई मारे हम जानी रहा काहे से हम अपने मामा के साथ जात रही तो ओके साथे साथे रह रही तब देखत आई ली छोटे से कि कैसे है, तब जाता है दूल्हा सजे और ना कि वो सब का बोले एक बोतल पी के तब जाते हैं नाचे या गांजा घेंच के नाचते रहे वो सब चीज ना रहा, नियम धर्म से आदमी करत रहा। तो लोंडा के नाच हुआ से शुरू है और जोन ले के अगले हैं या तो हम लोग के चाहिए खुशी रहे कि इतना दिन लगभग अरे उनका फिर बोले 105 तक या 150 बरिस हो गए हैं हम उनके पुरखन के अगले हैं, बाकी ये चीज़ जोन इस शायद हो है बहुत शर्म के बात है के कैसे है ओकर बारे में प्रसंगलक है जोकर है वो जोन मांगने तो करे, पहले एक बुढ़वन रहे तब गुस्साए के बोलत कि खूंटा में राड़ के चाय फाड़ो, हाँ पहले के बुढ़िया बुढ़वन ऐसे बात याद रहे चाय खूंटा में राड़ के फाड़ो बाकी हमारे धर्म से दूर रहियो, पहले का ऐसे रह लें
0: भाई हीरा हमारे बिया में साल दुई नचनिया रहा।
1: हाँ अच्छा
0: उमदत हम खुद नाटक खेले थी आज की दुनिया हाँ। तो हमारे नाटक में अर्जुन रसोगा रहा लेनी नीख के
1: अच्छा
0: शायद जानो है हमारे नाटक के वो नचनिया रहा हाँ। और एगो बिहारी रहा हमें जना सी रिफीर के रहा भाई रोई जानो है ना तो ये दोनों हमारे शादी में सूरीनाम देश में वो सब नाचे रहा, तो हम वहाँ पे तो अब के जो शुवन मुदुवन उस समीप तो ना रहा भाई
1: ना भाई ना ना ना ना ना वो चीज ना रहा वो पकड़े ढकड़े वाली चीज और लहंगा से तोप के तो वो रकम नाचे है कि हमें शर्म लगे बोले कि हम ना बुलब भी काहे से हम लोग उम्र वाली बाटी और वो सब ना शोभा दे हमारे मुँह से सुनने के, बाकी आप लोग जाने हैं कौन ची बदूल के ये शायद कौन ची हो है कौन रकम नाच हो है कौन रकम पकड़ाउबल ढकड़ाउबल हो है, पहले नाचत रहे तब नचनिया को कुर्सी पे उज्जर रुमाल रखत रहा हाँ वो नाचत रहा, तो पहले जब सुमरन करे तो ढोल जो बजत रहा अब बिरले आदमी हुई ये स्वागरी बजाई सके है कैसे पुराना तबलची है तो इनका मालूम है सुमरन पचरा के ढोल जब सुमरन हो तो रोवा रोवा ठंडा हो जाता है, तो नचनिया जब अपन प्रार्थना करे अपन जब वो नाचे तो जेके इच्छा रहे तो लायक उ टेम पे चुन्नी एक रुपया बहुत बड़का पैसा रहा सरनाम के होल दे बहुत बड़का पैसा रहा, और जब कोई डाला धर देश तब तो धल मिलियनर है, तो आदमी अपने इच्छा से कोई के न पकड़े के परत रहा। और आजी लोग आजी नानी लोग रहते रहे तो जब उस सबके नाच के प्रसन्न रहे जो आँखी के देखल और यहाँ हम मोहलान में ही माँ के कर लिए खुद तो उस सब सोना के अंगूठी देवत रहे नचनिया के अब कि तो का बोल क्या सोट रहा के देवत रहे इतना खुशी रह रहे बुढ़ियन आजी आजी और नानी ज़्यादा ज़्यादा बुढ़वन तो बैठल रह जा रहा बाकी बुढ़ियन खुशी के मारे ऐसे कर रहे हैं। उसी यहाँ होलान में तीन बार हम सोना पहली हैं। अच्छा। हाँ एक आमसद्दाम में वो उनका आदमी भी रहा वो नचनिया जवानी में और हम पहले स्लेंगे में वो एक बार निकेरी की पलवार रहा और एक बार रोटरडैम में।
0: भाई सुंदर भाई रोही हमें एक फ्राक और रहेगा आप लोग तो उस्ताद बटो लुंडा के ना दी वोट सेल्फ स्प्रेक करेगा कि लुंडा नाचे है।
1: लुंडा नाचे
0: लुंडा नाचे है तो लुंडा के नाच अब तो हैगा हमने जला बोले होमो या हिजड़ा या ऑल सॉर्ट मेंस डांस डांस मत क्लब द नाम तो नहीं भाई
1: ना ना ना ना ना कुछ न क्लब हो है ये सब मनमानी के करे हैं।
0: तो अब आपके बेटवा के ब्याह है या हमारे बेटवा के ब्याह है तो हम लुंडा के बुलावे कि इस सब के बुलावे भैया हम लोग के ट्रेडिशन बोले लुंडा के नाम
1: भैया पहले सब शादी शुदा वाली आदमी रहते रहे अब जो जवान रहा उनके ब्याह ना भरना स्वागरी तब नाचा नाचा रहे और जब कोई नाचिस तो लुंडवे है वो औरत के रूप न धरी और कोई के ऊपर ना माता आवत रहा ना पिता आवत रहा ना, ना हनुमान आवत रहा ना काली माता आवत रहा बाकी एक बात हम जरूर बोले चाहिला कि जोन धंधा इसे उठैले हैं छोड़ दे अबे देर ना है और जब ना जाने हैं नाच कोई से पूछ ले बाकी ये धंधा जोन उठैले हैं भैया आप भी सोचो भाई रोई स्वागरी आप भी बोलिए तब पुराना बाटो कि हम लोग के जब बुखार लग जाता है फिर तकरा दे तब मैया दैया होता है ना बेदी में से उठ ना पावत रही हम लोग और क्या बोले है क्या कोई के जब चल जाए तो बोले भैया एक कुछ हवा व्यवहार पकड़ ली से तो ओके हम ना संभार पाई ला तो तोरे ऊपर देवी आई तो ये दहिया संभार पाई बुखार जब लगे हम उनके ना संभार पैली क्या बोले कोरोना मारिस ना संभार पैले तो देवी जब तेरे ऊपर आई तब का हुई तो तेरे साथ ये झूठ फूट जोन बोले है हर एक चीज जोन अत है भैया उकर अंत है हर एक चीज जब अत्यंत कर ले तो उकर अंत है।
0: भाई हीरा एक बात और है अने हम शायद देखेला नीदरलैंड में भी भइल है श्रीनाम देश में भइल है अभी आप लोग सुनिए सनातन धर्म श्रीनाम में कॉन्टैक्ट भइल है
1: जी जी जी
0: एने कैपिटल हिस्ट्री नो कॉन्टैक्ट हाथ में सनातन धर्म श्रीनाम
1: जी
0: एन एक कैपर गस्प्रोक मेट द सेक्रेटारिस मेफ्रोव गीता En ik had gevraagd of ik iemand van het bestuur vandaag een interview kon nemen. Puur omdat alle mandiers, bijna alle mandiers van Suriname is aangesloten met de Sanatan Dharam Mahasabha van de Koningsstraat.
1: Ja, ja.
0: Oro, hun zijn de baas.
1: Ja.
0: Hun zijn de baas.
1: Ja.
0: Oro, hem de kila Suriname ke mandir me, hiya ke mandir me bhi bhail hai.
1: Ja.
0: नचनिया जा है मूर्ति के आगे नाचे
1: भैया ना बोलना
0: भाई
1: बोल।
0: व्हाट फिंट यू इरफान भाई रोई और भाई हीरा दोनों मिला पूछिला
1: बताओ स्वागत है
2: जितना विवाह ध्यान करियो का बोली ना कि जितना विवाह हो है इस आचार से और जितना नचनिया लोग करे है एक विवाह सोझे ना रहे है सब देख
1: तो
2: यही सब कारण से आज विवाह ना ना
1: ठीक है
2: ना ठीक है
0: तो बोले खात नहीं खुद में तो
2: बोले खात नहीं खुद कैसे यही सब फौज से और एक लग माई बाप के भी चाहिए जब नचनिया खोजे है तब चाहिए सोच विचार से और पूछ के भैया तू
1: मरद बाटे कि औरत मरद बाटो
0: लुंडा के चाहिए नाचे के यहाँ पे होमो के ना चाहिए
1: ना ये हिजरा लोग के काम ना
2: ना ना ना ना वो ना हो करता जो में स्पेशलिस्ट है वो सब पुराना नचनिया जो भैया यहाँ बैठे हैं वो तो प्रसिद्ध बतावे कैसे कैसे है माँ वही के कारण से आज इतना लड़कन यहाँ सब ऐसी वैसी बात यही कारण
1: से सही बात है।
2: हाँ इस घर के कारण से शुरू हुआ है और घर से तो सब कुछ शुरू हुआ है हुए से तो पहुँच कर दे रहे भैया तो आज यही कारण से सब लड़कन ऐसी वैसी आज चाहे जैसे सुन लो भैया की 3 महीना रहल हो तो ना मोह जाए ना बहन ना मुंशी पर भैया क्या रहना चाहिए वो मोह चले भाई वही वही कारण से आज मैया भी गुस्सा जाए हम लोग के आज जो पर्वत में मैया बैठल है

0: कोई ना देखे
1: ना ख्याल करे और चाहिए बाकी ख्याल करेंगे.
2: Maar daarvoor zijn jullie toch, om die mensen wijs te maken. Wat jullie zijn de ervarende mensen.
1: En daarom zeg ik ook, maar het moet zo zijn.
0: Jaria, bol bol sorry. Jaria jo ne, to hamon mani lai sa, waise hai, ki pandit ke dwara sab cheez ho hai. Hum begin mein jab dekh li video pe, to hum door aur door riya kar li, kitna admi hai mein gari aais. Maar hume gari na lage, hum apan dil ke baat jon bol li jon ki, hume na thik lage. हम जुड़ते रही आखिर कर ली कि हम उनके सनातन धर्म महासभा और आर्य देव आकर महासभा कहाँ है, सूते हैं सब. ये भैया जन्म से हम उनके जन्म भैले पैदाइश भैले सन्नाम में कभी कोई ना नीम के पेड़ ले के नाचत रहा, ना कोई कटलिस ले के नाचत रहा, ना कोई छुड़ी ले के नाचत रहा. ना कलाकार अरे उचवा हमारे जन्म बॉलीवुड बड़ा दूर सबके निकाल दी से भर भस्ट हो गई सबके दिमाग.
1: बॉलीवुड तो कलयुग के तहिए
2: भाई रहे. हम सुन ले रही सबन रात के कुछ और धंधा उठावे और दिन के वही जिभिया पे धरे कपूर. कपूर बार के और जाए है दुर्गा माता खेले काली माता खेले और मंदिर में नाचे है. ई कहाँ के स्वभाव है भैया.
1: सब सब उल्टा काम हुआ.
0: ये नचनिया नाचत रहा पहले के बहुत ज्ञानी ज्ञानी आदमी रहा, ना भोथर दुंग दुंग आदमी रहा. हाँ. जो समाज रहा. हाँ. एक ओमन के बहुत चढ़ा कर रहा जो ये पचरा हो है. अच्छा. और क्या बोलेगा इंद्रजाल. हाँ. पहले के बुढ़वन इंद्रजाल जानत रहने वो सब मांगे तो तोर गोड़ बांध देवत रहा. इतना इतना खफाल लग रहा सब. हाँ. सोचिए कि पहले के आदमी कि जोन ज्ञान उस सबके रहा और अब के जोन हो है झूठ फूट जितना सब करे है तो यही चीज मिले है सबके. और अबे देर ना है अबे से स्टॉप कर दे तो अपन जीवन संभाल ली. लेकिन जब यही धंधा में रही तो बर्बाद हो जाए एकदम से. एक नचनिया रहा भान मरे से पहले दरहाख में हम नाचत रही. हमें एक शिक्षा दीस कि सुंदर एक चीज करिए ना करिए जो आदमी हमारे साथ करवाई से अब हम धोखे में रह गईली कि पचरा हिया हुआ नाचे के. पचरा हुई आदमी के घरे हो है जहाँ पूजल जाए जे अपन भूत प्रेत देवता पितर ले के अगले अपन पूजे माने हैं तो वो सब अटल रहने हैं. बाकी वो सब नियम धर्म से करे रहने. और भी कि आदमी जो कपूर के बात है तक कपूर यही आदमी गदौरी पर रखत रहा. हाँ. और ना कि आधा जर जाए तब उसके बुताई देवे. एकदम कपूर एकदम जर जाता है और हाथ में कुछ ना होता है. वो सब चीज आँखी के देखल बात है बताई ला. वो सब नचनिया रहा. एगो हमारे बैदियम कफड़िया पासी में रहा एगो एवाल. हाँ बैन दुई मित्र का नचनिया रहा भाई. लंबा आदमी रहा. हाँ वो आदमी जब नाचत रहा तब तू जान की कोई है खुदा जाता है अंगना. पहले के नचनिया नाचत रहा. अब तो जूता पहन के नाचे है जहाँ हुआ माड़ो धरल है हुआ. एगो भैया अब मटकोड़वा जे करे बाकी ये आदमियन के मूड हुई बोले भरभस्ट हो गए है अपने घरे जे बुलावे है. आजकल चल रहा तलवान मटकोड़वा में नचनिया आवे है. अब क्या बोले अब है वो चीज हुआ फेसबुक पे. हाँ. ना निकेरी में हम सुने ऐसे हो है हम ना जाने कभी ना मेरी माँ का कर लिया है बाकी हो ही सके शायद ऐसे. तो एगो है जो ने बोले है कि गावे हुआ पे जो जिन के फुआ दुल्हा के फुआ दुल्हा के माई चलो ले वो जुका के करिया करिया भाटा. ये कौन गाना है भैया. ये कौन गाना इस शर्म के बाद सुने में. बाकी आदमियन जो अपने घरे बुलावे हुई में दांत चिदोरे मेहरुवन साथ है बस वही में चले थे. अब ओकर वो सोचे कि अब सब कोई को तो बड़ा मोई लगे है तो इसने पकड़े रही वन कोई ओके तरीके खास ना देवे है जाने तो.
1: अबे बात भय रहा है इंद्रजाल के.
0: हाँ
1: तो हम श्रीराम देश में एक दफे फकांसी से यहाँ से गए ली तो रहा एगो मूड़न एक दरी नाम नालेब कहाँ कैसे के का कौन सी खाली बताईला कि जहाँ मूड़न हम गए ली एगो बैन हो बजावत रहा और जे बड़कवा रहा हुआ वो तो इंद्र

0: इंद्रजाल के धले एगो खोटुए रहा गुरुए रहा हूँ तब हम गैली तो सुनी समय ताकिस तो हम ओके चिन गैली हम प्रणाम भी कर ली तो बजावे सब थोड़ा देर में तो हमें बुलाइस तो हम एक गाना जैसे शुरू कर ली बजा जैसा ही तो हम बजाए शुरू कर ली है तो अब एक क्वाड गाना ना भैल है हमार ई लिंकर हाथ हमार लाम हो गया भाई बांध दे रहा हमारा हाथ हमारा हाथ बांध दे रहा है हाँ हमारा हाथ बांध इसकी इतना पीरा कि हम ऐसे बजा नहीं पाओ थी और हम ब्रह्म लेकारी को रकम घर पहुँच लिए हम ही जानी ला हमार माइक ऊपर से अपन माइक लेके गई ब्रह्म पे और गैली घरे तो मैया से हम बोल ली माँ वैसा ऐसा नमी बैठा रहा के रहा तो बोले कि देख वो पलरबे हम बोली के है तो हम बोली ले चलो कल गए हम बोली वही करी से चिजवा हमारे दिल में डायरेक्ट घुस गया कि वही करी से बिहान भर बोले अच्छा बिहान चलो खुश सवेरे बिहान सवेरे मुकर घरे गईली उजे समय देखीस आओ आओ आओ आओ आओ आ जा आ जा गईली हम बोली बाबा तू ना ठीक काम कर लो बोले हाँ बोले हम हाँ कुछ भैल है हम जान ला कुछ भैल है हम बोले हम जान ला आप जानो है हाँ तो हम बोले इसके निकारो हम क्या यार कौन बोले के निकारो आप ना ठीक काम कर लो मैया से हमारे माई से उसे देवर भाव जाए के कारोबार रहा तो हम बोली अच्छा हम बोली माँ हम बोली देख यही एदमिया करी सची हुआ बोले अच्छा तो गए ले बोले बाबू बोले के बोले ठीक कर ले वो आए ले खाली हमारे हथवाई से पकड़ी से हथवा पकड़ के तीन दफे से वो करी से हाथ एकदम जैसे कुछ भाई बने भाई ले यार
1: वही बताया पहले के आदमी कितना
0: ज्ञानी इतना विशाल हम देख ली हम बोली बाप रे हम तो डराई गिरी हम बोली यही ई तो बड़ा बड़ा बहुत ज्ञानी क्या बात करी यार
1: ताल पर ना चल रही ढोल बजे
0: जैसे ढोल बजे अरे हम बाप रे
2: भाई हमें नहीं कह रहे और वो भैया राधे
1: अच्छा
0: अच्छी बात हां अच्छी बात
3: बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग आप भी अभी सुना है हमारा भैया सुंदर हीरा के और भाई रॉय देवराज के आपके आप कैसे इसके बारे में बोल सकते हैं?
4: देखो ये सब वरिष्ठ हमारे कलाकार हैं और जो जो वहां पर स्टूडियो में बोले हैं वो सही बात है ना कि हम के चाहे देखेंगे कि हम कौन काम करत हैं
3: हाँ।
4: और अपन ये काम वासना में आप डूबल हो तो तुम्हार परम गति कैसे बनी ना इसको तो नहीं समझना होगा आपके और हम सोचे था कि हम बहुत करत हैं लेकिन हमको चाहिए देखेगा कि हम अभी मुसाफिर है दो दिन का मेहमान है
3: हाँ।
4: क्या करे गुमान हम पैदा भैली है अपने हिंदुस्तानी धर्म में सनातन धर्म में और एक धरोहर जो है अपने हाथ में लेकर हमके आगे चाहे ले जाए के
3: हाँ।
4: पहला चीज दूसरा चीज है कि अपने कौम के सुधारे के लिए हमके चाहिए अपने कल्चर अपने धर्म अपने कर्म के सुरक्षित रख के और फिर फौलखन खेमराची के देवे के
5: भाई हीरा भैया हमली हीरा भाई ग्लेन अपना परिचय आप हमारा लोइस्ट्रास के थोड़ा दे देते हो तो बहुत बढ़िया बात है सब कोई जाने आप कौन है फिर भी
4: जी मेरा नाम जैसे हम आप बताए हैं ग्लेन राधे है हम पैदाइश से सुरिनाम के हानासुरस और जहाँ भाई हीरा रहता है जहाँ भाई रोज रहता उसके पीछे तो हम लोग सब मिला जुला के एक गाँव के आदमी है पसंद है और यहाँ पर यहाँ सुबह से सुबह तक तो हम आपको खोगा सलाह सलाह सब सब जो है और मास्टर के काम वगैरह करते हैं
6: पोशाक ना पहला चीज देखो चाहिएगा जैसे हो रहे होवे है और ना एक दो रकम के प्रयोग धर के वगैरह वगैरह वो सब नॉनसेंस चीज ना ना जैसे पहले के नचनिया रहा वही मुताबिक हम लोग अपने के सजावट है जैसे भाई हीरा भी कहल है कि हिया हुआ जन होवे है उस अपना भैया तो आओ तो के कोई दुल्हा खातिर सजावे खातिर बुलाएल है ना तो तुके चाहे समझे कि एगो दुल्हा के जीवन के सूर्य उदय होने वाला है कारण कि वो जो गृहस्थ बनकर के घर आएगी ना लक्ष्मी के साथ तो वो लक्ष्मी और विष्णु है ना वहां से उसका दुनिया प्रारंभ हो रहा है उसका गृहस्थ आश्रम और आप लोग सबको जानत है जो गृहस्थ आश्रम में दोनों जने सुखी है तो घर चलेगा जो आजकल जो बोले है कि दो महीना में तीन महीना कट गया है देखो ये सिर्फ नचनिया के बात ना है इसमें हम कुछ और विस्तार रूप में हम आप लोग बोल बत्ती आना चाहते हैं कि यहाँ पर चाहे तो के देखे के यहाँ पे कितना लव मैरिज हुए है पहले जब विवाह संस्कार हुआ था ना तो पहले स्वभाव लेके जाते है हम लोग पंडित के लगे कि देखे गन्ना बैठाओ कि ये दोनों एस्ट्रोलॉजिस पासदेशत्वे मेंसको करैक्टर बैमकार या ऑफ नहीं ना कारण कि तू दो जने से ब्याह ना करे है तू करे है ब्याह पूरा परिवार के साथ ना कि दोनों परिवार जोड़े है अपने में तो ये सब चीज के देखते है कि ये परिवार और वो परिवार अपने में इंटरमिंगल हो सके कि ना ना तो फिर विवाह संस्कार हुआ था और यहाँ पे तो हो भैया एक अपेक्षण था लोग और ऐसे विवाह हो जाए मार बिनसस मांदे ब्लैक मनेर आ कर रहे हैं और मुफरा उबे कर रहे हैं एंड दैट खात निचाम ना तो यहाँ पे झंझट लाई तब कामना मन लोग से पूछियो कभी जैसे समय रही फुर्सत रही तो कितना फिल्म उसे बनाए ले दिनो स्टेज ऑफ द प्लांट लिखा
3: भाई ने एक सवाल है भाई ग्लैन एक मिनट भाई ग्लैन एक मिनट एक सवाल है
6: तो सब चीज जो है बहुत बड़का प्रॉब्लम हम लोग के कौम के अंदर है
3: हाँ भाई ग्लैन एक सवाल है
6: चाहेगा तनी से सोच विचार करके बेटा बेटी ना लिफ्ट ऑफ
3: भाई ग्लैन आपसे एक सवाल है आप थोड़ा से रुक जाओ हम जानीला इस समय पे आप फोन तू बतिया ऊपर बोले फगोर
6: ना ठीक करेला भाई भाई ग्लैन से फन तक देशन यूरो आजकल एक विवाह संस्कार में हो जाए दोनों जने के बताओ को ना
7: भाई ग्लैन एक मिनट
3: भाई ग्लैन आप तो इतना बड़ा ज्ञानी हैं इतना आप हम सबको बताते हैं कि हमारा धर्म क्या है लेकिन हम खास कौर के जा रहे हैं इस वक्त आप जानते हैं कि हमारा जो कितने नचनिया है जो मिस ब्रेक करेगा दार ओफर विलिक में टिफराख सोवास इन श्रीनाम एंड हीर ओग जो मंदिर में सब मौका देवे हैगा जाए के मंदिर में और वो मूर्ति के आगे नाचे है और हाथ पे दिया ली और कपूर जीप पे धरेगा कौन ची खाई से कौन ची पी से कौन ची करके आयल है ओकर बारे में आप छोटा रूप में कुछ बता दें हमारे पास एक दो सवाल और है छोटा रूप में हो सके तो बता दो
6: भैया देखो ये कपूर के बात है आप लोग जो देख ले होंगे वो क्लिप हुआ कि कपूर वा 3 सेकंड बरल है ओकर ओकर बाद में खा लेल है आज केक नर कपूर दूर ट्वेई तो द्री सिकोंदा फोर दाती हेट वोट एंड दाती दोर दुरक्त ना वो चीप जरे से पहले उल्ली लेल है और सभा के उल्लू जमाने बनावे भैया तब उल्लू बनो ना मार वही बात है वारम वर्थ सोम पर सोम ऐत हम उदख देख जो भैया हीरा भी बोले लहा आगे में भैया देवराज भी बोले है तो के चाहे जाने के तू निमंत्रण करे है और जो वहाँ के संचालक है ना
1: जी
6: है ये सर फोर फरंतुर लग नित दिन चनिया वो तो ओकर टेढ़ा मेरा चले है तू ओके जब बलाई के प्लेटफॉर्म दिया था तू जाने वही अपन चाल दिखाई दोस्त तू काहे के ओके बुलावे
3: भाई ने, ने राधे एक फराग और है एक रवांच चलल है सूरीनाम देश में कि जब मटकोड़वा हुए है जैसे हम जाने ला भैया हीरा आप भी इसके सवाल के रोई भी आप जवाब सीख सके हैं जब मटकोड़वा हुए है तो वहाँ औरत लोन जा है चांपू लेके डाम पे और वहाँ पे धरती माता के पूजा करे है एक बारे में मांगे ला आप लोग से जाने ये कौन सी है पहले खाली औरत यात्रा अब तो ले जाए इस सब के नचवावे वहाँ पे तो इस सब मर्दाना है कि औरत है हो रहा हुए चीजों में माख है कि ना माख मन उस सब एक बोले मौरत बाटी एक कंचिस बोले मरद बाटी जब तू लुंडा बांटे तो तू चाहे लुंडा का नाच करे के तो औरत बांटे तो कहे औरत के काम करे के मैं सब तो दोनों करेगा दिस मेन फराह खान भाई हीरा भाई रॉय और भाई राधे एकर बारे में आपके विचार क्या है हमसे तीनों मिला बताई सके इन फॉर इन
1: हिजड़ा लोग जो है अपने के फरांदर करे पैसा के कारण पहले के छोटा छोटा बिटियन भी ना जाता बेटवन तो दूर जाएंगे छोटा लड़कन दूरी रहो हाँ। उस सब ननद भाव जाई उस सब टावत बजावत अपन जाने खसेला कर खाई ढोल से खाई ढोल बजत रहा
8: हाँ।
1: और घर से जोन वो मटकोड़वा करे के जोन गाय के गोबर हम बनाई ला ना तो गाय के गोबर जोन हम ले के जाए ओके बनावे हैं ओकर ओकर पूजा करे हैं पान से और चाउर से और ढोल बजे है लेके बजावत सब जा है तब पानी के कांति गोत्रो कांति वैसे बोली हुआ पर मटकोड़वा गोड़त रहे तो ओकर मतलब भी है ओकर कठिन मतलब है वो ना है कि जो गैले अब जे मांगे ते जाए हुआ ननद भाव जाए अपने में गावे बजाए बकिन वो सब खिलवाड़ भी करत रहे बाकी माता के प्रार्थना करत रहे धरती माता के भैया हाँ गंगा मैया के वही के मारे पानते गोत्रो के कांति ना अंत बिच्चे बिच्चे में मटकोड़वा होता है गोत्रो कांति जहाँ पानी है
3: हाँ। भाई हीरा कहे कि खाली औरत के माँ रह जाएगी
1: औरत लोग उस सब अपन एक टोटका खरीद रहे और जाने उस सब जब वहाँ पर मटकोड़वा हो तो उस सब पियरी पी कार्टून उड़ावे हैं तो हुआ पर हुआ से शुरू हो सेंदूर लगे के
3: हम छोटा रही हम जाए तो मैया खदेरे हमें हुआ से बोले एक और लड़के नहीं आना बाकी अब तो ये सब जाए भैया एकर मतलब का है
1: हिजड़न है तो ये सब अपने के मांगे दिखावे अब ये सब एक और नवा समाज मांगे बनावे हिजड़न के ये सब बेशर्म तो है ये है और मांगे एगो खुरूप बनावे जो और बड़का खुरूप हो जाए बेशर्मी लोग के
3: भैया राधे आपके विचार क्या है
6: देखो भाई बात जो है ना हीरा भाई जो कहे कहे हैं वो बहुत एक मूल है कि धरती माता के गौरी माता के पूजा करके तो यही जो हम लोग लुंडा के नाच जो शुरू करेला ना जो धरती पूजा फिर उसका घर के करत है पहला गाना जो हम लोग करत है कि भवानी मैया सेवा न जानू मैं हूँ बालक न दाम
1: बहुत पुराना भजन है
8: बहुत
6: जी से शुरू तो वहां से हम लोग जो दुल्हा सजाएला ना तो दुल्हा कौन रूप में है श्री राम भगवान
8: ये बात है
6: ना तो आप हम लोग का करत है कि हम लोग जाएला दांसी करे नहीं हम लोग दुल्हा राम भगवान के कथा जो वाचक होत है ना ओके हम लोग संगीत के माध्यम में जैसे जैसे कार्यक्रम चले है वैसे वैसे गाना भी हो है
8: उस समय पे राम के दर्जा बाकर
6: जी
8: ये बात है
6: वही बात है बहुत पवित्र बहुत शुद्ध रूप में तो के चाहेगा अपने के परेशन केयर करे के और जो जो शब्द आप खबर कर लो है ना हम वो अपन चीज मुँह में ना लेबे लेकिन वो हमारे में ना है अपने धर्म कर्म जो न जाने हैं तो सबके बोला भाई सब भेड़िया भसान है आला काम तीना ब्लका मास्क खाली भरभड़ा हुआ होगा भाई चाहे जितना सब चीज जय भार में माफ करियो स्वतावन ना लेकिन ये सच्चाई है छह महीने में छुड़ जाए तो बोले ना देखे वो कमुआ ना ठीक भयल है बाकी तू खुद अपने के गोड़ में टांगा मरलो है
3: भाई राधा है, आपके विचार जो है और हमें अच्छा लगल है। अब जनता अब बपाल करी कौन ची अच्छा है वो के लिए के चली, जो ची ओके अच्छा ना लगेगा ओके ना हो चली के चले के, तो वो जनता के हाथ में है, जनता के विचार है। लेकिन इरफान आदमी आप लोग बांटो, आप लोग अपन विचार दलो बांटो जनता के। अब जनता के हाथ में किसी आदमी के बड़ाई के काम करवाई कि ना मांगे करवाई, क्लॉप है भाई राधे।
6: एक बात और, आज की दुनिया में बहुत हम देखे ला कि जहाँ हरीश जहाँ मारो गड़ायल है वहां पर नाव के सीधा धरा है, तो में प्याज धरा है ना, तो हमारे देखे में भैया वहां देव के स्थान है, वहां पे सब चीज मत धर। जब तो के देवे थे नाव के ना, तब घरे जाए लगी तो चाहे 50 किलो प्याज दे, चाहे 25 किलो आलू दे, चाहे जो चीज, लेकिन सात्विक रूप में ओकर चावल और दाल और ये सब चीज जो है ना शुक्रो धर दे ना। कारण की और फिर भी हम देख ली है, 2 हफ्ता हुए है हम ही पंडित के पास गए, हम बोले महाराज जी बताइए हमसे कब से मारो में आप लोग प्याज धरवावत है। दोनों पंडित हुआ पता नहीं ठीक, बोले हम लोग तो ना धरवाए। हम बोले महाराज चलो देखो वहां पर क्या हो रहा है ना, कारण जो नाव लोग है भी गलती कर रहे थे बहुत, तो सबके चाहिए समझे के जाने के कि का हो रहा है यहाँ पर ना, के चाहिए का करे के और कौन चीज वहां पर धरे चाहिए या ना धरे चाहिए।
3: भाई राधे यह हैव मैं अन इदी खीफ, एक बेर हम एक प्रोग्राम बनाबे जोन स्पेशल रहेगा कि एगो ब्याह में कौन ची हो रहे हुए है, एगो मरनी में कौन ची हो रहे हुए है, और कौन ची एगो बिटिया के ब्याह में हो रहे हुए है, कैसे एगो लावा के प्रोग्राम चले हैं, कैसे एगो कैसे बोले है लड़कन के मूड़न के, तो एकर बारे में अपान अपान प्रोग्राम हम मांगीला बनावे आधा आधा घंटा के एक एक घंटा। आप लोग के मदद हमें जरूरी है, जैसे भाई हीरा है आम बाटो रोय और जो कोई है जो अपना विचार देना चाहते थे रेडियो फाहुन में हमें तार करके बता सकते हैं। दखाए कं टाइट मार के दखाओ स्पेशल डीप रखना मार के भाई, हम बिना एक घंटा इंटरव्यू पे हो ही गई है, हमारे समय है हम जाएला शायद रेक्लाम ड्राई करें, रेक्लाम एक बात हम एक दो को गाना एंड कॉमिक वेट रख भाई, भाई हीरा फिर तो दत्त खुद भैया हीरा भैया राधे
6: जी भैया जी
1: जी जी जी भाई रोई
8: अब बना धरिए।
3: आपको कुछ आखिरी में बोलना चाहते हैं भाई राधे तो बोल सकते हैं, 2 मिनट समय है
6: भैया। देखो जो आप कहा है कि हम लोग के चाहेगा ये प्रोग्राम बनावे के, दिस इज ब्रो नोडख, कारण कि हमारे कौम धीरे धीरे भटकर चला जा है ना, कारण अज्ञान के कारण, कारण कोई उस सबके रक्त लेने खेत न दे रहे कि कैसे चीजवा चाहिए।
3: या क्लॉप भाई, अच्छा ठीक है भाई राधे, थैंक यू वेल। एक होप एक बैन बैना सही कर दैट मींस यू हेल मा खुद बकरी पे है यू बैन इन फ्रॉम द औस्ते। भैया रॉय कुछ बोलना चाहते
8: हैं? हाँ, हम सोचते हैं हमारा विचार से कि जो विवाह शादी जब हो है उससे पंडित को देखना चाहिए, पूछना चाहिए कि भाई आप नचनिया ले लो है, हाँ कौन नचनिया ले लो भैया, वो कौन रूप में है, कैसे है, तब नचनिया लियो बहनी तो काम सिद्ध ना होई।
3: हील खुद इदे
8: समझे ना, पंडित के चाहिए ज्ञानी से तनी काम लेवे के, हम फरवालोस ना चाहिए करे, जहाँ फरवालोस भैली चीज तो आज हम लोग के धर्म सब धले नष्ट हो जाई।
3: सही बात है रोई, थैंक यू भाई राधे, आपके नमस्कार हो।
6: नमस्कार।
3: तो दोस्तों वो खान न्यू ना रिक्लाम ब्रेक वो कुम स्ट्रक्स वीर बाय ओन्स उस्ताद हीरा एंड भैया रॉय देव रांच एंड स्ट्रक्स इस पंडित ओ बाय ओन्स द खाओ मैं द पंडित नामले फ्राग व्हाट वो ऑलमाल मोगे डून ऑफ नीट और ये सब बवान थे बॉलीवुड हिस्स तो हम लोग चलाते हैं लेकिन अपना गीत तो हमें रोक देना चाहिए तो फिर हम चलते हैं।
9: आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है।
10: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
9: Advocatenkantoor aan het Raam aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
11: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
9: Advocatenkantoor aan het Raamsloot.
12: Dit is het Fahond Hindustani Radio Nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Met Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij blijft de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
13: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

और दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है और इंटरव्यू प्रोग्राम है, इंफॉर्मेशन प्रोग्राम है और वो है भाई जुंदर हीरा, भैया राधे ग्लेन भी आ गए थे जो अपना विचार आप लोग को आगे दिखाए हैं। हम एक गीत को जाते हैं और ये गीत आप लोग सुनिए, इसके बाद में हम वापस आ जाएंगे और कुछ देर और आप लोग के साथ रहेंगे और इंफॉर्मेशन के बारे में दूसरा भाग अभी हम प्रोग्राम को शुरुआत करेंगे। इस वक्त हम जोर तोर से पंडित क्या बोल रहे हैं और लोग अभी आएंगे, ट्रेन बोले सफर तराख है और हम जाते हैं एक गीत की ओर एंड कोमो स्ट्रक्स तरख। और आप लोग को ये गीत तो जरूर मालूम होगा, उस्तादों के उस्ताद हैं यहाँ पर और ये गीत यहाँ पर वो बजा रहे हैं, उसकी परवार है।

हाँ दोस्तों, तो ये है यानी कि सुंदर हीरा के ग्रुप है विशाल हीरा, और हम चलते हैं एक और सो जाए।

0: और पनिया भरे है और कौन भरे है, दोनों जने भरी तब तो बल्टिया भरी, वैसे कैसे बल्टिया भरी, बल्टिया भरे वाले ना है। दोस्तों एक गीत को मांग किया है और वो है, ओ है उस्ताद, उस्ताद जो भी तार पे थे वो है राधे भैया ग्लेन ने गीत को मांग किया है और ये बड़ा पुराना गीत है भैया। यहाँ हम देख लो वातन कांत में एक दिन समधी समधनिया के लेके चले है, बड़ा पुराना गीत भाई हीरा कैसे रखा चिजवा
1: पहले के जाना ना क्या गावे
0: है आओ मिलकर सुना जाए।
2: दिले आशिकी और मासूक के हम पलते जा
0: पुराना चीज है

लचक लचक करे और बोलिया। मेरे ख्याल से तरी से समझ नहीं लग रहा का लचक लचक चले, लेकिन ये बात नहीं है, मटक मटक कर चले। ये बात है ना। तो भाई हीरा अपना प्रोग्राम को हम एक दस या एक क्वार्टीर को बढ़ाते हैं और कुछ उसमें जरूर हम ज्ञान के बाद बताएंगे कि हमारा धर्म और क्या बताते हैं, न सिर्फ लुंडा के नाच में लेकिन और यानी कि इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, पूछपाछ करेंगे। दो बड़े उस्ताद यहाँ पे बैठे हैं, सुंदर हीरा रॉय देवराज, अभी आप लोग सुना है, और वो है भैया ग्लेन के राधे के बारे में, वो भी आप लोग को कुछ बताए थे और आप लोग को यहाँ से और आगे को हम सुनाएंगे।

0: तो ये नगारा तो सिर्फ एक ही है जो यहाँ दनहाख शहर के उस्ताद हैं, और वो है सुंदर हीरा जी के नगारा हैं। तो भाई सुंदर हीरा, आप रोहतनाम को अरे आपको दनहाख में इतना देखे रहते दनहाख के, अच्छा अच्छा अच्छा, वो तो एक ही बात है, दनहाख रोहतनाम में क्या फर्क है, एक ही बात है। तो भाई सुंदर हीरा आपको हम फिर से एक बार स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में, और भाई रोई की और जो ओंदर वैरा कभी हम सब लुंडा के नाच के बारे में बातचीत करते थे उसको और आगे हम बढ़ाएंगे, वहां वोट देते। भाई सुंदर हीरा आपको और पूछना चाहते हैं, आपको और जो कुछ इन्फॉर्मेशन है हमारी जनता के, हमारा लोस्टरास के, लुंडा के नाच के बारे में या दुल्हीन के बारे में, दुल्हीन जब दुल्हा जा है ओके वहाँ से लावे, तब जब दुल्हा जा है दुल्हीन के लावे तो दाम पे कौनची हुए है, और हमसे बताओ जो मतलब है द्वार पूजा के ओके बारे में बताओ, और जो उन सब बोले हैं कि सनातन धर्म में जो कोहबर में जो भुड़का सब धरे हैं देवी देवता उसके बारे में अगर या आप दोनों कुछ इसके बारे में हमारे जनता को बता दे बहुत अच्छा बात रहा।
1: जी भाई, दुल्हीन जब आवे है, जब लौंडा के नाच हो है, तो दुल्हीन के जब जाए लावे कोहबर में से, तो पहले के बुढ़ियन माड़ो लगे ठड़ा हुए के गावत रहेंगे। अरे इस तो उतना मुझे जबानी याद ना है, हाँ बाकी का बोल है क्या, ऐसे गावत रह बुढ़ियन और मारो के लगे अघोरत रहें, जब ले ब्याह दोन हो जाए तब बैठर दुल्हा लोग भात खावत रहें, तब भात खावनी गाना गावत रह।
2: अच्छा,
1: हाँ पहले ऐसे रहा,
2: जोन समय पे सब जैसे रहता
1: वैसने वैसने होता, होता। और परछन के गाना अलग ओके पहले गावत रहे, बुढ़ियन भी गावत रहे, बाजा बजे लगे जोश में आ जाए बुढ़ियन तक गावे, वो सब नेचुर के गाना और परछन के, अब नेचुर भी हो है दुल्हीन जब आवे माड़ो में और परछन हो है, और पहले बाजा बजत रहा नचनिया जब आवत रहा तब जब जब नेचुर होए लगे तो ओकर गाना गाए के दुल्हीन के नेचुर के दुल्हीन अपार के नेचुर रहा। हाँ अब हम ना सुन ले कोई के कहावत कोई के, हाँ कोई जनते है ना जो उच्चिन हुई है, अब वो सब चीज पहले होता रहा।
2: ऊपर से जो जाने भी है और वो बतावे ना मांगे हैं वो हम ना समझी ला कि तनी नौजवान के कुछ सिखावे के जो समय आए भाई कुछ सिखाओ। इसाइट तो है कि
1: ना जो नब्बे बचल है
2: हाँ।
1: जो जाने ना बताइए वो ले के चल जाइए बाकी, हाँ कुछ
2: तो
1: छोड़ दे हम लोग खातिर या नौजवान खातिर। अब जो रकम चीज हो है गया हमें बड़ा दुख हो है भाई कि अब जी ये जो छोटा छोटा लड़का रहेगा ये सब की नाराजी जो है जब हम ना रह जाब तो ये लड़कों सोची नॉर्मल है ओके मूड़ी में है, वहाँ जो छोटा से बड़का वो देखे है कि वो ऐसे होता है, हम लोग के घरे होता है, नानी आजी के घरे होता है, बाप के घरे होता है, दूसरी चीज वह इसने हो रहे हो है तो वो अपने अपने लड़के ने कौन सिखा ये चीज जो चीज जाने तो
2: अपने मन के गए तो
0: भाई अब आप लोग बोले है जो समय पे दुल्हा और दुल्हीन के ब्याह शादी होत रहा स्पेशल गाना हमारा मैया गावत रहा।
1: अच्छा
0: हमार माई सुरीनाम में तो बतावे कि जब दुल्हीन सपरे तो
1: गाना
0: सबके गाना मा। अभी भाई यूट्यूब पे आप जइयो, हम यूट्यूब पे देख लिए मॉरिशियस में
1: जी
0: और फिजी में भी लोग करे है
1: करे है हम आदमी करे है
0: करे है
1: जी हम देख ली भी
0: देख ले भी ब्याह शादी हुए
1: पूरा तब से पहले जैसे सदनाम में रहा हाँ। वही हाथ पकड़ ले बस अब
0: सबन हुआ पे बगले में बैठल ले
1: हाँ, हाँ।
0: जैसे जैसे ब्याह हुए उसे रूप में वही के गाना हुए
1: गाना हो
0: क्लब हुए देख लो ना
2: भाई हाँ।
1: मॉरिशियस और फिजी में
0: फिजी में हुए
1: हाँ मॉरिशियस भी बहुत जोर तोर से वो सब ये सब चीज करे हैं
0: बहुत जोर
1: हाँ।
0: महामार सुरीनाम देश में फरवातर हुई कि नमा चीज नहीं कर गए ये धंधा है पैसा कमाई
1: पैसा कमाई धंधा है भाई। अब देख लुंडा के नाच के दुल्हा जो सपरे है हर एक जो ची हो है जैसे जैसे दुल्हा आवे है दुल्हा बैठे है पहले शुरुआत हो है प्रार्थना करल जाए है, भजन गावल जाए है, दुल्हा बैठे, दुल्हा के माई बैठे है, हुआं से शुरू करल जाए है, जोन हैंडलिंग जोन जोन जैसे होई देश तक, पगड़ी बांधे के दूसर गाना है, जोड़ा जामा के दूसर गाना है।
0: अच्छा एगो सुना दो
1: है,
0: एगो सुना दो जो मोड़ी
1: बाप दुल्हा सजे जहाँ पर तब यहाँ से शुरू करें। अरे डल

0: मैया यग डल साजर दुल्हा के मई जिनकर बिटवा बिया न जाई रही डल साजन ये हो गए अब जहाँ जुतवा जुतवा करे दुलहराम जुतवा है रे मंगनिया रे पहले गाँव रहे दुल्हा है चमरवा जलमल बाकी हम लोग के हम फरांदर कर ली दुल्हा तो है अरे दुल्हा है अपने बप्पा के जन्मल तो हम गाड़ी ना आवे धंधे तो ये सब चीज़ हम लोग अपने हम अपने समाज में शुरू कर ली ऐसे गावे के हाँ और नेचुर के अंबिया में ना मान
1: अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं रॉय भी बेचारा डफरा पीट के अपन का आवाज निकाल दी थैंक यू भैया रॉय परचन परचन सुहाग
0: पहले गावत हमार मामा है अरे परचो परचो सुहागन सुगर बर के परचो परचो सुहागन सुगर बर के परचो अरे पहला परछे रे दुल्हीन के मैया पहले परछन रे दुल्हीन के मैया जिनकर बिटिया बिया न जाई रही ऐसे तब ऐसे कह करके गावर अरे गाँव ऊ बना के गावर है अरे सास देवे बकरी ससुर दी है गाय रे सास देवे बकरी ससुर दी है गाय रे सार देवे बहनी बनैया ले जाए परछो परछो सुहा पुराना चीज बहुत है अब हम अब ना पैदा रही तब क्या सब कावत रखे
2: इससे बीच में कि पहले जब लड़कन के जब कोई ज्ञानी लोगन जब सिखाओ था कहाँ गए रहे ओ पंडित के गए रहे ओ कुछ बताओ था कुछ बोल रहा हाँ ऐसे ऐसे बोला था लड़कुआ ना समझे है कि पंडित का बोली से तो अब जब मायवा से बताई तो बड़ी आ से तुम्हारा जी है लड़कुआ के कारण से ना समझे है जो तो ओके डांट दी लड़कुआ के कि जब ज्ञान लेवे के वहाँ पे पढ़ावे खातिर तो ओके डांट दी सब कब लड़कुआ सीखी बताओ कब सीखी तो अपने लड़कन के डांट देने के वहाँ ना जाइए हाँ जी देख लड़कन इतना इतना निष्क्रिय रखे आँख ले अफसोस है कि इतना निष्क्रिय रखे सीखे खातिर हम ओके जैसे हम दिखाए लड़कन बहुत टिफर है भाई साहब तू ऐसे तू ओके दिखाओ अब यहाँ तो बजाय कर दिखा दे इतना स्टाइलवा सिखावे के लिए है हाँ तो हाँ हम इतना मोइस सबके दिखा दी थोड़े देर हम डेढ़ घंटा लेस दे ला और बहने नौ आठ नौ जने हैं और इतना विशाल कि उस सब के जो हम बोल दे कि देख हमारे बेजती ना हो पावे तू लोग जाने हैं तो हाँ तू लोग जाने तो नहीं मिस्टर नहीं मिस्टर इतना इतना प्रेम और जब जा है और जब ना ओपन करे रहे डायरेक्ट देख लिए अभी कि ना ओपन कर बाप के नहीं खो ऊपर चाहे खो रख नहीं मिस्टर कौन कहीं चाहे हाँ बहुत अच्छा
1: हाँ हाँ आप लोटा के नाम तो करो है लेकिन नगारे बारे में आप कुछ लड़कन के या कुछ बंदो
0: है जी हाँ
1: तो हाँ लड़कन तो सब करें हम
0: हम बहुत कोशिश कर ली नगारा हम पहले तो सब कोई जाने हैं कि तेलवान भत्तवान में नगारा बजत रहा और ढपला दुल्का दुल्हीन के ओर का दुल्हा के ओर जब बारात जब आवे ना तो ढपला वाली दुल्हा के बाप ले के आवे ढपला और दुल्हीन वाली भी तैयार रहे तो दोनों में स्त्री होवे दोनों दोनों बारात ले के आवे इधर से जहाँ अनफंग करे तो जोर के तोड़ रहे थे ऐसे होत रहा अब नगारा बजत रहा जैया तिलक चढ़ तलवान के तब मेहराऊ लोग तलवान कर लेवे मटकरवा कर लेवे तब बजे नगारा और उस्तादों के उस्ताद श्री भुखन जी बहुत मशहूर रहा हाँ तब नगारा बजे और पुरवन नाचे चंगिया पहन के तो हम जाए नौता करें तो हम खाली देखी कैसे हमारे बाप के रहा खास लामपू गाँव में बड़ा पुराना बात है, पहले कोको लैंप खाली रहा, बोतल में तेल भर के बत्ती लगाए के बरत रहा, तो जब आए जब वैसे रहा हाँ तो ऐसे ऐसे जो कर रहा सब हाँ हाँ टैलेंटेडी आए हाँ

0: नमस्कार अलाबर्टो।
1: नमस्कार भैया।
0: अरे
1: नहीं
0: उस्ताद

चारों बगल, हाँ सतनाम, खास करके सतनाम में बहुत कम जी। हाँ जी जी जी, हम कौशित कल्ली और सिखैली भी अपने कोस्ते से, हम सिवैली लटकन के कपड़ा पहले सिखैली हम, तब नाचे लगे लटकन, हमार बेटवा सीख बजावे के उ देख के कोई उके सिखाई न गा रहा, खाली देखत वन हमारे साथ नाचत रहा उस्ताद भुखन के बेटवा साथे चांद साथे, तो हिया और दाम में उस्ताद को उस्ताद हुई रहा, तब उके साथ नाचत रही तो उ मनसान तो वो हमारे साथ जाए नाचे, बाकी तो मांगी सीखे, बाकी मौका ना पाए सीखे के, तो देख देख के जैसे देखत रहा तो घरे जाए तो तफरा पर बजावत रहा हाथ से।

0: तो चार जने से छः जने हो गए नाचत रहने। बाकी अब धीरे धीरे लड़कन बड़का हो गए तो तनि दाढ़ी मोज जामे लगे। तो जब मोज दाढ़ी वाड़ी जामे लगे तो बोले शर्म लगे है। तो इस कारण से वो छोड़ देने काहे से हम ताशा हम लैली सरनाम से पहला आदमी जो हम बाटी जो ताशा सरनाम से हम लैल के अली और उस्ताद रामधन निकेरी के उ टाइप पर 80 बरिस के रहा तब वो हम गैली अपन बेटवा के लैके सिखैली। वहाँ से हम एक से ताशा भी किन के लैके अली हम ही लोग यहाँ लड़कन के सिखैली। अब हम उनके जरिए से और समाज अपन खुल गए तो अपन अपन सब कोई चलावे ठीक है। खाली हम लोग के पुराना चीज़ रही जो हमारे कारण वो है कि हम उनके पुराना जो पहले बुढ़वन लै के आए रह जाए और नगारा के अब हुई बचल बाटी हम लोग बाप बेटवा। अब हमार पोता और पोतिन साथ देवे है और सिवैले बाटी ओके बड़ा जोशी हो ई शायद एगो कॉस्ट्यूम सिवैली ओके अपन पोशाक बोले आजा जैसे तू पहन के नाचे वही बड़ी सिवैली है। तो ई शायद हम ओके से अइली छः बरिस के शायद है। अरे वो तो जब रहे जैसे छुट्टी रहे है नगाड़ा बजावे ढोलक बजावे है। अब बेटौवा किशन वो गाना बजाना में ढेर बाजा बजा जाने बजावे तब घरे बजे है तो डंटाल बजावे वो ढोलक बजावे वो हारमोनिया बजावे है वो नगारा बजावे है और नाचबो करे। हाँ अब घर से आवे से पहले बोले आजा बोले बिरहा गाओ तब नगारा एक ताल बजाइस और एक ताल नाचिस।
1: हाँ
0: अरे तर

0: पिता के मोरे संगरी जिनको खिया दीनया उतार। सकल परस पे राम राम गुरु जी के बंदगी, सकल परस पे राम राम गुरु जी के बंदगी। मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी, मत करो गुमान भैया थोड़ा दिन के जिंदगी। गिन गिन गिन रे मनुष्य तन पाए के, गिन गिन गिन रे मनुष्य तन पाए के, सभा में ही मिल के रहो और सिर झुकाई के।
1: आपने कहा कि आपका बेटा और नाती हाँ सब अभी नाच बजाना कर,
0: हाँ सीखे सीखे हैं लड़के,
1: कहाँ से सीख रहे? खानदानी शौक रहा कि कहूँ से?
0: हमारे परिवार में वैसे कोई नचनिया गवैया नचनिया पदनिया ना रही। हमार नानी रहा तो हमार नानी रहा फ्रोव बैंड में, आप लोग जानते हुए मुफरोगी साई दुबे।
1: हाँ,
0: ना हमार नानी रहा कारुलिना, हमार नानी के नाम रहा। और वो घिसाई दुबे हमन एक गांव के रही, तो हमन मामी बोलत रही, पंडित रहा मामा मामी हमन बोलत रही। तो ये सब जाता है ऊफन करे तो वो रहता रहा पहले तीसरी पासी में, तो हुआ से उसे फरोसी भल महावीरपुरी एक पदफवानी का एगो नवपुरिया को रहा। और कफड़िया पासी थोड़े दूर पर रहा, तो हम लोग लौट चल के आई तो जाने रात के कुत्ता छूटल रहे, तो कुत्ता तो हमार नानी हमें लेके जाए, हम अपने नानी सते रह रही, तो हमार नानी लेके हमें जाए, तो हुआ जब उफन करे सब मफरव कालका जो बैसिने पंप है उकर माई के बात बताइला, वो रहा मफरव घिसाई डूबे रहा मामी। तो ये सब जब उफन करे तो हम रही सतवा, तो हमें जैसे अब दहिया में बजवा घुसे है तो ऐसे होत होत उफरें करत करत करत करते हमार नानी लोग जब बहरे जाए लगल गावे, तो हम तो ना जाते ही हमार बाप को उतो रहा तो ले के जात रहा। तो ऐसे तो रेडियो पहले बैठक गाना एतवार के होता है तो राधिका और अपार्थ, तो हम जाई जब नौता में तो हमार नानी देवे हमें ना खाई जाए नौता करे, हमार नानी एगो बस्कीटा देवे हमें बकुआ उकुआ धर के, बोले नौतुओ करिए बेचबो करिए। हाँ तब बारात जब आवे तो हम बस्कीटा कातून से उपजत कातून से तोप दे, हम दौरी नचनिया लगे, तो हम ताकि नचनिया कैसे करे कैसे नाचे का करे है। तो अतवार के जब वो रहे का बोलेगा प्रोग्राम, तो हम अपन नाना खामा नाना के छुट्टी के रेडियो रहे, तो वो पेड़ के नीचे बैठ के अपन हाला फाक्स मारे, हम ले के जाए बन करके घर कौशित

0: करियो इसने नाचे के ऐसे हमार जोश बढ़ल। अब हमार नानी अब एकाध दही देखीस काहे से हम तो ओकरे सतवे रह रही तेकर हमसे बोले बोले तू मांगे नाचे बोले तू चुप्पे चुप्पे नाचे। हम बोले हाँ तो हमार नानी अपन लहंगा ब्लूज और ओढ़नी ये तीन रूप हमें देस तब वो टाइप कहाँ में एक के चीज हम जानते रही तब परिवार के घरे रहे तब हमार नानी तो मन के रहबे कर रहा है गाना बजाना में तो गाना बजाना जब हो तब वही पहन के नाची तो ऐसे होत होत तो और जोश बढ़ल तो थोड़ा जो हुआ नचली हुआ सरना में 5 बजे से नचली बाकी खाली परिवार के घरे वैसे ना तो हियाँ अली होलंद तो हम रही काबुल फ्रिस्लान में तो ओफंग में तब हुआ बरिश में आइंदे हुए तब बहिरदरवा जो रहा बकरा रहा खाली हिंदुस्तानी तो तब बैन जाता है हियाँ से वो शिव नंदन जो रहा बेला के तो वो जाता है वहाँ गावे श्रीधर तो वो आवे तब तो एकदम हम तुरा जाइए एकदम से तो हमारे फुप्पा ससुर बोले बोले तू नाचे है। हम बोले हम नाची ला तो बोले सुन ना बोले हम कपड़ा वपड़ा सिखा सियाई तो हमारे फुप्पा ससुर के बड़का भाई सरनाम में यही कमुए कर रहा पंडित के नाटक के कपड़ा नचनिया कपड़ा खाली ओकर यही काम रहा तो सियाई के रखे अब्बे तरुक हम रखे बाटी वो कपड़वा 50 बरिस हो गए हमारे लगे जौन पौशाक से हम नाचे ला फेस्त हुआ तनि छोटा हो गया दूसरा सिवाई दी है बाकी पजामो हो ही है 50 बरिस के और घुंघरू जो है 2 किलो के है वो एक मारे उसे आवाज देवे
1: हाँ
0: हाँ वो सब घुंघरू दुकान में शायद ना मिले जी।
2: हेलो हिंदुस्तानी है सरनाम में हिंदुस्तानी है गायना में
0: हाँ
2: में भी
0: जी
2: है।
0: जी
2: मार त्रिनिदाद और गायना में जो नचनिया के कारोबार है
0: हाँ।
2: एकदम मर गए मना ही न करे
0: ना ना ना ना, ना, ना, ना।
2: आप सोचे हो कभी जाए के और वहाँ पर देखावे सबके कि देख हेलो हिंदुस्तानी
0: जब
2: इंडिया के ना हेली सरनाम
0: सरनाम के हाँ
2: देख लो कौन चीज अभी पकड़ ली
0: हाँ हम इतना हमें हौसला है बड़ा अच्छा बात बोल रहे हैं ऐसा जब मौका कभी मिली तो हम जाप जरूर जरूर काहे से मॉरिशियस हमके ले के गए रहा ये अब्दुल रहमान कैमरामैन हाँ नहीं खन तैयार के हो गए भैया हम उनके ले के गए हम उनके हुआ प्रोग्राम जो आदमी देखीस तब बैठ के लिफ्ट वाली आदमी खाली रोवे वो सब जानत रहे लुंडा के नाच वो सब जानत रहे जो बचल है वो सब जाने हैं अदमिया रोवे हमें हमें बाप बेटवा बोले बैठ ब्रॉम पर हम अपने घरे लेके चली तो बाकी ये सब बोले ना बोले तो फ्रांत रोलक हम बाटी बोले हम फ्रांत रोलक बाटी तो बोले कि हम ऐसा ना जाए देवता लोग के इतना प्रेमी आदमी बाकी हुआं पे जब हम नचली हैं तो हुआ साल हिल गए आदमी सब कोई और वेरल कॉन्फ्रेंसी रहा तो सगत्रों के जहाँ जहाँ हिंदुस्तानी रहा गई है सगत्र हुआ के आदमी अल रहा फतेह के ओर दखर हुआ के सब कोई आयल सब कोई वाह वाह कर बोले बहुत बड़ी से बहुत पुराना चीज है और हम तो हुआ गए बाप बेटवा हम नचली और तेरी दाद के रहा वो होलास चुन गुजर गए है हाँ वो भैया ओकर हाथ एगो तनी ओकर हाथ तनी एगो ना मोई रहा बाकी हो ही के बजावल ढोल पर हम नचली बाप बेटवा
3: भाईरा जी जो आप बोलो है इस बकेन फरमाई जो जी छोटा पे यानी कि एने देखत अले सुनत अले है वो ऐन लग तो दिल में ये बस जाए तो तू रिक्टिंग हुआ जाता बस ओक में ही खबर
0: था ना
3: हाँ छोटा हम रही छोटा से पंबात बताए भाई द्वारका जब मैया हमें ले जात रहा नाटक दिखावे
0: जी
3: छोटे पसे पैरा पे बैठ के ना
0: हाँ पैरा वाली हाँ
3: तो जब नाटक देख के हम आई तो घरे मैया का लिपस्टिक पूरी लगाई के हम नाटक खेली छोटा लड़का रही छोटा लड़का रही तो वही सब चीज करत करत करत करत हमारे संगतीय स्कूल के देखे रहा दोस्तों यहाँ पर एक और श्रीराम से कलाकार आया है वह विशाल खेमई आया है संता का ने भाई का बेटा है महोख का है सरमक्का के यहाँ हमारे पैदाइश हुआ है तो वो भी आ गया है स्टूडियो में उसको हम बहुत प्रेम से स्वागत करते हैं आप एक कुर्सी वहाँ भाई बढ़ जाए तो भाई हीरा तो वही हम देखत देखत जब 16-17 बरिस के भैली है तो यानी कि ने एक रोज हमार काका रमेश बुद्धू ब्रोमफिश सुंदा ब्रोमफिश पे घरे आयल है तो हमार मैया से बोले तोर बेटौआ मांगे नाटक खेले तो मैया बोले ना और हम मैया के पछुए बाटी तो हम पछुआस करी ला हाँ समझ ले तू तो हमार काका पछुआस ताके है तब बोले तो बोले हाँ तो बोले वो कहाँ जाने तब बोले हम सुन ली बाटी ओकर संगतिया बतावे तो लिपस्टिक पूरी लेके दिनवा भर का घर वो उन कमरों में लकड़ी पलंगा घर है वही पे दौरे हैं तो हमसे बोले बेटा तू मांगे खेले तो हम बोली हाँ हम मांगे ला तो हम एगो रामायण के चौपाई दी बोले बेटा ई चौपाई वाह तू तरी से बोल दो तो एगो काक भूसुंड के रहा रे आज के बात ना बतियाला तो हम तरी भुलाई गई है नहीं चौपाई हम बताई थी तो हम ओके कली बस वही रोज से हमें हमारे काका ले लीस तो वही आज तक इतना दूर लेख हम गई ली भाई तो जैसे आपके नानी बस वही बातचीत है भाई हीरा जी 24 हो गया है घड़ी तो जा रहा है आखिरी में आप लोग को कुछ कहना है तो कह दीजिए
0: हम अब नाटक के बाद बोल लो तेरी थोड़ा सा बता दी
3: जी
0: तो यार तख तक में हम यहाँ रोगन के नाटक तरवार वाली हम रोहतदाम में खेल रहे हैं हो जैसे आप बोलो है क्या ऐसने हमरो हौसला रहा कभी नाटक खेल के तो मानो वो पूरा हो गया है और ख़ास करके और मांगिला बोले कि देख भैया जो प्रोग्राम रचैलो आप बहुत कोटि से कोटि धन्यवाद है आपके हृदय से धन्यवाद दिला कि हम लोग के आपने मंत्र दिलो अली कुछ बोले बतियाए में कुछ गलती हुई शायद कोई मुझसे निकल के जो न चाह निक सके तो आपसे क्षमा चाहिला कुछ हमारे गलती के और यही हमार बात है कि भाई हम लोग के बूढ़ पुरनियन जोन ले के आयल है ऊपर हम लोग चाहे त्रोच रहे के
1: अच्छा
0: बहुत प्रार्थना है कि ओके पकड़े रहो चाहे जोन रकम से भाई पकड़ो रहो कि जैसे बोट है बोट जब जा है तो सब कोई ओके संभारे है
1: वही बात
0: ना हल्फा के साथ जब चल जाइए तो ना बचिए उल्टी एक रोज
1: वही बात
0: ना और जोन चीज ना हो के अपने से विचार कर हर एक चीज जोन हम फिर से बोला जोन अत है वो अंत है तो वो चीज जान सब कोई समझदार है सब कोई ज्ञानी है सब हम इंसान बाटी समझे
1: बात उस्ताद सही बात
0: हाँ तो अजान बूझ के कोई चीज ना करल जाए पैसा के कारण कि अपन धर्म और लाज हम इज्जत सब छोड़ी ला और खास करके एक प्रार्थना है सनातन धर्म महासभा के कि दुनिया हम लोग के हंसी कि मंदिर में तो लोग का करे है आई जोन झाड़ू नीम के पेड़ वेड़ लेके नाचे कटली सोटी छुड़ी उड़ी ये सब धंधा दे छोड़ अब खास करके मंदिर में जे घरे मांगे करे जे और जे जे जोन लाइक के है अपने लाइक के करे भैया हम परसों लग कोई के ना बोले के, हम के बाटी ओके सुधारे वाली खाली हम अपन विचार दे सकेला कि हम ना करती और जोन चीम देखी ला हम के ना अच्छा लगे हम खाली इतना बोल सकेला और जब अबे देर ना है सुधारे के सुधार ले भैया अब माता माता धरती है माता आसमान है माता माता ऐसा कोई है ये ना बिना माता के हम है ये नहीं उसे लंठई ना करो और ख़ास करके घर में अपने माई बाप से भी लंठई ना करो और काहे से जब सुन ली एक चीज और देख ली है तो हम खाली एक चीज पहला चीज हमारे मुड़ी में आयल कि जेकरे बारे में जा है ओकर माई बाप जब धार्मिक हुई इज्जतदार हुई जहाँ ओके मान सम्मान है का बीती ओकर ऊपर खाली ये चीज़ हमार मुनि में पहले आयल कि ओकर माई बाप के का होत हुई कि कितना ऊंचा चढ़ल हुई और कितना गहरा गिर गए वो
3: भाई हीरा के नेट पे टेलीफोन खात्मा सनातन धर्म
0: हाँ अच्छा
3: एंड से हैव ओनलिंग गेस्प्रोक एकर बारे में एन सनातन धर्म श्री नाम बोले है नीत आल मंदिर से आन खसलोत नाम लिख बै सनातन धर्म
0: जी
3: जो जो मंदिर आन खसलोत ना है सनातन धर्म तो से जेल फन वे थे मारे वे लिख हीर बेद बरूप दून नाम लिख खाली एक साल ब्लाइफ बरूप दून ऑफ द आंध्र मंदिर फन श्री नाम
0: जी
3: Dat is namelijk die soort mensen moet gaan verbieden. Want ja. ze maken misbruik van onze geloof.
0: Ja, cultuur. Ja.
3: Dus
0: ja.
3: dit gaan we niet zo laten, bij. En ik wil je bedanken.
0: Acha.
3: Voor de, in de toekomst ga ik u heel vaak namelijk uitnodigen.
0: Hamisa.
3: Voor onze cultuur, voor onze dharm.
0: Dharm gaat in Hamatal Bhatti, bhaiya. जब बोलियो समय बनाए के हम आप चाहे बकैया घैचा था हम।
3: अच्छा भाई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया हीरा, नमस्कार।
0: राम राम। कुछ गलती हुई हमारे बोले में जो मुझसे निकल के जो ना चाहता निकसे के तो क्षमा चाहेगा
3: भाई। रोई आम की आखिरी में कुछ बोल दो जनता के लिए। बड़का तो बलची बाटो, बड़का उस्तान बाटो, और उस्तान के जुबान जो है वो ढोलक के सुर की तरह है।
4: भाई हम तो बतियात बतियात इतना चीज याद हो गया कि अब हम बोल ना पाए कौन सी बोली इतना चीज याद हो गया। फिर भी हम वही पंडित के बारे में फिर जाल बोले कि पंडित लोग के चाहिए ख्याल करे कि जब एगो जग ले लो है तो तनिक ख्याल करो उसका घर में के आवे नाचे, कैसे काम हुआ हो है और कैसे काम चाहिए करे के। ये अब फीस चाहिए घर के मनाई के पंडित लोग के देवे के, ये हमारे ध्यान है।
3: थैंक यू वेल फॉर द कॉल भाई रोई देवरांशी। एक बार फिर आप लोग को हम आखिरी में फिन कहते हैं थैंक यू वेल हृदय से। इस वक्त स्टूडियो में है भैया सुंदर हीरा और रोय देवरांशी भैया हमारा कोलेखा साथी राजन द्वारका है, संत कोलेखा भी है और साथ ही साथ अपने भाई के बेटा विशाल को भी लाए हैं, उसको भी हम स्वागत करते हैं। एक दो गीत सुना जाए तो अभी और कुछ बातचीत हम सब करेंगे लेकिन वो ऐसा में नहीं रहेगी। आप लोग को एक गीत हम सुनाते हैं जो आप लोग जरूर सुन चुका होगा।

0: विशाल जी, सिंगल बोतल के मतलब कौन सी है?
1: वही जो से समझ दे ही बोले गर्म आवे ना।
0: कभी घूसा लग गया भी नहीं गर्म जो जाए।
1: अब जब खोजे घूसा खाए के तो खाइए भाई।
0: अब लात खाए मंगे तो लात खाइयो तो
1: बोले बोले दारू बदनामे नशे में सारी दुनिया।
0: वाह वाह वाह भाई। Vishal, ik heb je net gevraagd, je wordt onze toekomst van onze Hindoes, Hamloke Ganake. En ik heb een paar liedjes van jou gedraaid. Kan je mensen uitleggen hoe KCD ben je lebarte en hoe zit het ermee?
1: Zo, wel, ik ben eigenlijk gewoon, mijn muziekcarrière is begonnen eigenlijk dat ik altijd een stempel wilde achterlaten. कुछ मंगाती ये को छोड़ के जाए जैसे सब कोई प्लाट बनाई ले बा अब तो सही दी बा दिस उत अब स्टिक पे चल गए सब कोई स्पॉटिफाई माँ अब हम ऊपर अब सूरीनाम ऊपर ही उदाम बा जहाँ बे सही दी बा दिस दा विल देख वेल सो इट्स आफ्टर लाटर माँ सो वी सो ये मुदी क्वालिटी तो इन ये हैब ऑम मैं दी उस्ताद हन अम बीच तक लेक तो कन स्टैन एंड खुद ओक बस एफ वॉच स्पील ऑफ इट खुद क्लिंग ऑफ नीट ik speel eigenlijk die harmonium, ook niet zo best. Ik probeer.
0: Nee, je speelt het goed. Yeah. Ik heb het gezien.
1: En de dental speel ik en een beetje dhol.
0: Je dus, speelt ook dhol?
1: Ja, maar dat zeg ik niet zo echt professioneel. Die dhol is gewoon even...
2: Daar hebben we bij Roy voor.
1: Nee, ja, als je klasse me vergelijken, dan ben je ook een kleuter wat.
0: Nee, hij kleuter kun je na appen kosis heb kun je kare toe.
1: Nou, ik heb een beetje gezegd van... मानिए रहेगा चीज सीखे के नतीजलक और जन्ना जन ले रही है जोन सीख गए ले बातें और जोन उस्ताद लोगों से अब जब अब एको फोर बेल दे अब उस्ताद तो बैठल बाप गलिया में अब उस्ताद जी हमसे बोली फान एको द्रुपद बजाओ ता हम ना बजाए पाप
0: हुआ भैया कौन कौन हाथ ना बजावे
1: मा द्रुपद के बहन से को हम बाय फॉर बेल हम जानल मारे मा अब हम ना जानल के ओकर नाम बा द्रुपद जस उ सब चीजन कैनसन हमारे को अनब्रेक होए जैसे खेलवारे खेलवार ओ ई गनवा बकैन बा हाँ ओ ओ ओके बोले द्रुपद तो वैसे जान जाने ला चीज बने
0: रोई नहीं कुछ द्रुपद ठुमड़ी और लंगड़ी के बारे में कुछ बता दे तो माइक्रोफोन वाइफ दे दे भाई वट इज द कान विशाल एम बीजे बखराइब एक ओक
3: भाई द्रुपद जोन है जोन हम लोग पहले बजावत थे धलहरी सुबालक गावत राजून और वो का नाम है लंगड़ी भैल तिलाना भैल भैरवी भैल इस सब के अपार्थ अपार्थ एगो स्टाइल है बजा धुन बा एगो और उ धुनवा चाहिए जाने के नहीं तो का हो सब लंगड़िए बजाइए तो ऐसे ना है ना। हाँ सबके अपन अपन धुन है और वैसे बजे भी है और डायरेक्ट फर्स्ट स्केल जाना जाए कि कैसे बजे ये कौन गाना है वो कान चेके तनी से ज्ञान है वो खलक जान जाए वहाँ ध्रुपद है वहाँ ई लंगड़ी बा ई तिलाना बा ई भैरवी बा ऐसे ऐसे धुन है माँ अब ई साहित्य के लड़कन के सिखावे खातिन अब ई धुनवन तो एगो गवैया भी चाहिए देख हम ना गाए पब हम बजाब जब तू जय जोन आवाज़ करिए वही आवाज़ से हम बजाब हम ऐसे है
0: माँ भाई ये स्पेल उक तबला
3: हाँ हम तबला भी बजाए ला भाई थोड़ा ना बोले कि मास्टर
0: माँ ना तबला स्प्रे की उक नगारा
3: ना तबला पे नगारा ना हो पाई
0: तो तू नगारा नगारा भी बजावे
3: नगारा भी बजाएला अरे भैया लोग के देख देख हाँ थोड़ा सिकली नगारा भी और ढपला भी बजाएला और ऐसे ऐसे इंडिया के बड़का ढोल जो है वो भी बजाएला
4: भंगड़ा
3: हाँ भंगड़ा भैल और ताशा भैल जितना चमड़ा के कारोबार है जो बजे
0: भाई
3: हाँ द्रुम भी बजाएला हाँ द्रम भी करी रहा
0: भाई रोई ने जनता लोग के हम तेरी फरकलाम कर दिए रेडियो फाहुन जो है ना सिर्फ रेडियो चलाते हैं संता भी साथ में हम सब की करोक है रेडियो फाहुन का रोक ग्रुप और हम सब फनाफ बखीन दिसंबर से चौताल ग्रुप बजाएंगे हम सब चौताल उठाएंगे फाहुन चौताल ग्रुप हम बनाएंगे जहाँ रोई देवराज नगारा बजाई और इधर इज वेलकम और वह फरकलाप खातिमा दौर
3: और ऐसे है कि देखो ठुमरी जोन है उत्रीदा स्टाइल ओके हम ना ओके हम हुआ मुड़ी ना फोड़ी ला उत्तर उस स्टाइल वहाँ पे हम लोग अपन श्रीनाम स्टाइल जोन शिवालक गावत रहा बाप रे बाप ये तो से बताई कि रात भर तू बैठ के सुन सकते रहे ना हमें ना हम ना हमें गाना ना के विषय में तो हम जब सुनबे हाँ हम जब सुनबे तो हम बजा देवे माँ अपने से बोलिए गावे के तब वही है जो या प्रसिस इधर ही सर एक क्वालिटी है दैट इज वेल बा भाई बहुत ढेर है ठुमरी है लंगड़ी है तिल्लाना है भैरवी है धुरपत है हाँ पचरासरा ये सब तो लोंडा के नाच के कारोबार है और का नाम है और है बहुत चीज़ है कि जो ना भाई मुड़ी माइबिन करे अब जाने जब मोमेंट पर जाए बतियाई के कभी कभी तो सब सब है सब लाश हो जाए ऐसे मारे ऐसे ऐसे हैगा अच्छा
0: थैंक यू वेल फॉर द इन्फॉर्मेशन भाई विशाल ने मक के इफ द माइक्रोफोन वेयर पक नो हैप ये इज दिस अ बीच बकेंड पर भाई रोइस
1: या ये सब चीज वेल बकेंड बा हमार लगे खून गनवा से जब बोलिए तब हम जाने फन ओके उस सब स्टाइल पे चललवा
0: वी इज योर लेयरमेस्टर ऑफ लेयरमेस्टरेस
1: कौन नो
0: गुरु हिंदुस्तानी बोले
1: गुरु में
0: को गुरु अच्छा
1: या हमें एक अलग फास्ट गुरु ना है हम गुरु धले कैसे बोले एकदम हमें एक ओसे फुटकड़ियाम कोई ना सिखाई
0: हैप यू सेल्फ हारमोनिया क्लियर
1: डील्स वेल एंड डील्स बेन कोरी शेयर
0: ओके मा हैप यू नोइट द इस्ट स्टेप हार्ट
1: या
0: फन वी बोले पहेडा सीढ़ी ना चाहिए बुलाई के
1: ना ना इस्ट सीढ़ी हमार शुरू भेले एकल कृष्णराम खेलावन लगे
0: दिस इट इज टॉक इट इज एरकस अन गुरु बखोने
1: हाँ धले बोल सके तब तो माँ वही बोले फन एर इज टॉक अन फर्स्ट फन हु यू लर्न एंड हु आन योर वर्ड गेलर्न तो वन ये कैन से फन या हम हम हम उस्ताद लगे चली माँ ओके देख के सीख ली माँ ओके बिना हमें सिखाइस बखरे एगो फर्स्ट स्किल एगो फर्स्ट स्किल बा दिस एक हैव फेल दार गसीन एंड आन द हैंड फन सीन हैव एक गेलर्न एंड एक वॉज ओक नीट लांग दार फाउ ऑमस्टांड दिस हम हुआ से निकल ली दैन अंदर फ्रेंड क्रिंग हैप एक मेयर गेलर्न एंड दोर अवसी फान रामदेव चैतु हरिशिव बालक राम प्रसाद राम खेलावन हरिद जय राम हनीफ मोहम्मद यूसुफ खान ये सब गनवन सुन सुन के तब कोशिश कर ली ऑप्शन और शीनील मानिर बजावे के
0: दैट इज टैलेंट भाई दैट इज टैलेंट थैंक यू वेल दैट इज आई थिंक वेल गुड टूर
1: दिस वो सब चीजन हमार फादर पहले बजावत रहे जन हमें एकदम ही कला हम बैठे गाना ना लोबी करते
0: तोर फादर
1: हां हमार बाप बैठे गाना रामदेव चैतु के सीधी जितना रहा सब बजावत रहा बहुत ही कला लगा था मैं बैठे गाना के छोटा रेली था मैं ना मोय लगा था बैठे गाना एक ही फत्तु हम बैठे गाना शुरू कर ले लोबी करे के अरखन से तो इदाइसन 12 एंड दैटफॉर वाज एट होम बॉलीवुड फिलीदर ओकिन और चेस्ट्रा बेनो सब चीज हमें ना मोय लगा था खाली बॉलीवुड लीडर मोय लगा था एंड एंगल सर
0: Vishal, ik ga je even aanvallen. Dat ben ik. Mensen die kennen, die weten ze. Je bent van Maho.
1: Ja.
0: En Maho met een mooie mandir van Manal is er maar komen. Ik heb je daar nooit zien optreden op de Facebook.
1: Wel, dat heeft hij niet goed gezien.
0: Dat heb je niet goed gezien. Dat kan.
1: Nee, het is namelijk ook zo vanwege mijn werkschema, mijn shiftverband. Net als ik het zeg, muziek is mijn hobby. Hamar ghar bajas na chale hai, sorry. Hamar ghar kaam se chale, aasit ke kaam se. En ik heb een grote verantwoordelijkheid, dat is mijn gezin natuurlijk. En daarnaast natuurlijk krijg ik medewerking van mijn gezin, mijn vrouw, mijn lieve vrouw. Dat ik een beetje muziek buiten kan maken en natuurlijk ook een beetje kan leven daarin. Dit is mijn ontspanning, laat me het zo zeggen. En jeb bahut dher mandil hame puchis in de loop van mijn leerproces. Nog steeds leer ik, maar in dat stuk waar ik echt meer vrij was, dan heb ik heel mandir geili bajaven. Misschien minimaal 11 mandir mee hem bajaili batir.
0: Acha, Vishal, ik wil je wat vragen. En, het is nou ratum, vanaf morgen.
1: Ja, klopt.
0: Ego mata ke gana sunade.
1: Mata ke gana te hiye. किरुनक झुनक मैया आई रे मंदिर वा मलिया करत जयकार हे रुनक झुनक मैया आई रे मंदिर वा मलिया करत जयकार

0: देखो रूप अनूप, हे रूप अनूप, देखो रूप अनूप, तेव मुख भरनो चरणन पे बलिहार। जय हो।
1: That was hell boy. एगो अप्लाउज भाई विशाल। विशाल अबे तो तू माता के गाना गाइले बाटे, अब हम जाला कुछ और तो कुछ सुनावे।
2: अरे तनी बिल्ली के कहानी सुन ले रे, बड़ा लेसी बिलारवा।

0: बोतल सिंगल बोतल बोले इक्के बोतल हमें जाना भैया बिना दो बुप के विशाल के महीना आप लगी सुना दी। अभी आप लोग को बिरहा सुनाएंगे और वो बिरहा कौन है, बिरहा वाला वो एक ही आदमी है जो आप लोग को अच्छा सुनाए हैं, वो है बिरहा नगारा मास्टर ट्विंतक का सुंदर और किशन हीरा के भी सुनाएंगे। लेकिन भाई सुंदर आपसे एक सवाल करना है, हम सबका आँख के यानी आँख नवंबर के महा दीपावली महापुरु है दिवाली है और हमें तो सब तार कर चुका है 7 तारीख के पोखरी कल्याण पे जैसे हर साल किस तरह इस साल भी दिवाली फेस्टिवल होगा। ज्योति भजन कीर्तन समाज 2 बजे अपना प्रोग्राम को वहाँ स्टार्ट करेंगे। आपके बारे में कैसे बीते हुए साल में, तो आप तो वहाँ नाचे थे अपना प्रोग्राम को किए थे।
1: हाँ हाँ हा। भाई हेमंत लक्ष्मण ने कॉन्टैक्ट करी से किचन से बाकी ना अब हम प्रोसेस ऑफिशियल ना जाने लगे टाइट कौन टाइट पर हम लोग के आवे चाहिए और कि हम लोग प्रोग्राम पर दौड़ जाएगी ना
0: कैसे तुम करे माहो में
2: सो दिस अब हम नए ने अब जाबे तब देखी कौन ची हो है वहाँ तो एक बार वाल खफरा हाँ अंताल केरा दौर इन अफ अंदर मंदिर अंताल मंदिर दान मार एक फाम वही बोले फाम वी खमा वैरक दान कानिक नीत ओवरऑल सेन एन सामा खमा मंदिर तनी गुस्साई गया हमारे ऊपर फान की एम बेर बेर पूछी लाओ तो ना आई पावे ऑफ ना आवे है दान बखरेप एक सो ओक एक कम सो ऐट मा ik begrijp het ook, maar ha, vervelend hoor, ik kan niet iedereen helpen. Dus sorry ervoor. Koisuno het hoort, maar toch kabina, zoals maar koike, thuis pahunchaak, duk pahunchaak, maar ik kan niet overal zijn. Bhagwan ke den ba, ki cha sab koi hame pasand kar le ba, maar sab kei ti bio naai ka, apan awaad sunai pap.
0: Ik heb een vrij postige vraag. Zo ben ik helemaal.
2: Geen probleem.
0: Als ik die mensen...
2: Als ik het kan antwoorden, ga ik het antwoorden.
0: En in Suriname, als ik de ANL-leden een interview en de ministers daar niet vroeg, dan weten ze al hoe laat het is. Maar zo ben ik. Ja. Hey, maar, ik heb gehoord, die pandies van Suriname, daar heb jij ook niks te maken. Die worden betaald, geredelijk, van de Senatendrum. Maar hoe zit het met de bhajankirtan van jullie dan? Want ik heb het begrepen van een aantal van die bestuurs. Bolle ki John Bhajan Kirtanai, bolle use paisa khoj. Ik ben zelf gaan optreden in Saramaka. De bhairoi hoa paisa van hem ego envelop deis. Haan, Saramaka ke mandir me. Van groeien. Te ham bolle ikonchi hamar gaat vreemd traatje joa. Voor mij is vreemd, want ham nu hier sab kuch gratis bejaan mandir me. Te hoa ham ego deise envelop, hoa ik voorzitter. Te ham bolle, wat is dit bhai? Te bolle ham luk ke kanti se bolle te luk ke samaj ke deel. Te ham bolle, maar dat is toch ons taak. Ham luk ke chahi ge samaj ke dewe ke na to ke chahi ham luk ke dewe ke. Maar zo zijn ze niet gewend. Bolle, hoe heb je bolle, sap koi, bolle, paisa eiskere mandir me kirtan. Dat wil ik aan Vishal vragen hierover.
2: Ja, ik heb beide meegemaakt. Ten eerste, toen ik in het begin ben gestart, ham dewat geili apan keitise, na ham sikli leweke, ma deweke. Maar met de tijd, Suriname is niet meer zo makkelijk. Alles is duur daar, toch? Dus als je mij in de buurt gaat roepen, is te begrijpen dat ik ga geven. Natuurlijk. Maar als je me helemaal naar Pat van Wanika gaat roepen, bij, ik moet benzine betalen. Ja. Toch? Ik ga over mezelf praten. En ook een beetje begrippelijk tegen andere samaj. Van, eisen weet ik niet. Ik weet niet wie eist. Wij hebben nooit geëist. Dus ik praat over mezelf en mijn groep met wie ik ga. Het is niet verplicht. Maar altijd wanneer ze meegeven, ik deel het onder mijn leden. Van, ki etulung. Hamlok meestal apart aila. Want ham apart jaila apan behin ke leke soms ya apan dantal bajo ek leke aila. Eko dholman hame khojek pare. Soms Munna Sital awe, the well back and the dhol master van Suriname, Ustad Munna Sital, mag ik niet vergeten. Hij kom soms. Ja, dus soms jongere rehe bio, jon campus awe he, en usap ke benzine dhalle dek ho jaye. Want benzine is helemaal niet goedkoop in Suriname. Dus ik in het begin heb ik het niet geaccepteerd, maar je bent gedwongen nu, weet je, ham na lila soms ook naki echt behoorlijk de wisse. Maar soms, ik geef maar een voorbeeld, je hebt met 1000 en ze die soms een tamade. En ham dekkel doe je in je eilen. Het ham na lila. Ham londen ke baad deel. Ey, toepen het wambale, toepen het wambale. Naspanker. जब मैं उस सब भी हो के बिहान के जब हमें उस सब के काम लगी तो उस सब आई हमारे लिए तो मार एक एक सौ दस वेल मिल वेल विल मी ही फ फॉर वी का द सिचुएशंस फॉर बेंजीन एंड इधर इन दी टाइट मार्क दैट दैट से तोह एरान मुझे डेंके दैट तोह इट्स अपार्ट मुझे गबरे एरफोर वांट सो डून द चीजों स्टार्फ हो जाए कोई ना मोई थी मांगी करियो क्लब समाज है और जस सब कोई एक कहीं थी ताके भी फोर दे लापन तो तो एक और चीज में जी इन्वेस्टर करे और इनको मत तो कहना रही उमन दाखा ये फ्रीविलिग विले डून वनेर ये वनेर यो वनेर जो खुद आउटकम तो मा द मीस्ट में देख हम बपाल द मंदिर में गईली भजन कीर्तन करे जहां पे वो सब के फास्ती मनाई रहे है मा एक है पत ओ खसीन फन की ए जे तू जइए हुआ ओ जे झगझोरले हुआ पे द वेले से एक दी दा वाकर ब्लेफ एंड द फॉलोइंग द केयर समन तो के फरवाह करी ई तू आइए जरा तू तू रहे तो दूसरा रकम रहे मंदिर या फॉलो करे तो हम मीमा कर ली जहां पे पंडित एकाद को पंडित रहे फन भाषण ना देवे या भागवत गीता या रामायण ना बाचे सब बोले तू एगो भजन गाओ और वो भजनिया पे आज हम लोग चर्चा करें भैया एंड इन फन द मोइस्ट इज फन दुनिया चले ना श्री राम के बिना दैट इज इन फन से दिए खबर एंड दी फन रामानंद

0: Ani, dus hoe volledig ziet dat mij eigenlijk banaal bij genoeg, maar ook ze eindelijk ik laatste couplet, hem wel op een volledig kerkje, volledig Ramayan manen halen, oké. Dus dat op pandeel met je hem jij laat, oké wel, je pandit boelen kie van, als bhajan pe ook erik hoe, dan hoe ik ook heel makkelijk kort, heel mooie vier couplet ke samenvatting ba, John eenvoudig uitleg kan zeggen.
1: भाई रा एको फ्राक तो से रहा अने हम लोग दिवाली के यहाँ करेला महाशिवरात्रि के बड़का फेस्टिवल हम लोग कल रोई दुजाने अमारा में अने क्या पर हम मेरा भाई अने कि जो यहाँ के बैंड हैगा दिवाली फेस्टिवल पे महाशिवरात्रि फेस्टिवल पे सबन के भगवान के गाना ना रहे भजन ना रहे से खान डांस नंबर दरोप सिंग है इक्लॉप दे भाई इज दैट लाइक
2: सही बात है
1: व्हाट फील यू इरफान
2: बहुत हमको बहुत दुख लगे है अबे जो बोलो सही बात है कि भजन जैसे उस सबके शर्म लगे गावे के
1: या है
2: बाकी भी बोकू तब चला जाए तो चाहे स्टॉप करेगा
1: हाँ
2: माँ शर्म की बात है कि हम लोग के महाशिवरात्रि नवरात्रि कृष्ण जन्माष्टमी ऐसे ऐसे अब दिवाली के वास्तव में सच बात है क्या कि कहीं ना उस सब गावे भजन जैसे उस सब शर्म लगे बाकी चाहे अपने के सोचे के कि देख हम कहाँ जाए ला और जब जा है दासाफन में तो भी फर्द फोर है जाने तो
1: कि कौन जी तू गई है
2: हुआ कौन जी गई है तो
1: या
2: तू एक वो कलाकार बाटे
1: ने मुझे आलेशन है शब्द
2: फर्द फोर है अरे तो कहता हूँ ये रात भर गावे के पर तीन चार को गाई दे दो दिन तीन दिन को ब्लड
1: तो लोग जैसे भाई विशाल हैगा मियाँ वो कर रहेगा और भगवान का रामायण भी सो सो दस सुन में से मुझे वह है दुख
2: वो जाने
1: इसे नहीं सो भाई रॉय व्हाट फेंट योर फन या तो या सो सो और तो या तो तू तू भगवान के समाज के फेस्टिवल पे गावे आदमी के नचावे भी बांटे और तू सब करे एक लगन कलाकार मुत अलस इन हाइस हैव हां
3: इट्स मे
1: ये मग मे गे गलाइक रॉय
3: हां वो भजनिया जो हनुमान के बोलो बोलो हनुमान
2: जी
3: ओके गई ये बहुत अच्छा गाना है बहुत अच्छा भजन है और बड़ा विशाल भजन है
1: अबे हम लोग कोरज गए ली तो मने वरसात
3: अबे हम गए ये बजरिए अबे हम ड्राई करिए अबे अच्छा बहुत अच्छा गाना
1: अच्छा
3: ओके तू गए तू देखे तो देखा मैया बनी खा रही हां
1: बोलो बोलो हनुमान की भक्ति की राम श्री राम के चरण ने अबे तू गाई से कोर दिया हां मने वरसात
3: वाला गावे है तो
1: वखान इफनाने बिरहा फान भैया नगारा मास्टर सुंदर हीरा
3: हीरा

और दोस्तों ये एक नगारा सॉन्ग हमने सुना दिया है, वो है बिजुन यानी कि बिहार सुंदर और किशन हीरा का ये सॉन्ग है। तो हम चलते हैं एक और सुरिनाम पर अभिमान, सुरिनाम पे अभिमान हरीश बालक का ये सॉन्ग है और मेरे ख्याल से रॉय देवराज इस पर ढोल भी बहुत जोर तोर से बजाए है। आ मिलकर सुना जाए ये एक क्या है।

दोस्तों हम जाई भैया रॉय देवराज की एक वो बेटुआ भी है, हाँ जो उन बहुत महान है, वो भी म्यूजिक करते हैं और बैठक पवन में गाते हैं, उसको आन सुना दे भैया। सुदेश सुदेश सुदेश देवराज

तो दोस्तों ये था रॉय देवरांच का बेटा सुदेश देवरांच। हम चलते हैं एक असली नचनिया के ओर, अभी बताएंगे ये कौन है।

सुंदर हिला के ये एक लोंडा के नाच का ये जोंग आपको हम सुनाए हैं। हम चलते हैं एक नौजवान की ओर। अब ये नौजवान कौन है वो हमारे आगे बैठा हुआ है।

0: आओ दंकीवाल भाई विशाल, अपन बलमुआ के छोड़ के और के तुझे ये दिल लगावे तू बताओ।
1: या कुछ ही बोली भाई।
0: हमारा काम है
1: तू तू फालक हमारे के बाद अपनी सजनिया छोड़ के दिल किससे लगाओ।
0: उसे ही बात है बकी। बकी कभी कभी लग जा है। निकेरी में भैया एक सजनिया के लिए दुई मिला दिल लगाई से और एगो दी एनफी दाग दीस पहले ओके पाए कपड़े दग गए। न्यूज पढ़े तो हमारे काम है तो ई बलमुआ से दिल लगल विशाल। हैप्पी डी न्यूज वेल होर्ड
1: या कैप फॉर होर्ड या
0: विशाल। ये तू चलावे है एम्बुलेंस
1: या
0: ने हु सेते में डिमेंशन जोन करमासून बरा जोर पिए है मां की हिल फिल्म में।
1: देख उस पे को सिचुएशन बा भाई मार इक्वल
0: ये तो सिचुएशन वेलिक नीड बे ते ढेर में मक करे दखा दो।
1: Toch wel. Er is heel veel dingen in Suriname die aangepakt moeten worden. Maar hoe Hamar Jagana heeft bolleke.
0: Dat is niet jouw werk, maar maak je veel mee?
1: Toch wel.
0: Kon jan jana pie, bhai?
1: Sab
0: jan pie.
1: Sarnaam ke jan.
0: Nee, dat bedoel ik. Nee. Dus Hindustani, Kafri, Juka, sab jana pie. En over de situatie van Jan Boschobruk, Sab en Koede, bent u ook daar geweest?
1: Nee, ja, wat een kusnijker. Zelden vooral van die koi kantim kudal leed dat jij. Maar toevallig hebben we hem naar mij makkelijk, want je mijn collega jada.
0: Nee, dat is fijn te horen. Beste mensen, ik zal even uitleggen. Nee, bij jou Vishal, John Higa, muzikant, hij zat een ambulance driver. Hij had hem ook behandeld natuurlijk. Je zegt hier bij je ambulance ja. Toen John bestuurder of verpleegkundige Higa. Toen een ilaans kreeg. Hier is zelfs zo erg Vishal dat kies hebben een ambulance personeel. Ik heb hem mishandeld kreeg. Is dat ook in Suriname?
1: Ja, recent wel bijna, maar niet als het personeel na durf kriezen.
0: Waarom durft het niet? Wat is het probleem?
1: Zou ik niet weten.
0: Zijn ze agressieve mensen? Zijn ze met wapens? Zijn ze sterk?
1: Nou, ik zal wel dit uitleggen. Volgens ons training hebben we wel geleerd, als de situatie niet veilig is, mag je daar liggen hoor. Maar onze veiligheid, als het niet gegarandeerd is, gaan we weg.
0: Groot gelijk.
1: Toch? Dus tot zover hebben collega's naar Benami makkelijk. Andere collega's van andere bedrijf Surkat, die hebben wel laatst twee gevallen wel meegemaakt. Dus tijdens het behandelen werden ze gemishandeld. Dus dat was wel niet fijn. Maar wij zijn als ander collega, namelijk zelf, wel Chijua onder gesprek lelen en aandacht. En we zullen zien wat verder gaat gebeuren. Maar het is sowieso actie op reactie.
0: Vishal, je bent, ik ga niks van jouw privé, van je werk willen weten. Dat is jouw geheim. Dat heeft elke bedrijf zijn eigen geheim. Maar heb je wel meegemaakt zo iets je te boelen? Hey, dit is heel heftig voor mij, ik zit ermee.
1: Nou, op het werk niet, maar persoonlijk liever wel dat te vergelijken is met mijn werk. Dus ja. Wel, hem nou maar heel erg.
0: Nee, dat hoef je niet te zeggen. Tikke, dankjewel. Dus toch, kei din se hem baanchit karhe hei ki bhaiya Sanjay bhi hamara program me saan denenge sate bhaiya Sihira ke senge, Roy Dwarka ke senge, Vishal bhi aange hei, Radhe bhi aaj line pe the, sate sa studio bhara hua hei, bhaiya Rajan Dwarka announcer saath hi baithe hei, Santa ke mai bhi announcer saath hi baithe, aur bhaiya Sanjay Bhagwan bhi aange hei, ab wo aaye hei, aur wo ka kari se, ka na kari se, कैसे उल्लाती का ऐसे अब वो कहते हैं जनता से माफी मांगे के आ जा भैया।
2: अब जॉनी भाई माइक्रोफोन सामने रख दे इस तब बोले जनता से माफी मांगना चाहिए तो कहने के बाद ये है जॉनी भाई आयकर पहुंच गली। पहला बात ये है कि आप लोग के कार्यक्रम जो चल रहा है हम भी फॉलो कर रहे थे
0: कहां पे
2: इंटरनेट द्वारा एयरपोर्ट हॉलैंड के एयरपोर्ट वहाँ पर आजकल वीफी भी है पर यहाँ जिसके पास मोबाइल है तिसके पास वीफी भी होते
0: हैं फाहोन है
2: और फाहोन भी है और यहाँ तक है कि 195 देशों तक ये कार्यक्रम को सुना जा सकता है
0: जी।
2: तो कहने के मतलब ये है कि इतना मजेदार प्रोग्राम बन रहा है यहाँ तो हमें मैं गाड़ी अपना चलाना चाहता था घर के ओर पर जा नहीं पाया सीधे फाहोन स्टूडियो के ओर लाकर उतारे ऐसे होते थे ना पहले
0: ये प्यार है
2: ये प्यार
0: है।
2: अब मुझे पता चला कि कैसे मेरा आजा फ्रैक्ट वाहन शोफेर थे सीओ उषा का, तो वो फ्रैक्ट वाहन शोफेर थे, क्योंकि आज कितना पुराने बातें हो रहा था ना, तो अब हम कह रहे हैं फ्रैक्ट वाहन शोफेर, पर उस समय पे फ्रैक्ट वाहन उसका फ्रैक्ट जो राइडर रहा फ्रिट्स घोड़ा, घोड़ा गाड़ी चलाते थे, तो घोड़ा गाड़ी वो लेकर के अपना ट्रांसपोर्ट करते थे, पर वो घोड़ा में वो ज्ञान रहा कि वो उसे घरे लाकर पहुंचा देते थे, तो उसे इसी तरह से हमने भी गाड़ी चलाया, पर अपना गाड़ी यहाँ फावन में पहुंच गया। और ये जरूर कुछ कारण बस ऐसा हो जाता है जॉनी भाई कि कुछ साल में एक होलांत एक ऐसा देश है, कभी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोले फर्स्टोर्थ जो कभी फर्स्टोर्थ ऑपरेशन लुफ्टवाफे में हो जाए, कभी फर्स्टोर्थ ऑपरेशन एनएस में हो जाता है, कभी फर्स्टोर्थ ऑपरेशन कभी कभी तो हम लोग के रेडियो पे भी हो सकता है।
0: लेकिन जब आपको हम यहाँ बुलाए अपने बगल में बैठे गए, आप तो जानते हो मैं किसी को सो मां नहीं बुलाते।
2: नहीं वो तो मुझे पता है, शनिवार को शाम है जहाँ जॉनी भाई भी है, तो कुछ ना कुछ हो ही, कुछ हो ही।
0: तो अभी तो आप तो आप लोग को बता दें, ये भाई विशाल सूरीनाम जिससे आए हैं, निशिकांत है, और आप तो पूरा प्रोग्राम को सुना है, हमें बताने में कौन काम है। और लेकिन आपने अभी सुना भैया हीरा से, भैया रॉय के वो सब ने जो हमारा लौंडा के नाच के बारे में है उसके बारे में तो आप सुन चुका है कि हम सबका मीनिंग क्या है। और सूरीनाम में हम काल से कल हमसे कॉन्टैक्ट हुआ है मुफरव गीता से, वो है सनातन धर्म का सेक्रेटरी है, और उसने हमें तार करने को वादा किया था, लेकिन ऐप पे बताया कि वहाँ पर वो कौर्तप्रयोग पे वो कुछ नहीं कर सकते। इसके बारे में एक और वस्तुस्थित हमें दान किया है और बताए है जो फोर्सीटर उसके घर में कुछ मट्टी इत्यादि की चीज़ है, फिर भी छोटा रूप में हमसे बता दिया कि बात कैसे है, लेकिन मैंने एक वॉइस उस सबको पठा दिया और लगा हो अच्छा या नहीं लगा तो आप तो जॉनी को जीव जानते हैं कैसे हैं। मेरा काम है खड़ा मजूरी और चोखा काम, जैसे है वैसे हमें बताना चाहिए। हमने कहा कि 5 मिनट आपको समय नहीं है, हमारा सनातन धर्म के बातचीत हो रहा है, या अगर ये कोई हमारा धर्म के और उसका मिसब्रेक करेगा तो आप धर्म के हो, आप इसमें हाथ लगाओ, आपका मीनिंग क्या है, तो ये हमने पूछा है। तो वो सब इसके बारे में वहाँ काम कर रहा है, कहा है कि होंद जो फील ससम फीर्थ का मंदिर वहाँ है जो आन खसलोतन सपना है सनातन धर्म में, लेकिन जो आन खसलोतन उस पर काम करेगी, लेकिन हम लोग के काम है, जनता के काम है वहाँ के मंदिर को बताने के लिए कि वहाँ पर जो नचनिया है या वी दन ओ समुत खीन मिस ब्रेक मार्क फन ओ से मंदिर हम लोग धर्म के बाटी, हम लोग के अपना सनातन धर्म के अच्छा करने को हम सब का हक है। आपको इसके बारे में क्या विचार है? आप हो यहाँ के अनाउंसर, आप भी यहाँ के सनातन धर्म के और मंदिर के है पंडित भी बांटो, ये समय पे आप कौन हो?
2: इस समय पे तो हम है आपका सेवक संजय।
0: नहीं नहीं चटी
2: आपका सेवक संजय, और पाहुन रेडियो को सुना है सुनने वालों सभी जानते हैं कि संजय कुछ ना कुछ संदेश तो रखते हैं, पर अपना मीनिंग इस पे धरा जाए ये बहुत सुंदर बात है कि आपने ये इनिशिएटिव लिया कि कुछ जब गड़बड़ दिखता है तो उस पे हम जरूर उस पे अपना हथौड़ी मार दें कि उसे अब से सोझा कर सके। और कहने के तात्पर्य यह है कि हमारे कुछ पागलपन हम लोग में है जिसे कुछ अच्छा लगने लगता है, कोई मीठा बानी कोई बोले मैं द सूत वर्ड
0: या
2: तो हम उसमें बस जाते हैं, हम उसी के पाछे लग जाते हैं। अब देखा जाए कि भाई जो इतना सुंदर संदेश रखे आपने कि कैसे पहले के हो रहा था, हाँ माइक्रोफोन वाक बगलिया में बैठे हैं तनी, हाँ तनी मन मुड़िया इधर उधर चल जाए जॉनी भाई, मर और भाई राधे जी ग्लेन जी इन लोगों ने जो धार्मिक क्षेत्र पे जिस प्रकार से चल रहा है, तो हमें मीनिंग ये है कि हम लोग देखा जाए कि हम लोग के पास बढ़िया बढ़िया वाला है, हम लोगों दौरीला जोन तनी ज्यादा मीठा वाला लगे है जोन मी... पहला चीज ये बात होता है जॉनी भाई, ये तो आपको भी पता, मैंने कई बार ये कह चुका हूं कि कोई तनी ज्यादा मिठाई से बोले तो अंदर का भी बसा हुआ रावण उसे पहचानने के चाहिए कोशिश करे, जोन भीतरा में रावण है हाँ ओके पहचानने के कोशिश कर, क्योंकि जो मीठा ज्यादा है उसमें तो लात खाकर काम करते होंगे घर पे जाना तो ऐसे है, दैट इज कौनसो दिस द रियलिटेट इज मेंस वेस ऑफ यहूद। और कुछ जो हम लोग के धार्मिक चीज पे खराब हो रहा है तो उस पे जरूर उपे अपन अब हिंदुत्व दिखाओ कि हमारा हिंदू धर्म में ऐसा ऐसा ऐसा होता। आप देखा, मैं सुन रहा था कि कैसे भाई वो कजरा से अजरा हटाकर जो राजा जनक और दशरथ का मिलन वाला है, कितना सुंदरता है उमें, पर उमें कई कुपलत थे ना अजरा से हाँ वो तो ईसा तब एक कुपलत हमें बुझा पूरा ना गावे ही लोगन और मिलन हो जाए है, जबकि वो पूरा चाहिए सात और अब देखो देश और परिस्थिति काल के अनुसार कुछ ना कुछ करक चाहिए, ठंडा है तो तनी जल्दी करो और गर्मी है तो आगे खींचो पर इसी प्रकार से जॉनी भाई हंस रहा है। पर ऐसे भी हम लोग की चीज जो अभी सुना के सुनने के मिला भी कि जो जानते हैं बताते भी नहीं है वो मुतद्दद से देंगे दिल। और मैंने ये भी सुन रहा था कि जो बूढ़ी माता लोग रहीं जो जा करके गाना गाते थे तो दुल्हन के जब खाना खाए लगत रही ना खाने के बाद में तो हमार फुआ लोग कुछ और गावत रहा बनाए बनाए कि तो सोठिया में फूल फूल है और राजन भाई सब मतर प्लेक फॉर सेन दिस हाँ जोनी भाई बोले माइक्रोफोन दे करके मान रहे बिल्कुल लड़का की तरह भाई बोले ले लॉलीपॉप दे वो और फिर माइक्रोफोन छीन ले
3: उसके कारण होता है।
2: हम लोग
3: कारण आप ही बता दो।
2: परप्लेक्सिंग सुनने वालों हम लोग अपना परप्लेक्सिंग की ओर बढ़ रहे हैं न्यूज और कमर्शियल की ओर। और ये कहना चाहूंगा कि शनिवार की शाम है और भाई जॉनी का प्रोग्राम है।
0: नहीं नहीं हम सबका प्रोग्राम है, अभी हम वापस आ जाएंगे वन एक बार नोख नीट क्लान में मने संजय भगवान एक हैप नोख स्कर्प फ्राग फॉर हिम।
4: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: अद्वोकात कांतोर आनंद राम सूद वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
6: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaats en jeugdstrafrecht.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
7: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
5: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
8: U luistert naar Hindustani Radio, Radio Faro.
9: Digitale radio, wagonfm.nl.
10: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemiddag, ik ben Edward Niesing. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en vijf andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam en dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur.
9: Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. Temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
4: Den Haag heeft het Binnenhof, de Hofwijver, het Vredespaleis en je eigen Vahon Hindustani Radio.
0: Dosto, hum chalte hain ek geet ki aur abhi Sanjay Bhagwan se hum baat chit karenge uska meaning.

0: Ilha dos Bombay, Auri Chalonan Chali, Hukuape, Anan Balgobin, Auri Smivishal, Vikamiki, Dosto, Hamchilti, Virsi, Apanan Koli Kasanti, Awo Hez, Zanji Bhagavan ki aur usse kuch sawal jawab karenge. Saath hi saath bhaiya Hira bhi hamare Krishnam ke samne hai. Bhai Hira, aapke koi sawal hai Sanjay bhai ke sange, wo bhi aaye hai.
1: बहुत धन्यवाद है,
2: बहुत खुशी की बात है कि पंडित साथ में है और भैया संजय पंडित जी है और बहुत बढ़िया है कि उसके और ज्ञान है और ख़ास करके विवाह के बारे में और कुछ बता ही सके दान हम लोग तो नाच बाजा वाली कुछ बता ही सके और कुछ पुराना चीज़, लेकिन जो उनका हराई है तो संजय भैया पंडित जी बताए हुए हैं तो अच्छा लगे।
3: भाई हीरा ने ये बात किया कि संजय को पता है कि विवाह के बारे में कुछ पता है, तो भाई हीरा जी ये मैं कहना चाहूँगा जब विवाह हो जाएगा तो कुछ सीख लेंगे।
0: मेरे ख्याल से बबली सुन रहा है। अबे घरे जाएगा तो बोले बबली कि संजय आज खाना नहीं मिलेगा।
3: पर भाई हीरा जी बात ये है कि आप एक अति उत्तम प्रश्न रखे हैं कि हम विवाह जो अपना हिंदू विवाह है, अब ब्रह्म विवाह जो जैसे कहते हैं, जैसे पहले होता, आज के जो संदेश है खास करके कि हम लोग के धर्म के जो बिगड़ते जा है उसे हम लोग कैसे कर सकल जा है कि उसमें सुझाव आए
0: जी।
3: तो ब्रह्म विवाह आजकल बहुत कम हो पा रहा है क्योंकि पहले सामो वोनो हो जा है ये सब यहाँ पर विशाल नाम और उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पर मैं ये कहूँ आपसे कि हम लोगों पे जरूर काम करेला। अब देखो कुछ हिंदुस्तान से स्कूल है जैसे यहाँ पर फाहौन है और विष्णु स्कूल आदि सब में खोत्सदींस मिलता है, हम लोग कुछ ना कुछ वहाँ पर संदेश रखते हैं। खास करके फाहौन स्कूल ने इस 2025 में ये अवसर दिया कि हम अपने बच्चों के लिए ये संदेश रख सके कि ब्रह्म विवाह क्या है। दैट एसेंस ही हब सर कुन सत, उन्होंने एक रामलीला के रूप में ओके रखे के कोशिश करी है और कई बार अपत्रित करके दिखाई है और देखा जाए कि उस पर बच्चों का संदेश दिया जाता, पर जब माए बाप उस पर आंदाख ना दी है तो कैसे होगा जॉनी भाई। तब वही आपके न्यूज़ पढ़े पर ही कि अरे भाईल यहाँ तमाशा।
0: देखो भाई ने एक मी कमाग भैया लोन आपको जो हम लोग के हिंदू स्कूल यहाँ है, मेरे ख्याल से विशाल इंस्टीट्यूट नाम पे है पियोग द हिंदू स्कूल है तो या तो
4: या
3: विष्णु स्कूल हनुमान
0: स्कूल दैट हैप्पी दैट इज हेलमाल इन ट्वाइफल्स इन माओ हैप्पी एंड मिलो स्कूल ऑफ नहीं इट इज एन फीवेओ स्कूल न्यू कमांड न्यू या बट दास हम लोग के हिंदू स्कूल भी है, हम लोग के रहा कोपनाम स्थान के स्कूल या का नाम
3: विष्णु
0: स्कूल या बार में स्कूल का बीच विष्णु भाई
4: माहो माहो स्कूल सोविसो एक देवी सहाय एंड अंतरिसिदा एंड ओक मथुरा
0: मैं बैठ नहीं ना हिंदू स्कूल के बीच। अच्छा यहाँ पे हम लोग के हिंदू स्कूल है श्री विष्णु स्कूल हैगा और काबले फाहून स्कूल है और सरस्वती स्कूल है और गणेश स्कूल हैगा दैट इज इन इन इन अलमेरा गणेश स्कूल हैगा श्री विष्णु स्कूल एंड फाहून स्कूल यहाँ हैगा
3: डेन
0: हाग में रोटरडम में हैगा सरस्वती स्कूल हैगा यूट्रेख्त में हैगा बेन एक इवन वर्गेटन मा ओ भी हिंदू स्कूल वारम कैन के ओमदा टेक नाटक स्पेल हे लंप जो सम हिंदू के बारे में भाई हीरा एक वीत हेल नीलांत में कहां कोंची होवे
4: जी जी
0: begrijpt u? En daarom heb ik die connecties en de netwerk en die mensen die ik ken allemaal. Dus kontje, ik kijk een lerken zo'n hindoe basisschool, dat is de moeilijke baat die heeft, hij. Kijk, zo'n lerken school, ja, hindoe school, abbe ook haar bab mij uitra gelovig naar hij, bij Rajan, dat abbe lerken ook begeleid kunnen, ja.
1: Ja,
0: ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het meegemaakt. Ik heb het Durga Mata ke Lakshmi puja hega and for that bole ki bole da etik ok nit tamli to koji bole auratya kuch krishna ke mandir murti dai tamboi tu kuch na kar bole ladkon kare na stai ko kar bhai jis kabhi kabhi bole hega jo shiksha bap mai deval ai ladkan ke pakdi se hiya andersom hai bhai
3: andersom ho gaya ya
0: and that means so trust up onse basis hindu school allemaal to santa कि लड़कन के उतरा उतरा शिक्षा देश क्यों अपन माई बाप के भी सिखा रहे कि हम लोग के हिंदू स्कूल कौन सी हिंदू कौन सी है
3: बिल्कुल बिल्कुल जॉनी भाई बड़ा अच्छा संदेश आपने रखे और मिडल्स आप कितने जो नाटक आदि में अपना धर्म के बारे में धर्म के शिक्षा भी रखे और कहने के तात्पर्य यह है कि भाई हीरा जी ने प्रश्न रखे थे कि विवाह हाँ विवाह कैसे किया जाए तो उसका एकलक जॉनी भाई एक अपार्ट प्रोग्राम बनना चाहिए
0: बनेगा वो होगा
3: बनना चाहिए
0: होगा होगा हो
3: क्योंकि अब देखा जाए कितना लोग है जो साम वोन कर चुके हैं और फिल्म में देखे हैं कि जोड़ा जामा के साथ विवाह हुए तो मन में ये इच्छा होता है वो लोग का कि भाई एक वे लोग केरचे दुल्हा वर्द एक वे लोग केरचे दुल्हीन वर्द पर
0: तू ब्याह करवावे तू सब करवावे मां के लिए
3: भाई हो रहा ना हो
0: या
3: Wij horen en hopen, of kijk, wij leven in de tijd van de realiteit. Niet alles kan, ja. Maar sommige dingen durven mensen niet om daar, dat te benaderen. Terwijl bepaalde dingen wel kunnen.
0: Ja.
3: De kahek gaat hem nakker, jij. Dus er zijn hele leuke dingen die nog... ter sprake kunnen komen.
0: Die kania puja ik baren bolle, bhai Sanjay. Bolle kania keke bolle hega. Kewel in hem kania hai. Jese ki je kania puja Durga Mata ko hai. Mandir mein hoi ga. Mere khayal se wane rishta shanta shanta.
3: Kania puja. Achtste dag. Ashtami ke hoi.
0: Ashtami ke hoi. En wij zijn op de achtste dag. Waar zijn we? We zijn in Soetermeer. Sri Lakshmi Narayan Mandir. En de laatste dag zijn we in Sri Vishnu Mandir in Almere. Toen hoe heb ik kania puja. Toen kania bolle hai jo kania ba. Maar ab u kania barka hui gehega, ab ukar bia hui te hua bab mai kania puja krehe. Wat is de verschil ervan, Sanjay?
3: Er is groot verschil tussen bhai. I he kanch puja. Kania hum loon boli lahia ke, par India me kanch puja. Kanch is onder kinderen or meisjes onder de 9 jaar.
0: Ja.
3: To u mata ke roep me ukar puja hui.
0: Precies.
3: Aur kania joan hum loon boli la, u eigenlijk pau puja hai.
0: Okay.
3: और वो वाला वहां पर ओके लक्ष्मी और विष्णु के रूप में पूजा जाए
0: दिस सो प्रोग्राम इज सो मोई भाई रोई
3: हां भाई हीरा जी ए पे आप भी और कुछ कह सकते हो
1: ना एकदम गहराई में बताओ है हम भी आपसे सीखिला बाकी बहुत अच्छा बात बोले जोन बोले सही बात है ऐसे तो हम जान ही ले ऐसे हम भी सीख लेंगे कुछ
3: हां और खास करके इस पे हमें कुछ और जोर देना चाहता हूं जॉनी भाई
0: मैं एक विल फॉलोइंग द केयर वेल योर कोलीगा फ्रॉम इंडिया ऑन द लाइन हैव दैट इज भैया
5: Rajinder
0: ji, en hij is iemand van India, een hele geleerde persoon. En die bhai ook heel vaak ook interview kare, but ja, ik heb het zoveel geleerd. Ik heb een pitre die was chill raai. Vandaag is de laatste dag, pitre pachke. En ik wil natuurlijk dat je een kleine boodschap in kort gaat uithalen over pitre pachke. Kan je ze ook haar einde hoi aan. En de Rajinder, hoe heet die weer?
3: Rajinder Singh.
0: Rajinder Singh wil ik wel in de uitzending halen om nog in Poetkaria over ons investment te gaan.
3: हम तो ओकर कोस्तवा कुछ और हो जाए भाई
0: बात ना भाई खो जाए
3: शांता जी कोस्तवा तो नहीं और ज्यादा हो जाना है भाई मंगा डॉक्टर के पास बार बार नहीं जाना पड़ता है पर मंगा होता है
1: इलाज करते हो
3: बढ़िया तो इस प्रकार से हम लोग जरूर कोशिश करेंगे वो भी उसे भी अच्छा लगता है कि कार्यक्रम में सहयोग दे सके
0: We hadden net over, je wou toch iets vertellen?
3: Kon je raha bulaigali, bulapa we hem maar.
0: Je wilt toch iets vertellen over, over die Zalibia ke wat je hem op het theater kush toch?
1: Kanya.
3: Ha, maar dat u Kanya or oker bol chukal gel. Or officieel je programma bana yo ap. Viva ke to ome tharal jai sab chiyon na. Ek ke dain me sab chhod de hol jai tab to.
0: Maar nog, molete, ik ga je een vraag stellen. Wat vind je over de misbruik van in Suriname? Jun saban karihanuk. Als announcer wil ik weten. Ik hoef niet als pandit weten.
3: Als announcer, अब देखा जाए कि हमने सुना है आपसे कि कुछ गड़बड़ भाईल है हमने नहीं
0: हम
3: है
0: हमसे सुना
3: पर
0: पर वो या हमारे को प्रदार दी
3: पर पर, पर कौन सी का भाईल है अब देखा जाए कि कौन सी का भाईल है एक नीत अत ऑफिशियल फन पता नहीं है कि चैट जीपीटी से बनाया गया कुछ है या क्या बनाया हुआ ऐसे भी होता है पर कोई भी हम लोग के धर्म पे और जो बेइज्जती करावे तो उस पे हम लोग के मुंह खोलना चाहिए मेरा बस यही राय है
0: भाई संजय ने इंडिया में अगर ये सब मिसब्रेक होता तो वहां पर तो एक सुना है भारत देश में बजरंग दल है
1: जी
0: आप सुने विशाल बजरंग दल के बारे में
1: नहीं नहीं
0: भाई रॉय आप सुने अच्छा कुछ उसके बारे में बता दो भाई हीरा आप
1: ना पंडित का बैठल तो और गहराई में बताइए
0: बता दो
3: भाई जॉनी भाई विशाल जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि आपका इंस्पिरेशन पुराने कलाकारों रामदेव चैतू और हरिदत्त जयराम राम प्रसाद राम खिलावन उन लोग के नाम लिया आपने बहुत अच्छा लगा हमें और इस बात को लेकर के कि कैसे इंस्पिरेशन भेल पर जॉनी भाई जबरदस्ती वही वही प्रश्न करे जो उनकर उत्तर हम ना महिला दे
0: उत्तर पंडित के पास सदा रहे
3: रहे
0: लेकिन कभी कभी वक्त देख कर देख
3: हाँ कभी कभी वक्त देख कर देखो
0: जब अगर जब उत्तर में कुछ कुछ गड़बड़ी है तो मध्य वो मेरे पास और सवाल है आओ पहला बात एक भजन सुना जाए तो अभी आप हम सब आ जाएंगे आज

0: कि राम ही राम हरि शिवालिक का भजन माला भक्ति जिसमें रॉय देवराज ने अपने ढोल से काम किया है और ये सब स्वर्ग यानी हरि शिवालिक का ये भजन सॉन्ग है जो आए दिन में हम चलाते हैं। शनिवार के दिन लाइव प्रोग्राम है, 10 तारीख अक्टूबर है, 5:30 का वक्त है और जिसको आप लोग यानी रेडियो पे सुनते हैं भैया राजेंद्र जी भारत देश से वो भी आज लाइन पे आ गए। आप लोग सबको जानते हैं कि आज आखिरी दिन है हमारे पितृपक्ष के, कल हमारा नवरात्रि शुरू होगा। इसके बारे में भैया राजेंद्र जी से आज संजय भाई सवाल नहीं करेंगे, आज हम सवाल करेंगे और वहां पर भारत देश में वो खिचड़ी खा रहा है बहुत स्वादिष्ट से। तो भाई राजेंद्र जी सबसे पहले आपको हम रेडियो फोन में स्वागत करते हैं, आपसे यही पूछते कि आप भारत में कहां से हो?
1: हिंदुस्तानी रेडियो के सभी प्रोग्राम के श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मैं उत्तराखंड हिमालय से हूँ लेकिन दिल्ली में जॉब करता हूँ और अभी मैं देहरादून में हूँ, सैटरडे संडे छुट्टी होता है। तो आजकल जो बातचीत 15 दिन का पितृपक्ष का कार्यक्रम है उसमें भारत में बहुत सारे अपने पितरों के यानी जो लोग चले गए हैं उनकी जिनको गए हुए 5 साल हो गए हैं उनके बारे में बातचीत करने का आज रेडियो के माध्यम से सब लोगों को मैं बताना चाहता हूं। तो 10 अक्टूबर यानी आज का जो दिन है वो सर्व पितृ अमावस्या है, सभी पितरों के लिए अमावस्या है और इसी के साथ इस वर्ष के पितृपक्ष 16 श्राद्ध का समापन हो रहा है। तो जानते हैं पितृपक्ष क्या है। हिंदू पंचांग के अनुसार पितृपक्ष यानी भादों का महीना है, पूर्णिमा अश्विनी कृष्ण पक्ष प्रतिपदा से

0: तर्पण करते दूध से, तिल से, जौ से, चावल से, बहुत सारी चीजों से। संजय जी जानते हैं इस चीज को। तो अंतिम दिन आज था, आज उन सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का श्राद्ध किया जाता है जिनकी मृत्यु की तिथि याद नहीं होती या जिनका श्राद्ध उनकी तिथि पर छूट गया है, उन सब का आज लास्ट पितृपक्ष है और उसी के लिए लोगों ने आज तर्पण किया है। तो कैसे करते हैं, सुबह स्नान करके सूर्यदेव को आराध्य देते हैं, फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल कुश यानी कुसा और जल का पितरों को तर्पण करते हैं, चावल और तिल से बने पिंड अर्पित करते हैं, गाय कुत्ता कौवा और कीटियों के लिए भोजन निकाले और तथा जरूरतमंद और ब्राह्मणों को अन्न वस्त्र का दान करते हैं। तो इसी प्रकार पितृपक्ष का आज लास्ट का दिन पूरा हुआ। तो कल से शुरू हो रहा नवरात्रि। नवरात्रि जो है 9 दिन तक बहुत जबरदस्त, भारत में इसका बहुत ही, भारत में क्या पूरी दुनिया में महत्व है एंड वो कल से चालू है। तो अभी लोग, पंडित लोग अपना सारे चीज सेट कर रहे हैं, अपना जो पूरा चावल से बनाते हैं और रंग बिरंगे करके कल की तैयारियां आज से ही शुरू हो गई। तो इस प्रकार भारत में नवरात्रि का जो है बहुत ही विधि विधान से कार्यक्रम होता है और मैं चाहता हूं कि सब लोग नवरात्रि में, कुछ लोग फास्ट रखना चाहते हैं तो करें और कम एक दिन रखें या पहले दिन लास्ट दिन रखें, वो बड़ा अच्छा रहता है। नवरात्रि शब्द का अर्थ 9 रातें होती है और ये संस्कृत शब्द नवा यानी नव को नवा बोलते हैं और रात्रि को सत बोलते हैं। तो सत और नव, नव सत से मिलकर नवरात्रि बन गया है। इसका अर्थ है नवरात्रि और 10 दिनों का एक पवित्र हिंदू पर्व। दिन 10 होते हैं लेकिन रात्रि 9 होती है। और पूजा कैसे होती है, इन दिनों में हिंदू धर्म में देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों, 9 दुर्गा की उपासना की जाती है। यह वर्ष 4 बार चैत्र, अषाढ़, अश्विन और माघ में, माघ मास में आता है, जिसमें शरदीय नवरात्रि, अश्विन मास और चैत्र नवरात्रि सबसे प्रमुख मानी जाती है। यह असत्य पर सत्य, अधर्म पर धर्म और बुराई पर अच्छाई की जीत, जैसे माँ दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध का प्रतीक है। क्या आप नवरात्रि के 9 रूपों के नाम से इनके व्रत नियमों के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो इसका नियम क्या है, व्रत क्या है और ऐसे क्यों मनाते हैं, ये जरूर जानना चाहिए। और इसका जो मीनिंग है, 9 दिन फास्ट करके लोगों के जो बॉडी का स्ट्रक्चर है या जो हम लोग रोज भोजन करते हैं और उसमें व्याधियां होती है, तो इसका 9 दिन का मतलब ये कि 9 दिन हम भोजन कम करें, फल इत्यादि लें और जो लोग नहीं खा सकते वो नहीं रह सकते तो 1 टाइम भोजन शाम को करें। तो इससे शरीर जो है, शरीर भी ठीक रहता है और मन बुद्धि सब इसमें सही रहता है। और रात्रि विश्राम, स्थिरता, अंतर्मुखी होने का प्रतीक मानी जाती है। इन 9 दिनों में देवी शक्ति माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की उपासना भी की जाती है, जो हमारे भीतर की नकारात्मक पर सकारात्मक का ज्ञान की विजय का संकेत देती है। नकारात्मक का तो मतलब हमारे जो बीच अंतर, नकारात्मक मतलब जो हमारी सोच ठीक नहीं है, इन नवरात्रियों के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से सकारात्मक हो जाती है, सकारात्मक मतलब सही हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसलिए भी इसका बड़ा महत्व है। तो आप कुछ और पूछना चाहते इस बारे में?
1: जी हाँ, अने इसके बारे में बहुत दैलक, बहुत ठीक से बता दिया भैया राजेंद्र जी। ये आज तो आखिरी दिन है यानी कि पितृ पक्ष के, और ये इसका कोई समय है कि कई बजे वो खत्म होगा और नवरात्रि कई बजे शुरुआत होगा आज?
0: देखो, पितृ पक्ष का जो समय था वो 2:01 बजे के बाद तर्पण नहीं करना था,

0: अच्छा
1: एक मतलब आज का दिन चला है लेकिन तर्पण नहीं कर सकते एक बजे के बाद जो दोपहर में भारत के अनुसार। और जो नवरात्रि है वो कल 11 बजे से शुरू हो जाएगा,
0: दिन को 11 बजे।
1: हाँ
0: सुबह
1: सुबह।
0: अच्छा अच्छा नो यही मेरे सवाल थे साथ भाई संजय के, कुछ सवाल होगा?
2: नहीं मैं तो बस अति प्रसन्न हूँ कि आज आपको हम लोग ने लाइन पे ला पाए। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी, और आपका आवाज़ सभी सुनने वालों सुन करके अति प्रसन्न होंगे क्योंकि आप नवरात्रि चलने वाले हैं और आपका कार्यक्रम तो चलता रहेंगे नवरात्रि के अंतर्गत। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके।
1: बहुत बहुत धन्यवाद फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोताओं को। फिर अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के अनुसार। तब तक के लिए सबको नमस्कार, शुभरात्रि, जय श्री राम,
0: जय श्री राम। तो दोस्तों ये था हमारा भैया भारत देश से, और राजेंद्र जी जो मास्टर राजेंद्र जी जो यानी कि आप उसको सुबह उसका प्रोग्राम सुन रहे हैं, और इसके बाद हम चलते। आप लोग सुना है कि जो पितर पक्ष है दिन के एक बजे के बाद में तर्पण नहीं करना चाहिए, और कल सुबह 11 बजे मोखोक्तम एल फिर बखेन ओंस नवरात्रि क्लब तेरे भाई संजय
2: जी जी जी घट स्थापना हो जाए चाहिए सवेरे, घट स्थापना सवेरे हो सके।
0: वो क्या भाई घट स्थापना?
2: देखो अब जैसे अभी राजेंद्र सिंह जी ने कह रहे थे कि सभी इस समय तैयारी कर रहे हैं क्योंकि घट स्थापना जिसे हम कोई नारियल रखता है, कोई अखंड ज्योत जलाते हैं, और कोई खेतरी करते हैं अपने घर में। खेतरी बोले जो जौ का पानी में फूले के धरे हुए हैं, और वो सबका और कल स्थान मिलेगा।
0: हाँ?
2: और 9 दिन तक उन्हें बस खूब ज्योत जलेगा, श्रीफल का प्रार्थना पूजन होगा और खेतरी में भी जल छोड़ा जाएगा ताकि उसमें से बीज उगे और हरा भरा हमारा जीवन में जैसे हरा भरा वो निकलेगा, किम होगा क्या बोले जव, और इसे हम लोग के जीवन में भी हरा भरा जीवन भी रहे ई नवरात्रि से अगले नवरात्रि तक।
0: बहुत बहुत शिक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपके बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं। तो हम चलते हैं एक गीत के ओर विशाल खावन अवली चेसिंग फिर चुकूत ये भैया ये तो दूसरी चीज बजे है, लेकिन जहाँ काम होता है जाने चौसान को प्लेयर ऑन कर ली है तो एक गीत ना बूते है और दूसरा चलाने लगते। हम जाते हैं उस्ताद कुर्सात और अपने जवानी का राम प्रसाद राम खिलावन की ओर हम चलते हैं।

0: के तोर भरे चकोरा अरे हारी के दंडक तीनी।
1: सुनो अभी आप सुन रहे थे भाई जॉनी जी भी समझा रहा है कि भाई अपने जीवन में कुछ ना कुछ कोई कुछ ना कुछ तो होता रहता है, कलाकारों के जीवन में भी कुछ ना कुछ होते रहते हैं और सुंदर सुंदर गीतों जो हमारे कलाकारों ने और हम सब के लिए कोई कोई अब नहीं है ना ये पुराने गीतों के साथ, तो हम एक सुंदर सा गीत चुन करके प्लेयर पर रखे हुए हैं, देखते हैं कौन सा। जॉनी भाई आप लोग पुराना गायक हो का बोले बोलो जॉनी भाई बोले हम बुढ़वा बना दे ली, ऐसा नहीं है जॉनी भाई, पर देखा जाए कि ये आवाज आप पहचान रहे हो कि नहीं।

0: ये सुंदर सा गीत चलाया गया और यहाँ पर बैठे हुए बड़े बड़े कलाकारों भी, जॉनी भाई भी थोड़ा, और जॉनी भाई भी मुझे लगता है कि आप अभी तक नहीं बता पाए कि किसके आवाज में ये गीत था। और भाई रॉय जो उनके साथ ढोलक भी बजाते हैं फिर भी वो आवाज को पहचान नहीं पाए, तो उसका मतलब है फाहौन में कुछ है। फाहौन में ये है कि जो अभी शायद सुने नहीं होंगे आप, और तो फाहौन से आप उसके साथ और ढोल बजाते हैं। तो श्रीमती सत्या त्रिवेणी और उनकी माँ रामदेव चैतू के माता के आवाज में ये सुंदर सा गीत जो फाहौन हिंदुस्तानी रेडियो से और सुनाया गया। तो दोस्तों और भी सुंदर सुंदर पुराने पुराने गीतों के साथ हम लोग स्टूडियो में बैठे हुए हैं। भाई जॉनी भाई को आप कुछ कहने वाले हैं?
1: जी हाँ, आपने सवाल किया हम सबसे, तो जाने हैं जब आप जो सवाल करेंगे उसको दो सवाल तैयार कर लेते हैं। आपने सवाल किया एक जो अभी जो स्त्री गायक कौन है, लेकिन आपने कहा रामदेव चैतू के माई के बारे में भी कहा
0: जी,
1: उसके आप जानते हैं?
0: मैं नहीं जानता हूँ, पर ये सीधे ही जब बन रहा था ना, क्योंकि अभी हम लोग
1: तो हमें विशाल अपना कान खोलेंगे।
0: विशाल भाई क्योंकि आप अच्छा लगा हमें जब बोले कि हाँ सबसे यौंग है,
1: तो वो नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से, तो आपको हम बताते हैं। जितना बड़ा बड़ा कलाकार जो आज हमारा सुरिनाम देश के हैं, तक तक प्रोसेंस सब लंगड़ाम के हैं।
0: कहीं जॉनी भाई तो लंगड़ाम के तो नहीं है?
1: हाँ
0: ये बात हुआ
1: कलाकार हमारा कहना बड़ा बड़ा कलाकार रॉय के साथ मालूम होगा, और स्नेल रामदेव चैतू राम जगत चैतनु विष्णुवती चैतू ये सब लगा नाम के
2: राजू
1: शिवगला और जितना शिवनंदन है सब शिवनंदन लगा नाम के है, सब शर्मा के भाई
3: सब
1: रामदेव चैतू राम जगत चैतू के नाम सुना भाई अंतरिया पेड़ागल चोर भाई संजय इसके बारे में आपके मालूम था?
0: नहीं जॉनी भाई मुझे नहीं मालूम था इसके बारे में, जरूर आप मुझे ये लंगा डाम पहले ऐसा होता था कि पहले जब कोई कमिसारस वैतन वैख और सीधा चला करके एक रास्ता होते थे जहां ओरी जिसे हाँ फाइव दरे वह नहीं नहीं नहीं कहने के मतलब जॉनी भाई कहने के मतलब ये है कि हम लोग का बचपना था, और बचपना में तो हम लोग को डरवा दिया गया था कि अरे जल्दी स्कूल से निकलिए तो जल्दी आइए, क्योंकि ओरी बस वाला खुरदैन वाला गाड़ी लेकर बच्चा पकड़ते हैं, जबकि एक काबिल अफा था। और ये पर आज तक की इन बातों को अंदर छुपा रह गया कि हाँ अरे जल्दी स्कूल से निकल रहे तो हम लोग पहले तब का क्या होता था कि आम के जब समय होते थे ना जॉनी भाई हाँ, तो अपने घर का आम पसंद नहीं होता था हम लोग का, हम ये नहीं कहता कि पर कहने के तात पर
1: हाँ,
0: और तो देर हो जाता था घर पहुंचते पहुंचते, अब अपना बेटा जो घर देर से पहुंचते हैं तो हम पूछते कि कहाँ रह गए थे, पर हम लोग का भी देर हो जाता था। तो मेरे ख्याल से वो एक माताओं पिताओं ने एक अफवाह बना दिया था कि जल्दी आइए उसे बेसुआ में लड़कों पकड़ ले जाए। हाँ तो हम लोग
1: तो
0: नहीं पर पूरा सरनाम में ये बात ऐसे राजन भाई इस बार तो
4: रेडियो पे भी न्यूज में की अरे काम कर मारी कॉन्करेंट लोग जान के नीचे कर दे वहाँ हम गए लिए, फिर हम स्कूल जा रहे थे, फिर फिफ्थ से गए लिए, हम सीनियर स्तर स्कूल जा रहे थे, तो वहाँ से
0: पर जॉनी भाई हमने कहने वाला था कि पहले कोई उस तरफ रहते थे तो हम लोग सुंदाप रहे ना, तो सुंदाप से यहाँ लिफोर्नो से चला करके वहां उसके घर के पास पास होना था, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर उसे
1: किसी और को
0: किसी पर समय क्या करता है ये तो समय ही जानता है।
1: के बारे में भाई संजय जी ने हमसे ज्यादा और शांता से ज्यादा और यहाँ पे कोई नहीं जानते, सही बात है। यहाँ पर जो ओरी के बारे में जिस तरह हम जानते हैं शायद हमसे ज्यादा शांता जानते हैं यार, कारण कि शांता के घर से बहुत दूर नहीं थे हाँ, और मैं भी वही के है, और एक बारे में हम सब जानते हैं, विशाल विचार ना जाना थे, जिसका पैदाइश नहीं होगा लेकिन शायद सुना होगा विशाल, और एक बारे में जानो किसके ओरी के अंदर
2: नहीं नहीं
1: ओरी जो है फैदर एवेख यानी काबा का जो रुतोंद है आप जानते ना,
0: महारिषि
1: एम ओरी ही मुने दूत उसको
0: अच्छा
1: एक मिला के देखो हाँ बोलिस मुने के एगो लुंडा रहा डाम पे जब प्रचार हुआ भइल है कि वो लड़का पकड़े है तो मुने दारू पी के मुने वास मैं लिफ्टेज कनोल वो कहेंगे संग फुटबॉल अपना डाम से लफो पे प्रचार तो वो गई है ओकर घर पे ढेला भी गए ईटा भी गए ओरी के बस वो निकाल के बंदू से ढड़का दीस बस ओरी लुंडवा मुने हुए गिर के बस मर गए क्लॉप में वैसा था तो हुए मर गए एक सिपाही पकड़ के ले गए थोड़े रुत में छूट गए और ये बोला रहा गांजा और बोले हम गांजा बोली बाटी शंकर भगवान के जटा चरण बनाए ना बोले हम शंकर भगवान के अपन घरवा में से को मंदिर बनाए रहा तो तिनल बनाए रहा ओमा से जाता से वहां प्रचार भले कोई तिनलवा में से बोल जा है लड़कों के पकड़ मातवा स्नीत वार भाई अथवा स्नीत वार बस अलमा खरिख्त हाँ ओके खरिख्त रहा बाकी दांत बहुत विशाल बनाते हुए राजन और मोई जानत हुई हमार सास जहां तरह दान बनवाए शांता से हमसे ज्यादा कोई नहीं जाने तो अब जान के लगा हमारे से बोली रहा भैया
0: सुनो लो शाम के प्रोग्राम है और एक सुंदर सा गीत मैं आज वही विशाल आपके बात सुन करके हमें भी इंस्पिरेशन मिले कि पुराना पुराना गाना क्योंकि ये वाओ ऑन सेदई माँ का तो इस पहले जो कोई प्लात निकाल दे बस भी सुंदर तो सुनते हैं एक और पुराना सा गीत

0: राम जन।
1: सुनो मानो, हमारे कलाकारों जो भारत को छोड़कर के सूरीनाम गए, तो उस समय पे बड़े बड़े स्क्राइफर्स होते थे, बड़े बड़े जो कितना गीत है जो बनाया गया, प्लात बनाया गया, सिंगल बनाया गया, अभी इंटरनेट पे नहीं है, सब चीज नहीं रख पाए सब लोग, कितने जो लस्कान हो गया है, पर कितना बढ़िया बढ़िया टैक्स वाला।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम लोग सुने और ये गीत जो श्रीमती द्रौपदी जी के आवाज में हम लोग के लिए उस समय पे ये पर्चा जो है उसका स्वर त्वेत है, तो जान ले इंदियार शरीफ तक शस्तक के गाया हुआ गीत है। हम एक और गीत के ओर बढ़ने वाले हैं। भाई विशाल जी ने मांग किए है कि कलाकारों में कलाकार हरिदत्त जयराम के आवाज, तो विशाल जी उसके बारे में आप क्या जानते हो? हरिदत्त जयराम जी के कौन सा गीत उसका सुने आपने ज्यादा तादाद में?
1: सबसे बकैन गाना तो बा हवड़ा कटावत लागल देर उसे सुने, ओकरे बाद में दूसर के धनवा खाई के मर जाइए गधा बन के भरिए तो फिर ओकर गाना हंसी मजाक वाला गाना बा जोन कैसे बोले मॉप कोई सुनावे अपनी मुर्गी को रखना संभाल
0: क्योंकि वो पहले वो गाए।
1: हाँ जी,
0: तो फिर उसके बाद में कितना आदमी ना सिंह करी से और यहाँ तलक की बॉलीवुड तलक की गाना हमें सुनाया गया। पर उसे हम लोग अब द लास्ट यार फोर दाती ओवर लेट वास ए फर्स्ट बसुकर फन मंदिर और हम लोग खूब प्रेम भाव हो गया रहा, तो इतना अच्छा लगा था। और कभी कभी ये प्रश्न एक बार ये रख दिया कि एक गाना में उन्होंने भंवरा के बारे में पहले भंवरा के बारे में कुछ बताइस कि ना, तो ये प्रश्न रख दिए रखा था उससे कि ये उसका मतलब क्या है, तो उन्होंने उल्लेख किया था कि क्यों भावरा क्या चीज है। क्यों ना एक गीत के ओर बढ़ेंगे तो अबे शायद जॉनी भाई उस वो भावरा का वृतांत हम सबको सुनाए शायद।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत हम सुने और ये सुंदर सा गीत हम सुने हरिदत्त जयराम की आवाज में, हरिदत्त जयराम की आवाज में ये सुंदर सा गीत हम लोग को सुनने को प्राप्त हुआ। भाई रॉय जी, माइक्रोफोन थोड़ा अपने और ले लो, क्योंकि माइक्रोफोन में कुछ ना कुछ और सुनाना, क्योंकि बचपन में उस समय बचपन था तो आपने भी सुसुकी खरीदे थे ना?
1: मेरे पास एक सुसुकी रहा भाई, और सुसुकी हम इतना ओके अफोर्ड कर ले रहे हैं, हम लोग अफोर्ड कर रहे कर सिलेंडर हाँ। सिलेंडर ये पर बुशी वाले हाँ हाँ हाँ। ओके सफाफा करके लगे ली थे हमारे हबड़ा में, वो रहता रहा रमौता रे लौंडा लग नाम के बात हो गई है, जिसे हम बोले हैं सुरेश रामोतर जहाँ ब्लॉक तकवा बगलिया में। देखो ढोलक रहा भैया रोई हम जाते ढोलक छवावे राम रतन लगे हुआ देवी साहब ते पीछे ब्राउन पे बैठल एक हाथ में ढोलक और एक हाथ में खांसी के चमड़ा पकड़ी से
0: हाँ।
1: और मुरम के खास दे दी पचवा तक गिर के मुरम नहीं जाएगा के भाई ये काम चल रहे ना लौट के रे गोड उठाए के एक हाथ में ढोल एक हाथ में तो सुखसुखी बड़ा क्रख था जीती से मैं बोला था तो जीती एक है पर लोग ब्रह्म खाते के फाकर सिंदाप खाता है एक लग बाप के हम किन रही बाप के नामों पे मुड़िया माई बतावे दियाल दिहाल बाप के नाम तो दिहाल के को तुई फी ब्रोफिस रहा और ब्रोफिस वहाँ होकर इस तो ब्रोफिस हम किने रही ब्रह्मा ढकेल के ले ली घर में एक बार मोन्टूर है भाई फासिंदा हम ते घंटा दो घंटा मशीन खोल के सब्सिडी करके ब्रोफिस चलावे लग ली
0: इतना चतुर रह लो
1: एक बार हिल रसले वसुंधा भाई तू चिराग बता दे हम लोग का मशीन ऊपर हाल कर दे वो पर हम लोग के साक रहा बगलिया में तो जहाँ पे तो काका रहा तो हुआ पे हम लोग के ब्रोफिस के साथ रखा ली सुंदाप के हम छोटे पसे ब्रह्मा बनाई बनाई इक्वेट आलस फॉर सुंदाप
0: तो रॉय भाई कहीं आप सुसुकी पे कहीं गिरल विरल थोड़ा रहा ना कुछ बताओ ना उसके बारे में तनी से संदेश क्योंकि पहले पहले ये बताओ कहां पर पहले बेचाता है ये सुसुकी
2: प्रभु सेंटर
0: परभु सेंटर क्वाटावेक और हाई द फ्रिज भी मंगा होता ना
1: मैंने द फ्रिज मंगा था पीछे
2: हां मां हुआ किले रे हम लोग चार गो चार नतीन भाई पहला वाला हमार वही रोज एक रोज बाद आज के लिए हम लोग बयान बनो के लिए करे बेल बेल अस्पराग भाई ने कि बयान आइए यहां पैसे दे चले कोई प्रोस करे
0: हां
2: क्वाटा में हम लोग गए वो चिनो दुकान में रुक ली जैसे हुआ रुक ली तब लोग गए भीतर लौट के लिए मां ब्रोना है
0: इतना मकलक रहा पहले
2: रहा उन्हें वो कर जो अपना है सहवा को ही कमा रहा था
0: ओके ओके
2: महाराज इस खाली बिहार में गली फिर पर दूसरे चले गए तो फिर एक दूसरे दिन ऐसे ऐसे तीन को चले गए
0: तीन को
2: हाँ तीन नवे नवे
0: तीन को
2: खलक ना रहा लास्ट वाला एक उच्चर वाले भी वो से खलक रहा मैं छोड़ के चला ली यहाँ
0: छोड़ के चला लो यहाँ
2: अच्छा
0: अच्छा एक और गीत के ओर बढ़ेंगे और कलाकार जिसका नाम अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे राजू शिव गुलाम के आवाज में
3: हमरे गांव

हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राण में आखिरी प्राण बस आखिरी एक लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके, हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देनहाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

Hallo morgen, ja. Hem aan Suriname toe je gaat ko. Aur je chalaye he, gaye he. Mohammed Sharif Izaak ne. Hamare yaro, hamare dosto. दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहां चलते हैं, ये कहां अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरी दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

दोस्तों मूवी के नाम थी शोले शोले एन शोले का जीपर एन जीपर एन जीपर हिट फिल्म थी। आज आप लोग को हम ओल्ड एंड गोल्ड रीमेक सॉन्ग

और क्या भी खूब लगते हो, खूब खूब लगते हो, और कौन कौन खूब लगती हो, खूब लगती हो। फिल्म का नाम है धर्मात्मा रेमिक्स। रेमिक्स सॉन्ग हम लेकर आते हैं हमारे यारो, बस सुनते रहो, सुनते रहो। खनी तरफान वहां सामा खनी दुख

0: मूवी का नाम है, मूवी के क्या नाम है अभी बताएंगे। सॉन्ग का नाम है ये पर्दा और हटा कर अपनी मुखड़ा को दिखा दो ना,
1: पर्दा हटा दो

It is Johnny number one's time. And Johnny's Johnny Boy's time, man. और दोस्तों आप जानते हैं, आप जानते हैं, आज नाचना जरूर।

0: हेर हेरी, उसके बाद हम चलते हैं, क्या चलते हैं, कहां चलते हैं, रेडियो फाउन में चलते हैं कि मेरे महबूबुआ और कयामत हुआ और कैसे होगा, कैसे नहीं होगा।
1: Shot Carewall on the beat.
0: And beat.

मत होगी। एंड दिस इज अ रीमेक्स सॉन्ग। आओ चलते ओरिजिनल, ओरिजिनल में कैसे है।

रमदान योगी के बाद हम और कहां जाते हैं जब किसी से प्यार हो जाता है तो इकरार भी करना चाहिए।

प्यार प्यार हुआ है, इकरार भी हुआ है, और जब प्यार होता है तो डरना मत चाहिए, जो डर गया समझो मर गया। और प्यार से कभी कभी डरना मत, वैसे स्टर्क तो बेंस और जब घाम हो गया, जब घाम निकल गया, धूप निकल गया, तो छैया छैया चलना चाहिए।

और छैया छैया चलना, यारे मौसम मौसम मौसम, चाहे श्रीनाम में चाहे यहाँ पर, घाम में मत चलना, धूप मत चलना, नहीं क्या होगा, छतरी लेकर चलना। और छैया छैया के बाद हम चलते हैं, अगर तुम्हारा दिल किसी पे आ गया और किसी ने जो आपको पुकारते हैं तो क्या करना चाहिए, हम बताते हैं क्या करना चाहिए।

यहां से पुकारते हैं कि आ जाना। और अगर आपको प्यार हुआ, दिलदार हुआ किसी परदेसिया से, तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। चाहे आपकी परदेसिया यहां हो, डेनहाग में, अमस्टरडम, यूट्रेख्ट, ग्रोनिंगन, पारामारिबो, सरमक्का, निकेरी, जहां भी हो अपने परदेसिया को याद करना, जरूर करना। दिस इज जॉनी नंबर वन प्राइम टाइम।

Oho!

और अनीसी अनीसी अनीसी और उसकी तो आए बाहर और जाने से क्या होगा रे बिग सॉन्ग ओह नहीं चिमन से और होते हो पेज कभी किसी को चूम नहीं लेना किसी बात करना होठों से तो क्या होता है।

0: सीने में सुलगते हैं अरमान। एक बार फिर जगदीप सिंह के आवाज में दोस्तों आप सुनेंगे कहीं दूर जब दिन ढल जाए।
1: प्रोबेशन
0: क्लोज टू माय हार्ट का सिलेक्शन है।

सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। अब की बार दोस्तों मैं चला जाता हूँ श्री नामदेश, वहां पर रहता है उस्ताद जॉनी बच्चू। और जॉनी बच्चू क्या फरमाएंगे, जिस दिन जिस दुनिया से नफरत मैंने खोजा है दोस्तों, और कई सिलेक्शन मैंने पाया है, और सभी सिलेक्शन में से मुझे ये गीत सबसे अच्छा लगा, तो मैं सोचता हूँ आप सभी से मैं ये गीत बात लूँ जॉनी बच्चू के आवाज़ में।

वाह क्या आवाज है मिस्टर जॉनी बच्चू के आवाज में भी आप गीत को सुना रात कली। ये रात का कली कभी जो है जो वो कभी कभी सोने नहीं देते हैं, फिर भी ख्वाब में आए हैं।

रात्रि कली तो वादा किया है एक बार फिर खाब में आने को। दोस्तों आपको सिर्फ सोना पड़ेगा, रात्रि को आग बंद कर लेना तो रात कली जरूर आ जाएंगे आपके ख्वाब में। ये दिल का रिमिक्स है लेडी संजना एंड मिस्टर मुका।

जब हम सड़क पे चलते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कभी कभी लिफ्ट में, कभी कभी सुपर मार्केट में भी, बहुत अजनबी लोगों से मुलाकात होते हैं, लेकिन एक अजनबी हसीना जब मिल जाता है तो क्या बात हो जाता है।

प्यार का नखमा है। प्यार तो दुनिया में कई लोग ने किया है, सभी कोई प्यार किया है। प्यार चांदन ने किया है, प्यार नली ने किया है, प्यार विद्या ने किया है, प्यार आशा ने किया है, प्यार रोशन ने भी किया है।

प्यार का नगमा है जिंदगी कुछ भी नहीं, जिंदगी कुछ भी नहीं सिर्फ तेरी मेरी कहानी है। इन हवाओं में, इन फिजाओं में तुझको मेरा प्यार पुकार। रिमिक्स सॉन्ग।

लफ्जों के है दिल की कहानी, दो लफ्जों की है दिल की कहानी, दीपावली सुमैया की आवाज में।

0: की कहानी, दिल की कहानी के बाद दिल की चैन है दोस्तों। ये दिल का चैन है जो है, ये कब मिलता है? जब दिल खुश रहता है, जब प्यार हो जाता है तो दिल खुश रहता है वगैरह वगैरह। लेकिन जब दिल को चोट लगता है तो ये जितना चैन है सब चला जाता है। इसलिए दिल का चैन जो है, हमेशा जोड़ते रहना, साथ रखना और कभी मत छोड़ना।
1: अपनी बहुत ही मेलोडियस आवाज में वो एक नहीं बल्कि अनेक गानों की कुछ प्यार की, अभी गाना भी ए पे है बराबर, तो हमें बहुत फक्र है कि मैं सुर लगाना, वो जो कॉम्प्लीमेंट किया कि आपने सब you.

0: प्यार करे मुझसे, प्यार करे मुझसे इजहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता क्या हो तेरे वादा डर भरे गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत आप सभी के लिए माइटी मुकेश तैयार हो गया है। मैं राही भटकने वाला हूँ, क्या जाने मटवाला हूँ।
1: मैं कौन हूँ,

0: सलाम।
1: छुपाए दिल में अजब सा गुवार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। छुपाए दिल में अजब सा गुवार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें सब काम याद नहीं। जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो, जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो। जो बर्बाद हुई उन्हें कोई हिसाब नहीं।

से तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं के बाद आज की रात मेरे दिल की सलामी ले लो।

जताना ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्ते दिल से निभाना जरूरी है।

आवा तेरवारा दर भर गीत ब्रोकनहा सॉन्ग के प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में गुजर जाती है जो मकान वो फिर कहीं नहीं आते। किशोर दा के मीठी आवाज में आपकी कसम फिल्म के नाम है

सबसे ज्यादा हिट फिल्में वाले स्टार्स के लिस्ट में शाहरुख, सलमान या आमिर के नाम नहीं आती है।

चलिए बताते हैं आपको इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मी देने वाले टॉप स्टार्स के बारे में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्रा 80 के दस्तक के सुपरस्टार है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में में काम किए, जिनमें 237 फिल्मों में लीड रोल में नजर आए। इनमें 93 तक फिल्मों में बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुए। धर्मेंद्रा के बाद दोस्तों आती है वो कौन हो सकता है। मैं गीत पेश करूंगा, आपको जरूर मालूम हो जाएगा कि वो कौन है।

मिंद्रा के बाद इस लिस्ट में जितेंद्रा के नाम आता है। जितेंद्रा ने अपने कैरियर में 209 फिल्मों में काम किया, जिसमें 69 हिट रही। और जितेंद्रा के बाद दोस्तों वो कौन हो सकता है,

लगातार फ्लॉप फिल्म के चलते परेशान रहे। अमिता ने करीब 200 फिल्म से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और अमिताभ के बाद दोस्तों आप जानते हैं अमिता का 96 फिल्में जो हिट रही, और अमिताभ के बाद वो कौन हो सकता है।

आपके बाद मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन ने करीब 208 फिल्मों में काम किया, लेकिन इनमें 68 अर्थशास्त्रक फिल्मों हिट रही। और आप जानते हैं मिथुन जब फ्लॉप फिल्म का नाम आप लेते हैं तो मिथुन का नाम लिए, इसलिए कि मिथुन के ज़्यादा ज़्यादा फिल्मों फ्लॉप हुए, फिर भी डिस्को डांसर से आत्मिक रोजुद है जानते और पहचानते हैं। दोस्तों घड़ी की ओर देखता हूँ तो प्रोग्राम जारी है, कोई बात नहीं है, लेकिन ना घड़ी की ओर देखना चाहिए, और घड़ी जब न है तो जिंदगी अभी नहीं, तो जिंदगी तो घड़ी चलता है। लोग जो सुबह सुबह जागते हैं तो पहला काम बहुत से लोग है घड़ी ताकते हैं कि कई बजा है, तो मैं घड़ी अभी देख लिया है, कोई बात नहीं, और आप भी घड़ी देखते रहना।

रगड़ी किशोर कुमार ने फरमाई है कि जिंदगी के सफर में जो गुजर जाती है मकाम वो फिर नहीं आते, और सच है दोस्तों जो मकाम गुजर जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते हैं। ये जो जिंदगी है, जो समय के पहिया है, ये चलता रहता है। किसी ने खूब कहा है कि जो उबता है वो ठलता है, समय का चक्र चलता है, अरे मानव संभल के चल, समय करवट बदलता है। पेश करते हैं एक और सुंदर संगीत।

0: प्यार करे मुझसे, इजहार करे किसी और से, खुदा करे जिसे उसे हार करे वो भी प्यार करे किसी और से। आरंभ होता क्या होते डर भरे गीत ब्रोकन हार सॉन्ग का प्रोग्राम। पहला डर भरा गीत आप सभी के लिए माइटी मुकेश तैयार हो गया है। मैं राही भटकने वाला हूँ, क्या जाने मटवाला हूँ।
1: मैं कौन हूँ,

पाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। छुपाए दिल में अजब सा गुहार बैठे है, न जाने कैसे तसाबुर में यार बैठे है। मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं, मोहब्बत मुकद्दर है कोई ख्वाब नहीं। ये वो अदा है जिसमें सब काम याद नहीं। जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो, जिन्हें पन्हा मिले उन्हें उंगलियों पे गिन लो। जो बर्बाद हुई उन्हें कोई हिसाब नहीं।

से तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं के बाद आज की रात मेरे दिल की सलामी ले लो।

जताना ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, ना जताना जरूरी है, ना ही बताना जरूरी है, सिर्फ रिश्ते दिल से निभाना जरूरी है।

क्या हुआ तेरे वाला दर भर गीत बुरुकन्हा सॉन्ग के प्रोग्राम में एक आखिरी सॉन्ग जिंदगी के सफर में, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान वो फिर कहीं नहीं आते। किशोर दा के मीठी आवाज में आपकी कसम फिल्म के नाम है

चलिए बताते हैं आपको इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा सुपरहिट फिल्मी देने वाले टॉप स्टार्स के बारे में। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्रा 80 के दशक के सुपरस्टार है। उन्होंने 300 से ज्यादा फिल्में में काम किए, जिनमें 237 फिल्मों में लीड रोल में नजर आए। इनमें 93 फिल्मों में

बॉस ऑफिस हिट हुए, हिट सबीट हुए। धर्मेंद्रा के बाद दोस्तों आती है वो कौन हो सकता है, मैं गीत पेश करूंगा, आपको जरूर मालूम हो जाएगा कि वो कौन है।

मिंद्रा के बाद इस लिस्ट में जितेंद्र के नाम आता है। जितेंद्र ने अपने कैरियर में 209 फिल्मों में काम किया, जिसमें 69 हिट रही। और जितेंद्र के बाद दोस्तों वो कौन हो सकता है,

जोशो जितेंद्रा के बाद लंबू डारा अमिताभ, अमिताभ बच्चन आज भी फिल्मी दुनिया में एक्टिव है। एक दौर में लगातार फ्लॉप फिल्मों के चलते परेशान रहे, अमिताभ ने करीब 200 फिल्म से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। और अमिताभ के बाद दोस्तों आप जानते हैं अमिताभ का 96 फिल्में जो हिट रही, और अमिताभ के बाद वो कौन हो सकता है,

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर एनातिलक उक्त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में यारो। एनातिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो ऑर्गामन हो और वुमन भी हो सकते हैं, या तो इवेंट और खनिसात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश है अपमात पर हम लोग बना कर जितनी बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से अव्वल सस्ता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, एंड खास करके फॉर ऑंडर नेमर्स है वो हेल स्कर्प प्राइस इन द अनबिडिंग ओक इन फरबंक में रक्षाबंधन कंटी इन हाफ यूच ऑफ एन यूच फाइनेंस प्रोग्राम स्पॉन्सर जोर तौर से ये आधा घंटे में या तो एक घंटे में आपके व्यापारी के बारे में जोर तौर से हम लोग रिक्लाम भी बनाएंगे और एक से एक रक्षाबंधन भाई बहन के प्यार के बारे में नगमाएं चाहते रहेंगे। तो सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें अपने सीफन तक पर, या तो आप तार करें अपने 70-365-2247 पर। जो भी रेडियो का काम हो, देंक अन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, खास करके आने वाले रक्षाबंधन के उपलक्ष पे आप 1, 2, 3, 4, 5 नगमे भी फरमाइश कर सकते हैं अपने प्यारे प्यारे बहना या तो अपने प्यारे भैया के लिए। तो देंक अन स्कर्प प्राइस बाय फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो एम फरबंध में रक्षाबंधन। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार, रिक्लाम बनाते रहना है, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और इसके लिए हमारे फुल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बिनती नोखिन लित फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में बैलेट एनस कंटोर यूरो अपने 70-365-2247 पर, या तो आप तार करें अपने 70-365-2247 पर। तो आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और ओ को भी बनाए। वर्ण के मुताबिक एक दम बढ़ते हैं कार्यक्रम के ओर, और बीते हुए हफ्ते हम लोग पहुंच चुके थे फिल्म आवाज तक, जो रिलीज किया गया था इन निगरीन सेशन 5 तक में। और इस फिल्म में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है मलकाए हुस्न, नालिनी जसवंत जी के साथ, संगीतकार सलील चौधरी के साथ और लेखक शैलेंद्र और प्रेम धवन के अल्फाजे। तो एक आखिरी बयान रह गया था सुनाने के फिल्म आवाज नीतिन सेशन 5 तक, वो तुरंत मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय माएस्ट्रो सलील चौधरी, और लेखक है शैलेंद्रा।

ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय लता मंगेशकर जी फ्रॉम द फिल्म आवाज नहीं नया फिल्म तूफान और दिया 1956 वसंत देसाई के साज पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं फ्रॉम द सेम मूवी तूफान और दिया 1956। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार काम किया है ब्यूटीफुल एक्ट्रेस नंदा जी के साथ और कॉमेडियन राजेंद्र नाथ भी इस फिल्म में काम किए हैं। तो उसी मूवी में से ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे। पिया ते कहाँ गयो नेहरा लागे।

0: ब्यूटीफुल सॉन्ग पिया ते कहाँ गयो नेहरा लगा एक फिल्म तूफान और दिया 1956 महान संगीतकार वसंत देसाई के साज लेखक सैंट मीराबाई का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है यारो अति सुंदर प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ओल्ड इज गोल्ड गीत और गजल नामक कार्यक्रम और नगमे आप सुन रहे हैं फिल्म तूफान और दिया 1956 राजेंद्र कुमार का ये स्पेशल प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। मेरी छोटी सी बहन ब्यूटीफुल सॉन्ग और इस बार पुराने जमाने के मशहूर गाने वाली गीता दत्त जी और साथ दे रही है क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी वसंत देसाई के साथ पर हसरत जयपुरी के अल्फाज कुछ डायलॉग के साथ।
1: खुश होना देखा चाचा जी अभी से

Beautiful song Nirmal Selarai Balwan की एड फिल्म तूफान और दिया पद्म भूषण मन्ना डे जी की आवाज में। अगला बयान, निगाहें नीचे किए सर झुकाए बैठे हैं। ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी तूफान और दिया, शमशाद बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में, वसंत देसाई के साथ।

Wat hey, mezidar song uit de film Tufana Ur Diyani 56. Ayare ayare bhaji wala purani zamane ka mashhoor gane wali the great Geeta that ji ki beautiful awaaz me. Listen this I ki saaj. Tumhari pipri shrutao film Tufana Ur Diyani ka ek aakhri bayan aap sunenge. एक बार फिर मशहूर गाने वाली द ग्रेट गीता दत्त जी भरत व्यास के साथ और सुनाती है आप सभी को दर्द से भरा हुआ पुकार की मेरी आन भगवान.

आन भगवान दर्द से भरा हुआ पुकारे, एड फिल्म तूफान और दिया आखिरी सॉन्ग इस फिल्म का, और बड़ी दर्द से भरा हुआ गला, क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग सुनाया आप सभी को गीता दज्जी वसंत देसाई के साज पर। हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी नगमे फिल्म तूफान और दिया मैं आप सभी को सुना चुका, तो अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद लेकर चलते हैं एक जबरदस्त मूवी के ओर। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, गर्मी का मौसम है, आप भी जाइए कुछ ठंडा पीजिए। ब्रेक के बाद मिलता हूँ, कहीं जाना मत।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुने द प्लस रेडियो पर है नतीलक ऑक्टोबलाइस्ट्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन एफएम चैनल पर यह कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। नतीलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स अंत बदंत एंड लोबी लोबी जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से जरूरी खबरें या तो अपने व्यापारी के बारे में या तो आप जो ऑर्गेनाइज करते हैं इवेंट उसके बारे में जरूर कॉमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो। सभी जानकारी op 070-362-2077 bellen tijdens kantooruren, ja, op daar krijg op 070-362-2047. Zo bij Radio Kakamo, denk aan Fahun Hindustani Radio. Is het aan? इसी तरह हम लोगों के बारे में बातें शातें करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू और इसके लिए तह दिल से धन्यवाद। और ये भी हमारे फुल टीम की तरफ से हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए। बेलटेडेंस कंट्रोल इसके बारे में op 070-362-2077। अब लेकर चलते एक जबरदस्त मूवी जो रिलीज किया गया था 1957 में, द फिल्म मदर इंडिया, जो दुनिया भर में काफी हलचल मचाया था 1957 में। वर्ल्ड वाइड लोगों ने बहुत ही पसंद किया था इस मूवी को। तो उसी फिल्म में से आप नगमा सुनेंगे, प्रोड्यूस बाय महान प्रोड्यूसर और डायरेक्टर श्री महबूब खान। तो मिल के सुनते हैं नौशाद अली के साँच पर, पी के घर आज प्यारी दुल्हनिया चली। श्रोताओं को मालूम होना चाहिए ये फिल्म मॉडर्न इंडिया में राजेंद्र कुमार जी ने काम किया है महान अभिनेत्री मलकाए हुस्न द ग्रेट नरगिस जी के साथ, अभिनेता सुनील दत्त, राजकुमार, राजेंद्रनाथ, कन्हैया लाल और कुमकुम एंड ऑर्डर्स। तो उसी फिल्म में से नगमे आप सुनेंगे क्वीन ऑफ मेलोडी देखा जाए, और शमशाद बेगम जी के उस जमाने का क्वीन ऑफ मेलोडी शमशाद बेगम जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं के सेवा में मिलकर सुनते हैं।

Matwala Gia Dole Pia, beautiful song from the movie Mother India, composed by Mahan Sangeetkar, the great music director Naushad Ali ke saanch par ye cheez sundar bayan aap shrotao ne suna Ravi saab aur Lata ji ke awaaz mein. To yaar kuch shares ho jaye na hamare shares ke chahne walon ke liye, कुछ दोस्तों के बारे में शेर से लिखकर भेजा है यारों का यार जिगड़ी दोस्त भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सिटी. अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी ने कि आंख तो दोस्ती में दिल की जुबां होती है, आंख तो दोस्ती में दिल की जुबां होती है, दोस्ती में दर्द मिले तो क्या घबराना, सुना है दर्द से दोस्ती जवान होती है, टूटे हुए फूल खुशबू दे जाते हैं ना. रिश्तों की किताब का कॉफर है आपकी दोस्ती, आपकी दोस्ती से बनी है हमारी हस्ती, कौन खून के रिश्तों की बात आप करते हैं, हमारे लिए तो जिंदगी है आपकी दोस्ती. फूलों से खुशबू चुराई नहीं जाती, सूरज से रोशनी छिपाई नहीं जाती, कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम, कितनी भी दूर क्यों ना हो तुम दोस्त, दोस्ती में आप जैसे दोस्त की दोस्ती भुलाई

बी मुश्किल नहीं दुनिया में कुछ भी, फिर भी लोग अपना वादा तोड़ देते हैं। अगर दिल से हो रिश्ता और सच्ची हो दुआ, अगर दिल से हो रिश्ता और सच्ची हो दुआ, तो सितारे भी किसी के लिए खुद को तोड़ देते हैं। क्या दोस्त, ऐसी तड़प है जो दिल से नहीं निकाला जाता, दिल में छुपी आग को भुलाया नहीं जाता। कितनी भी दूरी हो दोस्ती में, कितनी भी दूरी हो दोस्ती में, आप जैसे दोस्त को भुलाया नहीं जाता। भूल के सभी हमें भी याद किया करो, प्यार नहीं तो शिकायत ही किया करो। इतनी भी गैर ना समझो कि बात ही ना किया करो। फोन नहीं तो ऑफलाइनर ही दिया करो यार। आखिरी शेर आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में यारो, दोस्ती में दोस्त को कभी भी तन्हा नहीं करते। एक बार जिसे दोस्त बनाया उसे पराया नहीं समझते। दोस्त में रुसवाइयां तन्हाइयां नहीं, खुशियां है। होती तो क्या हुआ मेरे दोस्त जो रोज हम तुमसे मिला नहीं करते। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अगला बयान फ्रॉम द मूवी मॉडर्न इंडिया 1975 नौशाद अली के सांच पर एक बार फिर शमशाद बेगम के ब्यूटीफुल आवाज में। गाड़ी वाले गाड़ी, जरा धीरे से हकियो।

चुनरिया कटती जाए रे, पद्म भूषण मन्ना डे जी के ब्यूटिफुल आवाज में फ्रॉम द मूवी मॉडर्न इंडिया कंपोज बाय नौशाद अली।

तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, वक्त भी धीरे धीरे करीब आ रहा है आप सभी से विदा लेने के, लेकिन उससे पहले आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में एक आखिरी बयान आप सुनेंगे। एड फिल्म मॉडर्न इंडिया, एक बार फिर शमशाद बेगम, रफी साहब, आयशा भोसले और मन्ना डे जी के आवाज़ों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे।

दुख भरे दिन बीते रे भैया। अति सुंदर बयान शमशाद बेगम, रफी साहब, आशा जी और मन्ना दे जी के मधुर आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म मॉडर्न इंडिया 1957, म्यूजिक अरेंज एंड कंपोज बाय माएस्ट्रो नौशाद अली। हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का मेरे हिस्से का कार्यक्रम जो समाप्त होने को आया। प्रोग्राम साथ देने में आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं को तह दिल से धन्यवाद। ये आशा उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं यारों की जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप श्रोताओं को सेवा करने में, मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा।

दोस्तों प्रोग्राम की शुरुआत संदियों से करते आ रहा हूँ, वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। फ्रॉम द मूवी ललकार 1926 कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी। क्या गालो मुस्कुरा लो, महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा। जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यारो, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसीलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते आ रहे हैं कि हैब त्यू नास्ताल तजलीफ, कंधे से कंधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है यारो, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे पुराने जमाने के महान संगीतकार, गायक और प्रोड्यूसर दवान एंड ओनली माएस्ट्रो मदन मोहन जी के कुछ बनाए हुए नगमे लेकर आया हूँ। और उसके बाद आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन फिल्मों में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए है। बीच में कुछ ज्ञान के बातें हैं, शेर शायरी भी है, तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना, जहां पर भी हो, जी साल में हो, फाहुन हिंदुस्तानी जो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। रवि साहब

फिलेस जालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत मेरे श्रोताओं, आज का इस हसीन प्रोग्राम का शुरुआत करता हूं हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का महान गायक द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में और महान संगीतकार मदन मोहन जी के साथ है जिनका स्पेशल आप सुनेंगे। और लिखा है ये अति सुंदर बयान एवरग्रीन सॉन्ग को राजेंद्र कृष्ण जी ने, महान लेखक। मिलके सुनते हैं बेरहम आजमा मेरी मंजिल बता है कहाँ, अ मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग। ये महान संगीतकार जिसके हम बहुत ही तारीफ करें, जितने भी तारीफ करें कम है। मिलके सुनते हैं।

The man with the golden voice, Talat Mahmood, ji ke madhur awaaz mein ye teen darbiyan aachotaoni suna, composed by Maestro Madan Mohan from the movie Bahana 1960, and the song is written by Rajinder Krishan. Found in the Stani Radio pe aap tune hai yaro, Geet aur Ghazal Old is Gold, Sangeet Karo ka Daastan nam karyakram aap sun rahe hai. और महान संगीतकार मदन मोहन जी के कुछ नगमे चल रहे हैं. अगला बयान आप श्रोताओं की सेवा में एक बार फिर द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी के मधुर आवाज में ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आसियाना. मदन मोहन जी के साक्ष पर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान मैं पागल मेरा मनवा पागल. आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम शामी गजल

Beautiful song from the movie Asiana, mai pagal, mera manua pagal, Shami Ghazal. The man with golden voice, Talat Mahmood ji ke madhur awaz mein ye sundar bayan aap shrotaon ne suna. Composed by Maestro Madan Mohan ji. Ek aur ye sundar bayan aap sunenge. और इस बार लाते हैं प्रोग्राम में शुरू का देवी भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में साथ दे रहा है द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी फ्रॉम द मूवी पकत मार कंपोज बाय मदन मोहन जी अ ब्यूटीफुल डुएट ये नई नई प्रीत है

अति सुंदर बयान सुना दिया आप सभी को भारत रत्न सूर्य का देवी द क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी, साथ दे रहा था द मैन विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद जी फ्रॉम द मूवी पॉकेटमार कंपोज बाय माएस्ट्रो मदन मोहन। अगला बयान सुनाने को जा रहे हैं, कुछ अल्फाजे भी आप सुनेंगे महान गाने वाली सुरका देवी लता जी का, और अपने ही अंदाज में वो तारीफ कर रहे हैं अपने बड़े भैया मदन मोहन जी का। ऐसा ही रिश्ता था ये महान संगीतकार और लता जी के, क्योंकि हर रक्षाबंधन के दिन लता जी अपने बहनों के साथ जाकर ये महान संगीतकार को राखी भी बांधते थे।

अति सुंदर बयान आप सुने क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न सुरुका देवी लता जी के मधुर आवाज में और अपने ही अंदाज में कैसे वो ये महान संगीतकार का सम्मान कर रही थी और साथ ही साथ महान फनकार के आवाज भी आप सुने और आपको तो मालूम हो चुका था कितना जबरदस्त गायक वो भी था। तो अब आप सुनेंगे मदन मोहन जी के एक बनाया हुआ धुन और आप सुनेंगे कैसे वो एक नगमा को कंपोज करते थे और अंत में उसका धुन कैसे वो बनाता था। आज सोचा तो आंसू भर आए।

आज सोचा तो आंसू भर आए, तो आप श्रोताओं ने सुना किस अंदाज से वो ये धुनें बनाते थे अपने साथियों के साथ, और अनजाने में स्टूडियो में ये रिकॉर्ड हो गया। अगला बयान एक और अति सुंदर सॉन्ग आप सुनेंगे, मदन मोहन जी के बनाए हुए ट्यून्स, और उन्हीं के आवाज में दिल ढूंढता है।

फुर्सते रात दिन बैठे रहे तसव्वुरे जाना।

आइड फिल्म दस्तक। तो हमारे प्रिय श्रोताओं, ये तक था आज का स्पेशल मास्टरो मदन मोहन जी का, जो समाप्त होने को आया। अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो, कहीं जाना मत।

पवन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्रेस रेडियो पर एन ओक नैतुरलक ओक त बलैस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM चैनल पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। नैतुरलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बुद्धंत हैं जहाँ पर भी हो, जिस हाल में हो, घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो, दुनिया के जो भी कोने में कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे। और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ दिन प्रकट हो मैं थिल फील लश्तर प्लजीर के साथ। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो ऑर्गा वुमन हो इवनमेंट और खनिशात और तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से जरूर ऐलान कराना यारो। तो देखना कैसे चमककार पे चमककार हो जाएगा, शायद आपका धंधा भी जल्द से जल्द चलना शुरू कर देगा। और आपका ये जो शोस वगैरह है तमाम लोग सुनते हैं ना फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को, तो जरूर आप के शो जो आप ऑर्गेनाइज करते हो उसमें चार चांद लग जाएगा यारो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी स्टार्ट बाय ऑन्स ऑफ द एस्ट प्लस। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं द प्लस के लहरों द्वारा, वर्ल्ड वाइड इंटरनेट के लहरों द्वारा। तो आपका जो भी रेडियो का संदेश है तमाम लोग सुनते रहते हैं यारो। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपके जो भी रेडियो का संदेश है मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे यारो उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो आप श्रोताओं से सदियों से यही कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेस भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आजमा कर तो देख, सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप 0712 13 65 68 49 पर, या तो आप तार करें आप 0712 13 65 49 पर। जो भी रेडियो का काम हो देन कान फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यारो, रिक्लाम बनाते रहना, हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेंटिनो खिनलित फनफाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन प्रार्थना भी किया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाएं, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करें आप 0712 13 65 68 49 पर, या तो आप 0712 63 22 47 पर। इसके बारे में तार करके आप सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हो। तो वादा के मुताबिक एक ही दम आप सभी को लेकर चलते हैं कार्यक्रम के ओर। और जैसे आप सभी को मालूम है यार, तो बीते हुए सप्ते हम पहुंच चुके थे फिल्म लीडर तक, जो रिलीज किया गया था 1956 तक। इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है मलकाए हुस्न द ग्रेट विजंती माला जी के साथ, महान संगीतकार नौशाद अली के साथ है और अल्फाजे है शाकिल बादायूनी के। तो मिल के सुनते हैं उसी फिल्म में से ये अति सुंदर बयान सुनने को जा रहे हैं आप सभी को। सुरों का बादशाह क्वीन ऑफ मेलोडी यानी क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी भी साथ दे रही है, और एक बार फिर सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी रफी साहब जी के साथ ये अति सुंदर बयान एवर ग्रीन सॉन्ग की, तेरे हुस्न की क्या तारीफ करूं, वन ऑफ माय फेवरेट डुएट ये महान दो गाने वाले के, जो हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को कई डिकेड्स 50
लता जी फिर तक रवि साहब जी ने संवारे थे। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Het is zonder bejaanen uit de film Lieder 19. Dit had jij 64 mee je film release kia gaya tha. Alfaze the Shakil Barayuni ke Saj Nawshad Ali ka aur gaane wale Bharat Ratna Surekha Devi Lata Mangeshkar ji aur mahan gayak King of Melody Ravi Saab ji. तो मैं प्रिय प्रिय श्रोताओं एक आखिरी बयान फिल्म लीडर का मैं आप सभी को सुनने को चाहता हूं और ये इस तरह से है कि बहुत ही रोमांटिक गाना है. आजकल शौ के दीदार है क्या बात है. शाकिल बारायूनी के अल्फाज नौशाद अली के साज एक बार फिर क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और इस बार साथ दे रहा है सुरों का बादशाह रवि साहब जी.

रोमांटिक सॉन्ग आजकल शो के दीदार है क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले और रफी साहब जी के मधुर आवाजों में शाकिल बारायूनी के अल्फाजे साज थे नौशाद अली का आई द फिल्म लीडर 1964। तुम्हारे पेपरी श्रोताओं सभी नगमे आई द फिल्म लीडर में आप सभी को सुना दिया। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक जबरदस्त मूवी निकला था इन 1966 दिल दिया दर्द लिया जो काफी हलचल मचा दिया था हमारे सूरीनाम देश में। एक डबल रोल का अदाकारी इस मूवी में ये महान अभिनेता ने पेश किया था और जो लोगों को काफी पसंद आया हुआ था सुपरहिट मूवी। और उसी फिल्म में से आप सॉन्ग्स सुनेंगे एक बार फिर अल्फाजे है शाकिल बारायूनी का और साज है नौशाद अली का। ब्यूटीफुल सॉन्ग सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब जी की दिल रुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया क्या क्या नहीं किया दिल दिया भी और दर्द भी लिया। ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल।

Beautiful song, wonderful song from the movie Dil Diya Dil Diya Day Day Day L. Hum log bulate the is movie ko. Aur us film mein se ye teen sundar bayan pesh kiya gaya mahan gayak the king of melody Ravi Saab ji ke madhur awaaz mein Naushad Ali ke saaj aur Shakil Bada unique faze. फोन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन हैं हमारे प्रिय श्रोताओं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड नाम कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और नगमे आप सुन रहे हैं जिन मूवीज में ये महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं फिल्म दिल दिया दर्द लिया तक जो रिलीज किया गया था 1966 तक एक सुपरहिट सॉन्ग आप श्रोताओं के सेवा में मैं पेश करने वाला हूं एक बार फिर सुरों का बादशाह रवि साहब जी क्या संगीत दिया है नौशाद अली जी ने इस फिल्म में गुजरे है आज इश्क में हम उस मकाम तक क्या बात है सुरों का बादशाह रवि साहब जी

दिल को छू लेने वाला नगमा और साथ ही साथ अ मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय मैस्ट्रो नौशाद अली द जीनियस म्यूजिक डायरेक्टर अलर्टेड फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। रवि साहब जी के क्या आवाज, क्या मिठास और क्या दर्द था इस गाने में। अगला बयान एक और दर्द से भरा हुआ बयान है और इस बार सुनाने को जा रही है सुरों का देवी द क्वीन ऑफ मेलोडी भारत रत्न लता मंगेशकर जी। और जिस खूबी से लता जी ने ये नगमा को पेश की है मह ओक फांख से खोर रेख स्ट्रीक्स एट हर हार्ट इन योर हार्ट।

ब्यूटीफुल सॉन्ग दिल को छू लेने वाला नगमा, फिर तेरी कहानी याद आई। भारत रत्न सुरुका देवी लता जी के मधुर आवाज में, फ्रॉम द मूवी दे दे दे एल, दिल दिया दर्द लिया, महान संगीतकार नौशाद अली के साथ पर। तुम्हारी पीपरी श्रोताओं, वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है कुछ ताजे ताजे भेजे है भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई सेती, थैंक यू ब्रो। कि मेरी यादों की कश्ती उस समंदर में तैरती है, मेरी यादों की कश्ती उस समंदर में तैरती है, जिनमें पानी मेरी अपने ही पलकों का होता है। आदिप्याय, आज फिर मौसम नम हुआ मेरी आंखों की तरह, आज फिर मौसम नम हुआ मेरी आंखों की तरह, शायद बादलों का भी किसी ने दिल दुखाया होगा। हो सकता है, होता है यारो। हजूम में था वो खुल कर ना रो सका होगा, हजूम में था वो खुल कर ना रो सका होगा, मगर यकीन है कि रात भर भी ना सो सका होगा, और वो भी मेरी याद में। उन्हें कहना कि मेरी मौत पर आंसू ना बहाए, मुझे अपने मौत से ज्यादा, मुझे तो अपनी मौत से ज्यादा उनके रोने का दुख होगा।

नहाई हुई है रात, फिर आज आंसुओं में नहाई हुई है रात, शायद हमारी तरह ही सताई हुई है रात। तो था कुछ शेर्स कोर्ट महिल क्रख्त शेर्स, ये आशा उम्मीद लेकर कि आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगला बयान, जैसे आप श्रोताओं को मालूम है तो महान संगीतकार नौशाद अली, ही वॉज किंग क्लासिकल गाने के बारे में, जैसे शास्त्र संगीत का वो भी माहिर था, तो अपने ही अंदाज में ये अति सुंदर बयान को वो सजाया है अपने ही स्टाइल में। वंत है बहेस्तत, भारत रत्न संगीत का वो बहुत ही बड़ा गुरु था, माहिर था। सावन आए ना आए, एक बार फिर हमारे सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम ये अति सुंदर क्लासिकल सॉन्ग, और जिस खूबी से लिखा है भी शाकिल बदायूं ने ये अल्फाजे, और आशा जी और रफ़ी साहब जी के मधुर आवाज़ में, कम दितने मर खहील तो सैन रेख्त। सावन आए ना आए, एंजॉय कीजिए।

0: real king of melody, Suroka Badshah, Padma Shri Muhammad Rafi Sahib Ji ke awaaz mein ye ti sundar bayan aap shrotaon ne suna. Uit de film Dil Diya Dard Liya uit 1966. Mahan sangeetkaar Naushad Ali ka superhit composing aur alfaaz the mahan lekhak Shakil Badayuni the master. अब आप श्रोताओं जी आप सुनिए एक ऐसा बयान जो लता जी ने गाई है लेकिन थोड़ा अलग सा इट लाइक द बीच अपन कैबरे सॉन्ग एंड यू वेट लता जी वास मेर फन द गेवोलिगे नंबर्स हैं मिलके सुनते हैं लेकिन जिस स्टाइल और जिस खूबी से लता जी ने ये नगमा को गाई है पेश की है महबूक गेज़ेक्ट वर्ड सुपरहिट सॉन्ग क्या रंगे महफिल है दिलदारम मास्टरपीस ऑफ कंपोजिंग बाय शाकिल अल्फाज़े एंड नौशाद अली साज रॉक एंड रोल टाइम
1: लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब

क्या रंगी महफिल है दिल दारम, ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी दिल दिया दर्द लिया 1966, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली, द सॉन्ग इज रिटन बाय शाकिल बदायूनी और सुनारी कोरस के साथ सुरेखा देवी, भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी। तुम्हारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा, तो स्टे ट्यून ऑन। आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूं यारो।

फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। आप चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटोलिक उक्त बलोस्त्रफिया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउंड fm.nl पर। यह कार्यक्रम आप लोग दुनिया के छोटे छोटे कोने में भी 24 घंटे रोजाना लगातार सुन सकते हो। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक ऑर्गामन हो, ऑर्गा वुमन हो, इवेंट और खनिजातोर, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमत्कार पे चमत्कार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो को सुनते रहते हैं वर्ल्ड वाइड भी इंटरनेट के लहरों द्वारा एंड यूरोप भर तक द प्लस रेडियो के लहरों द्वारा। तो आपका जो भी रेडियो का संदेश है तमाम लोग सुनेंगे। किफायत सस्ते दाम, सर्विस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो आप मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से यही आप सभी से कहते आ रहा हूँ कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो, आप आज माँ कर तो देख। सभी जानकारी इसके बारे में आप तार करेट एडेंस कंटोर यूर ऑफ नव सेफ तक डिफेंस एस तक 2020 तक पर, या तो आप तार के ऑफ नव सेफ तक 362077 पर। तो जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेन लेट फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और रोको भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी इसके बारे में बैलेट एडेंस कंटोर यूरोप नव सीफ तक 365247 या तो ऑप 07 362077। तो आप भी फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर जल्द से जल्द बने और रोको भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा रिक्लाम बनाते रहना यारो, हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। वरा के मुताबिक एक ही दम बढ़ते है दूसरा भाग हमारे प्रोग्राम के तरफ, और जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, अब से लेकर हमारे अंत के कार्यक्रम तक आप सिर्फ नगमे सुनेंगे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर दिलीप कुमार जी ने काम किया है। तो हम बीते हुए सप्ते पहुंच चुके थे फिल्म मशाल तक, जो रिलीज किया गया था नीति फीरन तख्त में, और सभी गाने फिल्म मशाल के मैं सुना चुका हूं आप सभी को। तो अब लेकर चलते हैं एक फिल्म जो रिलीज किया गया था नीति सेशन तख्त, धर्म अधिकारी फिल्म का नाम है, और इस फिल्म में दिलीप साहब जी ने काम किया है महान अभिनेता द ग्रेट जितेंद्रा जी के साथ, अभिनेत्री मलकाय हुस्न श्रीदेवी जी के साथ, संगीतकार है किशोरदा का भैने भतीजा द ग्रेट बाप्पी लहरी। तो उसी फिल्म में से आप नगमे सुनेंगे, और देखा जाए तो लेखक है इस फिल्म का सभी गाने का द ग्रेट इंदिवर जी। मिलके सुनते हैं एक अति सुंदर बयान, जब लड़की सीटी बजाए क्या बात है, हसीनों का पुजारी और संगीतकार का बादशाह और सहिंसा, डॉन एंड ओनली किशोरदा साथ दे रही है मशहूर गाने वाली फ्रॉम द 80s द ग्रेट जानकी जी, एस जानकी।